मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 48 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रकृति का शांति और नई ऊर्जा लिए प्रातः का आगमन हो रहा है। मंद पवन संग पंछियों का सुर, उगते सूर्य की लालिमा, धरती पर मनोहारी छटा बिखेर रहे हैं। ऐसे पवित्र वातावरण में योग व्यायाम करना शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है और विचारों को सकारात्मकता प्रदान करता है। दिन भर नई शक्ति, आत्मविश्वास, एकाग्रता बनाए रखने के लिए शुरू कीजिए योग और जीवन में संतुलन बनाइए। हम भी आ चुके हैं लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।

0: अपने दैनिक कार्यों के साथ हमारे श्रोता रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: राग था
2: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती

मध्यवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी योधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और आज योग दिवस है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में खरीफ में दलहन उत्पादन विषय पर आइए सुनते हैं अमरनाथ सिंह से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ में जहां दलहन उत्पादन की योजना बनाए हैं, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अमरनाथ सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब, ये बताएं कि खरीफ में जहां दलहन उत्पादन की योजना बनाए हैं, किसान भाई बहन थाली में दाल का कटोरा भरना चाहते हैं, तो क्या सलाह है?
2: नमस्कार किसान भाई, सबसे आवश्यक तो ये है कि ये आने वाला समय बहुत ही किसानों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि हमारे जो दलहन है एक तो काफ़ी महंगा होता है, अगर इसको थोड़ी लंबे पैमाने पे करते हैं तो इसको बेच के भी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, नहीं तो अपने आवश्यकता भर कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ तीन तरह की फसलें हैं जो दलहनी के रूप में खरीफ में प्रयोग होती हैं। एक तो अरहर हो गई, मूंग और उड़द। ज़्यादा क्षेत्र में अरहर की खेती हम लोग करते हैं और मूंग उड़द ज़्यादा लोग उसमें करते हैं जायद में, लेकिन इसमें भी कर सकते हैं। और हमेशा इसका दो तीन चीज़ें बहुत ख्याल करना है। एक तो हमको खेत का जो चुनाव करना है

0: खेत का चुनाव करना है जिसमें समुचित जल निकास हो, दलहनी क्रॉप में समुचित जल निकास हो, या थोड़ी सा ढलुआ खेत हो,
1: हाँ पानी
0: उसरी,
1: निकल
0: हाँ
1: जाए।
0: पानी निकल जाए, ऊसर जमीन अगर है तो कोशिश करें कि उस खेत का चुनाव ना करें, क्योंकि उसमें सफलतापूर्वक दलहनी क्रॉप नहीं ली जा सकती।
1: खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: खेत की तैयारी में गर्मी के सीजन में गहरी जुताई करें मिट्टी पलटहर से, उससे दो फायदा होता है, एक तो खरपतवार कम हो जाता है, दूसरे जो हमारे हानिकारक कीड़े होते हैं जो आगामी फसल के हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जमाव प्रभावित कर सकते हैं, उन सबों से भी नियंत्रण हो जाता है। और जब सूर्य की रोशनी हमारी जमीनों पर पड़ती है तो हमारी जो जमीन है वो जल धारण क्षमता और हर तरह से वो ठीक ठाक हो जाती है, खास करके खरपतवार कीट से इसके छुटकारा पाए जाते हैं इसे।
1: उन्नत प्रजातियों की बात करें तो अरहर, उड़द और मूंग की कौन कौन सी वैरायटी अच्छी हैं जो प्रति इकाई क्षेत्र में अच्छी पैदावार देती हैं?
0: देखें, अरहर दो तरह की प्रजातियां हैं, एक तो अरहर में अगेती प्रजाति है
1: हाँ
0: जो लगभग 130-135 दिन में हो जाती हैं, उसमें उपास है, UPAS, उसको हम 60 में उपास 120 कहते हैं, पारस है, टाइप 21 है, ये सब लगभग 130-135 दिन में हो जाती हैं, 18 से 20 कुंटल इनका औसत उत्पादन होता है। और जो देर से पकने वाली अरहर की प्रजाति है उसमें नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, मालवीय चमत्कार, पूसा, बहार, अमर, ये सब बहुत अच्छी प्रजातियां। उसी तरह से मूंग में नरेंद्र मूंग 1, पंत मूंग 1, मालवीया जागृति, मालवीया कल्याणी, आजाद मूंग 1 है, पंत मूंग 3 है, और उर्द में भी इसी तरह से शेखर है, नरेंद्र उर्द 1 है, और IP94-1, ये सब उन्नतशील प्रजातियां हैं। और इनका चुनाव करते समय कोशिश करें कि इनकी खरीदारी विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान से करें।
1: जी, नज़दीकी जो राजकीय कृषि बीज भंडार है
0: जी
1: वहाँ से भी ले सकते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: सहकारी समितियों के माध्यम से ले सकते
0: जी
1: हैं, और कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र
0: केंद्रों
1: तो
0: से भी
1: है।
0: प्राप्त कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बुआई के समय कौन कौन सी बारीकी है?
0: सबसे पहला काम तो बुआई के समय हमको ये करना है कि बीज का शोधन जरूर करना है,
1: जी
0: उर्द मूंग का हो चाहे अरहर का, 2 ग्राम थीरम प्लस 1 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका शोधन कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बीज की मात्रा नहीं लगती है, लगभग 5 से 6 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड लगता है, चाहे अरहर का हो चाहे इसका हो,
1: उड़द
0: तो
1: और मूंग का भी।
0: हाँ मूंग का भी उतना है, क्योंकि हमारी जोत कम हो गई है, थोड़ी कम एरिया हम लोग बोते हैं, तो इसका बीज शोधन जरूर करें। और दूसरी चीज, हम लोग जो सबसे कमजोर खेत होता है उसको दलहन के लिए चुनते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा न करें, थोड़ी जो हमारा मजबूत खेत है उसमें थोड़ी उर्वरक का भी प्रयोग करें। और दलहन से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा है SSP, जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है, 100 kg पर एकड़,
1: जी
0: और अगर DAP से कर रहे हैं तो 40 kg पर एकड़ को प्रयोग कर सकते हैं, और 12 से 15 किलो पोटास पर एकड़ प्रयोग कर सकते हैं।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में दलहन उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-53-34-63-34, 9453-34-63-34, 94-53-34-34। बीज शोधन अवश्य करें, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, और अगर पौधा बहुत घना हो जाए तो उसका बिरलीकरण कर दें। इन सब बातों का अगर ख्याल करेंगे तो खरीफ में दलहन से अच्छा उत्पादन किसान भाई हमारे प्राप्त कर सकेंगे।
1: अमरनाथ सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में दलहन उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे खरीफ में दलहन उत्पादन विषय पर अमरनाथ सिंह से की गई भेंट वार्ता, कृषि चर्चा कार्यक्रम में भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। जितना बड़ा संघर्ष जीत उतनी ही शानदार, और किसी भी कार्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए समर्पण एक महान गुण है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है समर्पण, वाचन स्वर शीला मिश्रा का।
3: स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ पैदल भ्रमण को निकले। निर्माणाधीन मंदिर के पास उनकी दृष्टि 3 मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो?

0: उत्तर दिया, गधे की तरह जुटे हुए हैं, देख नहीं रहे हो? दिन भर काम करने पर थोड़ा बहुत मिल पाता है, पर इतने के लिए ठेकेदार मानो जान निकाल लेता है। स्वामी विवेकानंद ने यही प्रश्न दूसरे से किया। वो बोला, मंदिर बन रहा है, हमारी तो किस्मत में यही था कि मजदूरी करें, सो कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति ने भाव भरे हृदय से उत्तर दिया, भगवान का घर बन रहा है, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरी पसीने की बूंदे भी इसमें लग रही हैं। जो भी मिलता है उसी में मुझे खुशी है, गुजारा भी चल जाता है और प्रभु का नाम भी हुआ जा रहा है। स्वामी जी ने शिष्यों से कहा, ये अंतर है तीनों के काम करने के ढंग में। मंदिर तीनों बना रहे हैं, पर एक गधे की तरह मजदूरी में, दूसरा यंत्रवत भाग्य के नाम पर दुहाई देता हुआ और तीसरा समर्पण भाव से जुटा हुआ है। इसी समर्पण के सहारे आत्मा और परमात्मा के बीच तादात्म्य उत्पन्न होता है और अजस्र शक्ति के स्रोत का द्वार खुल जाता है। कठिन परिस्थितियों और हजारों विपत्तियों के बीच भी मनुष्य आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वस्तुतः समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों का आधार यही समर्पण है। इसके अभाव में सारी शक्तियां सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। जैसे ही समर्पण भाव जागृत होता है, अन्य शक्तियां भी उठ खड़ी होती हैं और आत्मविश्वास के सहारे असंभव समझे जाने वाले कार्य इसी समर्पण से पूरे हो जाते हैं। विराट वृक्ष की शक्ति छोटे से बीज में छुपी रहती है। यही बीज खेत में पड़कर उपयोगी खाद पानी प्राप्त करके बड़े वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी समस्त संभावनाएं और शक्तियां बीज रूप में छुपी हुई हैं, जिनको विवेक के जल से अभिसंचित कर और श्रेष्ठ विचारों की उर्वरा खाद देकर जागृत किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने अंदर की अमूल्य शक्ति और सामर्थ्य को जान लेने में सफल हो जाए तो वो सामान्य से असामान्य और असामान्य से महान हो सकता है। मनुष्यों की संगठित शक्ति यदि श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़े तो विश्व का कायाकल्प कर सकती है। शक्ति के उदित होते ही असंभव समझे जाने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं, जिनको पूर्ण होते हुए देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वैयक्तिक जीवन में भी समर्पण ही संपूर्ण सफलताओं का आधार है। विश्वास के अभाव में श्रेष्ठतम उपलब्धियों से लोग वंचित रह जाते हैं। असफलताओं का कारण है अपनी क्षमता को न पहचान पाना और अपने को अयोग्य समझना। जब तक अपने को अयोग्य, हीन, असमर्थ समझा जाएगा, तब तक सौभाग्य और सफलता का द्वार बंद रहेगा।
1: समर्पण, ये विषय था आज के सुविचार का, वाचन स्वर शीला मिश्रा का था।

आराधना, ईश्वर की पूजा शब्दों की गिनती नहीं बल्कि हृदय की भावना है। जब हम ईश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो बाकी सब अपने आप सही स्थान पर आ जाते हैं, सभी कार्य सफल हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना 747 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister, and there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people, and the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय

योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने

0: গণদেবতা জনতা জনার্দনকে আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
1: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Sri R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी

कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be

be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. Sathiyo, Gita mein Bhagwan Krishna ne yoga ke vishay mein kaha hai, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग

0: योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the

0: यूनिकनेस ऑफ योगा
1: जी। और इस समय यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है, ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब
1: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
1: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
1: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
1: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
1: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
0: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness.

0: हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है, इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से,
1: जी
0: ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है। और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी, कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं, योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में?
0: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस
1: जी
0: जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं, जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना।
1: जी
0: जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी
1: जी
0: चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर
1: जी
0: उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं।
1: जी
0: इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी और यहां पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग-अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं,
1: जी
2: जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं,
1: जी
2: एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका कैरियर आप डिसाइड कर सकते हैं,
1: जी
2: वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं। जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे।
1: जी
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने अपने ही मूल स्वरूप

0: से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू
1: जी
0: टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है।
1: जी
0: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग-अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
1: जी
0: यस
1: और
0: एंड
1: इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे
1: जी
2: हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
1: जी
3: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशनड इन हिज स्पीच दैट इन द 1920s परमहंस योगानंद सेट अप द योगा सेंटर इन Kolkata and also at other places. And today the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम ने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है।
1: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही।

0: ही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और
1: निरीक्षक
0: प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके, और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: एंड वी कैन ऑल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows
0: जी
1: that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग-अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो
0: जी
2: एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है,
0: जी
2: तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी
1: Yes, absolutely. And as we mentioned earlier also, the Honorable Prime Minister taking keen interest, especially among the teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just, as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और
1: And
0: अब
1: now about
0: यहाँ
1: this
0: अभ्यास
1: asana,
0: किया
1: Neelam.
0: जा रहा है शशकासन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा, सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए।

0: उत्तान मंडूकासन। प्रतिमा जी, इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडूकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पॉस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडूकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
0: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा। तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी,
1: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसन, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
1: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ है, टोज बाहर की तरफ, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है। तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
0: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है।

0: इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा?
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
0: जी।
1: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
0: जी। गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
0: जी।
2: बहुत ही
0: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
0: जी,
1: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
0: जी।
1: और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
0: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन।

0: नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन
1: जी
0: सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप
1: जी
2: कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखरा बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है, डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा।

0: करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी सांसें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा।
1: जी
0: मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहां पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी
1: जी
0: कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला
1: जी
0: प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा,
1: जी
0: उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही,
1: जी जठराग्नि को पूरी तरह से
0: व्यवस्थित
1: नियंत्रित कर
0: करता
1: देता है।
0: है।
1: जी और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है,
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो सी हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है,
1: जी
0: ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ
1: जी
0: दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो
1: जी
0: इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो
1: जी
0: हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं।
0: हाँ
1: और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी।
0: हाँ
1: जी भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: और बाहर
1: निकालते
0: से
1: हैं,
0: कनेक्शन कट भी करना
1: कट
0: होता है, ताकि
1: जी
0: हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो
1: जी
0: हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम
0: स्वयं
1: जुड़ते
0: से
1: हैं,
0: जुड़।
1: अपने भीतर हम जाते हैं। जी
2: एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, व्हिच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स। डॉक्टर प्रतिमा,
0: मेडिटेशन इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, इट इज मेडिकेशन ऑफ बॉडी एज वेल एज माइंड।
1: जी
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
1: जी और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों

0: कोहली कही है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
2: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
1: पर, जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
2: और धीरे
1: धीरे, ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
3: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड

0: And we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned, that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace, but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
1: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें। एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट, उस सिर्फ स्टैचू हो जाए। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाए, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं, और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
2: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने

0: कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
1: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशनड, एंड एज यू आल्सो मेंशनड नीलम जी, दैट द टुडे वी सॉ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
0: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है, तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है, और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल

0: हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुराज देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर

नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों

0: आईएनएस दुनागिरी संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। आईएनएस दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। आईएनएस संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की चुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस

0: 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है, पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का हंसता खिलखिलाता कार्यक्रम अंकुर।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम और हमारे सभी प्यारे प्यारे बाल साथियों का खैर मकदम। आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए और नई से नई जानकारी देने के लिए आ चुकी है आपकी अपनी नाजमा दीदी और हमारे साथ आज है मुनव्वर जहां दीदी। नमस्कार मुनव्वर जहां दीदी, आज के अंकुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार खैर मकदम और बहुत बहुत स्वागतम हमारे सारे बच्चों का और साथ ही नाजमा दीदी आपका भी। और प्यारे बच्चों को प्यार भरी नमस्कार हो चुकी है और हम जानना चाहेंगे आज हमारे बच्चों का क्या हाल है। तो बच्चे सोचते होंगे हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि हमारे बच्चे सभी ठीक हो, खुश हो और मस्त रहे, है ना।
0: हाँ भाई, और इसी मस्ती के साथ अब हम जानेंगे बच्चों आज की एक नई जानकारी, वो भी रोचक तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर मुस्कान और उत्साह के साथ। बच्चों, आज जो घड़ी आप पहनते हैं ना, तो इसके बारे में कभी आपने सोचा है ये कहाँ से आई है और कैसे बनी पहली घड़ी? बच्चों, ये बात है लगभग 1500 ईसा पूर्व की और उस समय प्राचीन मिस्र और अन्य सभ्यताओं में सूर्य घड़ी का उपयोग किया जाता था। इसमें सूर्य की रोशनी से पड़ने वाली छाया देखकर समय का अनुमान लगाया जाता था। मुनव्वर जहां दीदी, पता है आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है और हो सकता है बच्चों को भी इस बारे में पता हो, उन्होंने भी पढ़ा हो अपनी नन्ही नन्ही किताबों में छोटी छोटी तोतली जुबान में। और इसके बाद हम आपको बता दें, इसके बाद वक्त आया जल घड़ी का। जी हाँ बच्चों, जल घड़ी बनाई गई। इस घड़ी में क्या था बच्चों, एक बर्तन में पानी धीरे धीरे निकलता था और पानी के स्तर के आधार पर समय ज्ञात किया जाता था। जानती हैं नाजमा दीदी
0: जी,
1: इस घड़ी का उपयोग मिस्र, चीन और अपने यहाँ भारत में भी किया जाता था।
0: हाँ, और फिर लगभग 13वीं या 14वीं शताब्दी में यूरोप में पहली यांत्रिक घड़ी बनी। पता है मुनव्वर जहां दीदी, इस घड़ी में गियर और पहिए की सहायता से समय मापा जाता था। ये अक्सर चर्चों और बड़े बड़े भवनों में लगाई जाती थी, पता है?
1: हाँ।

0: बिल्कुल नाजमा दीदी, मुझे मालूम है और हमारे बच्चों की भी याददाश्त ताजा होती होगी। वो भी सोचते होंगे कि हाँ, ऐसा
1: जी
0: हमने भी सुना था अपने दादा दादी या नाना नानी से। और इसके बाद जमाना आता है पेंडुलम घड़ी का। जी हाँ बच्चों, इस घड़ी को बनाने वाले क्रिस्टियान हाइगेंस थे। इस घड़ी से समय को मापने में बहुत ज्यादा मदद मिली हमारे यहाँ।
1: और फिर विकास होते होते आई जेब घड़ी, जो बच्चों आपने अपनी किताबों में गांधी जी के पास देखी होगी वो घड़ी। और इस घड़ी को लोग समय देखकर आसानी से जेब में रख लिया करते थे। उसके बाद दीवार घड़ी आई, यानी कि वॉल क्लॉक, और फिर टावर क्लॉक, ताकि दूर दूर से ही लोग समय को देख सकें। और फिर बाद में अलार्म घड़ी की ऐसी आवाज आने लगी जो निश्चित समय पर आवाज करके लोगों को जगा दी थी।
0: ट्रेन ट्रेन जल्दी
1: और
0: उठो।
1: 19वीं शताब्दी तक आते आते घड़ियां हाथ की कलाई पर बनने लगी, और
0: बिल्कुल,
1: ये बहुत लोकप्रिय हुई जो आज भी चल रही है।
0: आज भी चल रही हैं। और बच्चों, आज की घड़ी डिजिटल रूप ले चुकी है। डिजिटल रूप का मतलब ये बहुत आसान हो गया है टाइम देखना। इसमें सुइयों की जगह पर अंकों में समय दिखाई देने लगा है। यानी कि अगर 9 बजे हैं तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कौन सी छोटी सुई कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ है।
1: और देखिए ना, हमारे स्टूडियो में भी तो ऐसे ही घड़ी लगी है।
0: जी बिल्कुल। इसके लिए जैसे बच्चों को ये होता था कि हर अंक में, हर एक डिजिट में 5 मिनट का अंतराल होता है, इतनी सूझबूझ लगाने की जरूरत नहीं है। बस अगर 9 बजे हैं तो सिर्फ 9 दिखेंगे और उसी डिजिट से बच्चे पता लगा लेंगे। और इसमें सुइयों की जगह, जैसे कि बताया है, कि अंकों में समय दिखाई देने लगा है। और यही नहीं बच्चों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, गाड़ियों और अन्य उपकरणों में भी घड़ियां खूब देखने को मिलती हैं, ये डिजिटल वाली।
1: और मुनव्वर जहां दीदी, और स्मार्ट वॉच के तो कहने ही क्या, समय बताने के साथ साथ स्वास्थ्य की जानकारी और कॉल, मैसेज और कई अन्य काम भी करती हैं ये घड़ियां। तो
0: बिल्कुल
1: बच्चों, टिक टिक करती प्यारी ये घड़ी, समय की देती सीख बड़ी, सुबह जगाती, करने को काम बताती, आगे बढ़ने की राह दिखाती। तो बच्चों, समय का सदुपयोग कीजिए, समय है अनमोल खजाना और इसे कभी ना गवाना।

0: नाजमा दीदी, आज बच्चों से ढेर सारी बातें करनी है और जो खास बात है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की।
1: हाँ भाई, क्या बात है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आज है 21 जून। तो बच्चों, आज 21 जून है और इस दिन योग के महत्व को लोगों तक नहीं बल्कि जन जन तक और नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिससे सब लोग सेहतमंद रहें और बीमारियों से दूर रहें, सबसे बड़ी बात। और अगर बच्चे अभी से योग के महत्व को समझेंगे और योग को अपनाएंगे तो वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे और डॉक्टर साहब से नाजमा दीदी सुई भी नहीं लगवाना पड़ेगी
1: और कड़वी दवाइयां भी नहीं खानी पड़ेंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बच्चे, हम आपको बता दें, योग शरीर मन और आत्मा को संतुलित करने की प्राचीन भारतीय पद्धति है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और नियमित योग का असर लगभग एक या दो हफ्ते में दिखाई देने लगता है। इसके छोटे मोटे शारीरिक और मानसिक फायदे जैसे नींद अच्छी आना या बॉडी में हल्कापन महसूस करना, तनाव में कमी, ये सब बहुत ही जल्दी महसूस होने लगते हैं। हालांकि शरीर में पूर्ण बदलाव और मजबूती के लिए 4 से 8 सप्ताह का समय लग जाता है। ये बच्चों कोई मीठी गोली नहीं है जो मुंह में रखी और तुरंत पता चल गया।
1: योग के असर की जल्दी और प्रभावी बनाने के लिए कंटिन्यू जो है सप्ताह में 3 से 5 दिन या रोजाना 20 से 30 मिनट तक अभ्यास करना जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: और इसे सही तरीके से करने के लिए शुरू में जो है अपने विशेषज्ञ या माता पिता की देखभाल में ही करना चाहिए बच्चों को, तो है ना।
0: बिल्कुल, और तभी योग से सही फायदा भी मिलेगा, है ना।
1: या बिल्कुल सही कहा।
0: और नाजमा दीदी, एक बात तो हम बच्चों को बता दें कि शरीर को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए योग के साथ साथ पौष्टिक खाना भी खाना चाहिए। बाहर की चीजें, खुली हुई चीजें या पैकेट वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर का बना हुआ खाना खाएं, जिससे सारी जितनी भी अच्छे पौष्टिक तत्व होते हैं वो उसमें होते हैं और घर का खाना साफ सफाई से भी बनाया जाता है।
1: और मुनव्वर जहाँ दीदी, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जो मम्मी घर में खाना बनाती हैं वो ही खाएं, है ना।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत अच्छी बात बताती है। और साफ सफाई का ध्यान रखें, और जब आप योग कर रहे हैं जो कपड़े पहनते हैं उन्हें भी रोजाना धोना चाहिए।
0: हाँ।
1: साफ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि आप जो सांस लेते हैं ना लंबी लंबी सी, है ना, कभी नाक से हम सांस

0: लेते हैं, कभी मुंह से सांस लेते हैं, तो उस जगह का जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और आपने ये बताया कि जो मम्मी खाना बनाए वही बच्चों को खाना चाहिए, तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि मम्मी भी वही खाना बनाए जो बच्चों को पसंद आना
0: बहुत
1: चाहिए।
0: अच्छी बात
1: क्योंकि बहुत
0: बताई।
1: सारे स्नैक्स ऐसे होते हैं जो बाहर मार्केट में बिकते हैं और बच्चों को पसंद आते हैं, तो
0: हाँ
1: वही चीज़ अगर हम घर में बनाते हैं तो वो बच्चों को पसंद भी आते हैं, पौष्टिक भी होते हैं और सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छे रहते
0: तो
1: हैं।
0: इसलिए बच्चों योग करें और रोग को दूर करें।
1: हाँ, और
0: और
1: एक चीज
0: जी
1: नाजमा दीदी, ये बताना बच्चों को जरूर है कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए ताजे फल हैं, जैसे कि जरूरी नहीं कि घर के ही खानों पर ही आश्रित हो
0: हाँ
1: जाएं।
0: जी
1: फल से बच्चे ज्यादातर दूर भागते हैं, और उनके कुछ पसंदीदा फल होते हैं जैसे केला। तुम्हें क्या पसंद है नाजमा दीदी?
0: हाँ मुझे तो सेब बहुत पसंद है।
1: अरे
0: और पता है बच्चों को क्या
1: हाँ
0: चाहिए कि अगर सेब या केला नहीं खा रहे हैं तो उसका बनाना शेक बना दें
1: बिल्कुल
0: और उसका
1: बिल्कुल,
0: जूस तैयार करके दे
1: जूस
0: दें,
1: तैयार
0: यानी
1: कर
0: कि
1: दे
0: बच्चों के शरीर में ये चीजें जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक चीज और, इन दिनों में मैंगोज आए हुए हैं,
0: और
1: आम तो बच्चों के फेवरेट होते हैं
0: मैंगो
1: पूरे।
0: शेक कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा, बहुत। और इसके साथ ही साथ जो हरी सब्जियां होती हैं, साबुत अनाज होते हैं, दूध, नट्स उसमें शामिल करें, बादाम, अखरोट और चिया सीड्स में तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग को बहुत तेज बनाता है, इसलिए आप लोग ये चीजें भी जरूर खाएं अपना दिमाग तेज करने के लिए।
0: और बच्चों से हम कहेंगे कि योग जो है ना उससे स्वस्थ तन रहता है और मन प्रसन्न रहता है। योग से जो है जीवन बहुत अच्छा रहता है और
1: जी बिल्कुल,
0: योग है स्वास्थ्य का आधार, इसे अपनाएं बार बार।
1: बार बार,
0: और
1: जी हाँ
0: मुनव्वर जहां दीदी हम बता दें कि हमने नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों से बातचीत भी की है, कुछ बच्चों से फ़ोन
1: अच्छा
0: पर भी बातचीत की है, कुछ बच्चों से हमने जो है फील्ड में भी बात की है और साथ में हमने उनके माता पिता से भी बातचीत की है बीच बीच में,
1: तो सुनवा
0: क्योंकि
1: दी जाए।
0: बिल्कुल सुनवा दी जाए। और क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो हमने माता पिता की भी राय को जाना है कि वो
1: जी
0: क्या
1: जी
0: कर रहे हैं और माता पिता उनका कैसा सहयोग कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। क्या कहने हैं और हम पहुंच गए हैं बच्चों के बीच में और ऐसी एक नन्ही बालिका हंसती मुस्कुराती हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? भाई रिमशा हमारे साथ है और हम बात कर रहे हैं समर कैंप के बारे में। तो आप ये बताइए, समर कैंप आपने ज्वाइन कर रखा है?
2: जी हाँ, मैंने ज्वाइन कर रखा और उसमें मैं अभी स्विमिंग सीख रही हूँ।
0: आपने तो बिल्कुल एक अलग क्षेत्र चुना है वैसे। और समर कैंप में और क्या क्या हो रहा है आपके स्कूल में, क्या क्या सिखाया जा रहा है?
2: और उसमें बैडमिंटन, क्रिकेट और बहुत सारी एक्टिविटीज और तो मतलब अच्छी बात सिखाई जाती है।
0: अच्छा भाई, तो अच्छा ये बताइए रिमशा, ये वो समर कैंप ज्वाइन करने से क्या फायदा होता है?
2: समर कैंप ज्वाइन करने से हम बच्चों को बहुत सारी सीख मिलती है और मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज सीखने को मिलती है और जैसे कि हम बच्चों की जो वेकेशन होती है समर वेकेशन
0: हाँ, और टाइम भी हमारा पता नहीं चलता है क्योंकि छुट्टियां बीत जाती हैं, स्कूल का टाइम होता है तो हम भी तो बोर होने लगते हैं ना। आपके कितने बहन भाई हैं?
2: मेरी एक छोटी बहन है
0: अच्छा, क्या नाम है उनका?
2: आयशा।
0: आयशा, वो भी जा रही हैं क्या साथ में?
2: नहीं, घर पर अपनी पढ़ाई भी कर लेती।
0: आकाशवाणी टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिमशा।
2: थैंक यू आकाशवाणी, थैंक यू
0: तो कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
3: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
0: चलिए ये बताइएगा, अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, घर के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको बिजी रखने के लिए क्या करते हैं आप?
3: मैडम जी, छोटे बच्चों को बिजी रखने के लिए तो या तो अपने घर में कोई जैसे कि दादा दादी रहते हैं उनकी कहानियां भी बताते हैं उनको, जो
0: अच्छा
3: पूर्वज है उनकी कहानियां रहती है
0: अच्छा
3: वो बताते हैं। और छोटे बच्चों को तो अधिक से मतलब ये है कि घर में खेलने के लिए आजकल आधुनिक युग आ गया है, उसके अनुसार आजकल कुछ ऐसे
0: बहुत से खेल खिलौने
3: बोर्ड भी
0: भी
3: आ गए, बोर्ड बोर्ड आ गए, बोर्ड
0: हाँ
3: तो उनको पढ़ाने के लिए वो काफी सहायक रहते हैं खेल खेल के अंदर।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। और बोर्ड आ गए हैं कुछ ऐसे, उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं, कुछ ऐसी बुक्स भी आ रही हैं, कलर करवा सकते हैं, बच्चों को बिजी रख सकते हैं।
3: और खिलौने जो अपन देखते थे पुराने दौर में, जो किराने को बच्चों कार दे दी, ऐसा कोई आइटम दे देते दे खेलने के लिए,
0: जी जी
3: अब ऐसे खेल खेल के अंदर ही जैसे एप्पल है तो एप्पल है उसमें, और एप्पल का स्पेलिंग भी लिखा रहता है और एप्पल भी बना हुआ रहता है, और वो उसके अंदर उसको सिखाया भी जाता है कि ये एप्पल है, ये एनिमल है, ये सभी जानवरों के नाम भी उसको साथ साथ में सिखा देते हैं।
0: हाँ, एक कुछ
3: जी जी
0: ऐसी
3: जी
0: बुक्स भी आ रही हैं जिसमें बच्चों की राइटिंग वगैरह भी अच्छी।

0: अच्छी हो जाती है उसमें।
1: हाँ जी
0: तो
1: मैम,
0: ऐसे पेरेंट्स मंगा सकते हैं और घर बैठे अदर एक्टिविटीज में उनका ध्यान लगा सकते हैं, है ना? ठीक है, बच्चों की जानकारी के लिए आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: तो
1: मैम।
0: हम माता पिता से कहना चाहेंगे कि वो बच्चों का साथ दें, उनके साथ टाइम को बिताएं और अधिक से अधिक टाइम देने की कोशिश करें, क्योंकि इससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता बच्चों के साथ टाइम बिताने का और उन्हें बहुत कुछ सिखाने का। और नन्हे मुन्ने बाल दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: अदनान जी
0: समर कैंप आपने ज्वाइन कर रखा है क्या?
1: जी कर रखा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। समर कैंप में आप क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं इस टाइम?
1: अभी तो मैम क्रिकेट चल रहा है, उसमें हमने पार्टिसिपेट करा है तो उसी में ही लगे रहते हैं। इससे हमारा टाइम भी थोड़ा पास हो जाता है और हमें सीखने को भी मिलती है बहुत सी चीजें।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए समर कैंप है ही इसीलिए कि जो नन्हे मुन्हे बाल दोस्त हैं, बच्चे हैं, छुट्टियां चल रही हैं तो उनकी छुट्टियां भी जो हैं एक तरीके से बीत जाएंगी और बच्चे भी खाली नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए क्रिकेट में मजा आ रहा है आपको?
1: जी बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, और समर कैंप में ये बताइए आप, आपके जो दोस्त होंगे तो उनके साथ अच्छा टाइम बीतता होगा?
1: जी बिल्कुल, क्रिकेट के अलावा बाकी गेम में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बास्केटबॉल
0: अच्छा, कौन कौन से?
1: और वॉलीबॉल।
0: वॉलीबॉल? भाई क्या बात है, यानी कि आउटडोर गेम की बात कर रहे हैं आप। आउटडोर गेम से क्या फायदे हो जाते हैं बताएंगे जरा?
1: जी, और हाथ पैर हमारे थोड़े इसमें एक्टिव रहते हैं और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, माइंड बिल्कुल जी हम तंदुरुस्त रहते हैं।
0: हाँ, तो लेकिन ऐसे में आप अपने खाने का ध्यान रखते हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि खेलने वाले बच्चों के लिए डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में क्या क्या लेते हैं आप डाइट में बताइए।
1: सुबह को नहार मुंह चने लेते हैं पानी
0: जी
1: में उबाल के, और बादाम। जी
0: अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए अपने ध्यान रखिए। समर कैंप की क्या उपयोगिता है, इस टॉपिक पर बातचीत चल रही है तो हम नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों से जुड़ रहे हैं लगातार, एक के बाद एक हमसे नन्हे मुन्ने बाल दोस्त जुड़ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम समर कैंप में क्या क्या कर रहे हैं। अपनी मम्मी से बात कराइए,
1: हेलो,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है फरजाना हुसैन।
0: अच्छा, फरजाना हुसैन। तो छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में बच्चे आपको ज्यादा शरारत करते होंगे, आप तंग तो नहीं हो जाती हैं?
1: नहीं, बच्चे मेरी हेल्प करते रहते हैं घर में, छोटे मोटे कामों में लगाए रहती हैं।
0: चलिए ये भी अच्छी बात है। देखिए क्योंकि अंकुर कार्यक्रम से जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं तो वो भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नन्हे मुन्हे बाल दोस्त हैं तो उन्हें काम में बिजी रखें ताकि वो तंग ना करें और शरारतें भी ना करें। और देखिए अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे, है ना? तो इसलिए उनकी
1: खेल में भी लगेंगे उनके साथ थोड़ा हम भी एंजॉय कर लेते हैं।
0: हाँ भाई, बहुत अच्छी बात आपने बता दी है कि उनकी शरारत को ज्यादा सीरियस ना लें, जब शरारत नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे, है ना? तो बहुत सा हमने देखा है कि माएं होती हैं डांटने डपटने लग जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उनके साथ अच्छे से बिहेव करें और एकदम फ्रेंडली बिहेव करें, है ना? आप भी ऐसा करती हैं फरजाना?
1: एंजॉय करते हैं,
0: अरे वाह क्या बात है। और बच्चों को बिजी रखने के लिए क्या क्या करती हैं आप?
1: वो बहुत क्राफ्ट में लग जाते हैं बच्चे, आर्ट में लग जाते हैं, इसी
0: अच्छा,
1: तरह से टाइम भी बीत जाता है और बच्चों का भी टाइम कट जाता है, शरारत भी नहीं होती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अब ये मौका कहाँ मिलता है बच्चों को कि सुबह स्कूल गए, फिर कोचिंग गए, फिर अदर क्लासेस भी, तो बच्चों के साथ बिताने का एक अच्छा मौका है ना, हंसिए बोलिए अंताक्षरी खेलिए।
1: वरना तो बच्चे रुकते ही कहाँ हैं घर पर, टाइम ही कहाँ मिल पाता है।
0: तो बिल्कुल पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने का, है ना? तो इसलिए उनके साथ एंजॉय करिए, खूब मस्ती कीजिए, अंताक्षरी खेलिए और जहाँ तक हो। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आकाशवाणी से अंकुर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वाह क्या कहने हैं। और नन्हे मुन्हे बाल दोस्तों हम आपको बता दें, एक और नन्ही बालिका हमसे जुड़ रही है, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम अर्पिता मिश्रा है।
0: अर्पिता मिश्रा है भाई। और अर्पिता मिश्रा हम बात कर रहे हैं समर कैंप की क्या उपयोगिता है। समर कैंप आपने ज्वाइन कर रखा है?
2: बस मैंने समर कैंप ज्वाइन रख रखा है, अभी मैं जा रही हूँ।
0: अच्छा, क्या सीख रही हैं आप समर कैंप में?
2: मैं अभी शतरंज सीख रही हूँ, चेस और बैडमिंटन भी खेल लेती हूँ
0: अच्छा,
2: और गाना।
0: अरे वाह, सिंगिंग यानी सिंगिंग भी, अरे वाह क्या बात है। तो चेस सीख रही हैं? अरे चेस तो हमें भी बहुत पसंद है, बड़ा ही दिमाग वाला खेल है ना, बहुत सोचना पड़ता है इसके अंदर। एंजॉय करती हैं चेस को आप?
2: बहुत अच्छा लगता है चेस खेलना, ये दिमाग को भी तेज करता है।
0: हाँ बहुत अच्छी बात बताइए। तो ये बताइए कौन कौन से कलर की गोटियाँ होती हैं उसमें?
2: उसमें जैसे कि वाइट,
0: हाँ
2: जो उसके बॉक्स होते हैं वो 64 होते हैं।
0: हाँ

0: 64 खाने होते हैं उसमें, और गोटियों के नाम पता है आपको क्या क्या है? हाँ, काफी सारे ये नाम होते हैं। बारी हम चलते हैं, एक बारी जो है सामने वाला चलता है, इस तरीके से इसको पूरी बिसात बोलते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है ये, इंडोर गेम है। और बताइए, और क्या क्या पसंद है आपको?
1: खेल लेती हूँ, ज्यादा नहीं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और समर कैंप से वैसे बहुत फायदे हो जाते हैं, क्या क्या फायदे हो जाते हैं बताइए।
1: समर कैंप से ये फायदे होते हैं, जैसे कि हमारा टाइम बहुत अच्छे से बीतता है, और जो हम अपना मनपसंद का खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं।
0: और जब अपने वहाँ पर समर कैंप में जाती हैं, तो वहाँ पर आपको सहेलियाँ मिलती हैं, उनके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, क्योंकि
1: टाइम तो हम जैसे कि बातचीत करने का तो मिलता ही नहीं क्लास में, जैसे कि अब क्लास में एक पीरियड से हम फ्री हुए तो बातचीत करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। अब समर कैंप लगा है तो टाइम मिलता है, प्रैक्टिस कर ली बैडमिंटन की, फिर उसके बाद फिर से
0: अच्छा, तो यानी कि
1: क्लासेस कर
0: खूब
1: लेंगे।
0: हंसी मजाक कर लिया है ना, खूब खेल लिए। हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं, क्लास में एक के बाद एक पीरियड लगता है तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो समर कैंप जो है एक अच्छा माध्यम है बाल मित्रों के साथ समय बिताने का, है ना,
1: मौका मिलता है।
0: मौका मिलता है। तो समर कैंप से थक कर आती हैं तो कुछ भूख तो लगती होगी, कुछ खाती हैं आते ही? हाँ, क्या खा लेती हैं जिससे हमें ताकत मिले?
1: रेडी रखते हैं, दलिया वलिया बनाते हैं,
0: अच्छा,
1: और कभी कभी वो मखाने भी भून देते हैं एनर्जी के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए, नन्हे मुने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे होंगे कि भाई जो बच्चे समर कैंप ज्वाइन कर रखा है उन्हें भाई उसके बाद आने के बाद भूख लगती है, तो उनके पेरेंट्स जो है नाश्ता अच्छे से तैयार रखेंगे, पौष्टिक नाश्ता, जिससे उनको एनर्जी भी मिले और वो हष्ट पुष्ट रहे, है ना। बहुत अच्छी बात बता दी है। और ये बताइए, कहीं छुट्टियों में जाने का प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगी? आहा भाई, क्या बात है। देखिए, बरेली से नैनीताल कोई ज्यादा दूर भी नहीं है और हमारा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा और एकदम हमें मन को शांति मिलेगी, बहुत मजा आएगा, है ना। तो नैनीताल के बारे में सुना है आपने, क्या क्या है वहाँ पर?
1: अब जैसे कि नैनी झील हो गई, एक वहां पे नीम करौली आश्रम पड़ता है नैनी झील से आगे, तो ये सब।
0: अच्छा, सब कवर करेंगी आप। जो लाइफ है वो इतनी बिजी रहती है, उसका शेड्यूल इतना बिजी है कि हम अपने लिए टाइम ही निकाल पाते, लेकिन छुट्टियां ऐसी हैं कि हम घर परिवार के साथ अपने मस्त रह सकते हैं और मस्ती से टाइम बिता सकते हैं।
1: और उन्हें टाइम भी दे सकते हैं।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात बताई है। और क्या कहना चाहती हैं नन्हे मुने बाल दोस्त, आपको सुन रहे हैं?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जैसे कि यहाँ समर वेकेशंस चल रही हैं, तो बाहर के खाने से ज्यादा बचें।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई।
1: जैसे कि बाहर का तला भुना है, ज्यादा बचें, क्योंकि ये कभी भी तबीयत खराब कर।
0: देखिए, कभी तो धूप हो रही है, कभी तो बादल आ रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है, मौसम बराबर चेंज हो रहा है।
1: हल्का खाना खाना चाहिए, ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, और ज्यादातर घर का ही खाना सही रहता है।
0: बहुत अच्छी बात बता दी है नन्हे मुने बाल दोस्त, आपको सुन रहे हैं। कौन सा गीत उनको सुनाना चाहती हैं?
1: बच्चे मन
0: बच्चे मन के सच्चे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा सा सॉन्ग है। तो लीजिए, आपके पसंद पर आ रहा है ये प्यारा सा सॉन्ग। थैंक यू सो मच।

0: बच्चे मन के सच्चे बहुत प्यारा सॉन्ग था, और वाकई बहुत सारे बड़े भी बच्चों के जैसा दिल रखते हैं कि एक पल में झगड़ा करते हैं, एक पल में मिल जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इतना खूबसूरत दिल रखने लगे।
1: बिल्कुल। अब मुनव्वर दीदी, हम आपसे एक बात पूछें,
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो आप हमें ये बताइएगा, जब आपका बचपन रहा होगा तो कभी किसी से आप नाराज हो गई होंगी, तो कैसे मना लिया करती थी आप?
0: वो खुद मना लिया करता
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों, अब हम अपना रुख करते हैं सागर द्वीप, हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी की ओर।
0: आई हाय, क्या क्या नाम ले दिए, मन कर रहा है अभी दौरे पे चले जाए हम
1: वही क्या
0: लोग
1: बात है।
0: घूमने के
1: और
0: लिए।
1: बाल साथियों, बात करें सागर द्वीप की, तो यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि मन करेगी ध्यान लगाने बैठ जाओ, क्योंकि बच्चों ये द्वीप अपने धार्मिक और प्राकृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।
0: और एक चीज ये भी है नाजमा दीदी,
1: क्या?
0: जो जगहें धार्मिक होती हैं वो कुदरती तौर पे शांति वहां जाकर मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और बच्चों, हम आपको बता दें, यहाँ हर वर्ष गंगा सागर मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जो होते हैं स्नान करने आते हैं। इस द्वीप पर नारियल, ताड़ के और ऊंचे ऊंचे वृक्ष इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं। इसके अलावा गंगा सागर संगम द्वीप पर और भी अन्य प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों तो हैरत में पड़ जाएंगे।
0: और नारियल वगैरह के पेड़ देख के, ताड़ के पेड़ देख के बच्चे तो फूले नहीं समाएंगे।
1: और मुनव्वर जहां दीदी, ये जो क्षेत्र है ना, इतना सुंदर है कि प्राकृतिक और दृश्यों से भरा हुआ है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों, यहाँ समतल और चौड़ा तट सूर्यास्त का हसीन मंजर देखने के लिए जाना जाता है, यानी कि सूरज जब डूबता हुआ होता है तो ये मंजर आंखों में समाने का होता है। और यहीं पर पास ही में स्थित है वैदिक संत कपिल मुनि का मंदिर, जहां पर आप जा सकते हैं और सुकून से बैठ सकते हैं। लेकिन नाजमा दीदी,
1: जी
0: एक बात है,
1: क्या?
0: बच्चों को चाहे कितनी शांति की जगह मिल जाए, वो सुकून से नहीं बैठ सकते।
1: कहते हैं ना कि बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: प्यारे बाल साथियों, आपको और बताएं, ये द्वीप वही जगह है जहां हुगली नदी आकर बंगाल की खाड़ी से मिलती है। बच्चों, हुगली नदी गंगा नदी की एक प्रमुख शाखा है। ये पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे कई शहर बसे हैं, जैसे कोलकाता, हावड़ा, चंदन नगर, और इस नदी का व्यापार और परिवहन का बहुत अधिक महत्व है।
0: नाजमा दीदी, आपने हुगली नदी का इतना अच्छा एड्रेस बता दिया है बच्चों को। अब अगर बच्चे अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के साथ जाएंगे तो वो पहचान लेंगे और यही पूछेंगे, मम्मी क्या यही हुगली नदी है ना?
1: जो हम अंकुर कार्यक्रम में सुन रहे थे
0: सुन रहे थे, और नाजमा दीदी बता रही थी बड़े प्यार के साथ। बच्चों, साथ ही हम आपको बंगाल की खाड़ी के बारे में भी बताते चले, हम भी कुछ एड्रेस याद है हमें भी।
1: अच्छा, बताइए।
0: जी बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है। ये भारत के पूर्वी तट, बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से घिरी हुई है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और कई बड़ी नदियां आकर मिलती हैं।
1: बच्चों, आपकी जानकारी में हम इजाफा करते हुए और बताएं, ये खाड़ी समुद्री जीवों, तरह तरह की मछलियों

0: तटीय पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, गंगा सागर संगम की प्राकृतिक सुंदरता और नदी और समुद्र का मिलन लोगों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बाल दोस्तों, छुट्टियां चल रही हैं, अपने माता पिता के साथ यहाँ पर जरूर जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अगली जानकारी क्या है नाजमा दीदी आपके पिटारे में?
0: हमारे पिटारे में बहुत कुछ है बाल साथियों। अब हम आपको सुनाएंगे आपको एक मजेदार कहानी जिसका नाम है काबुली वाला।
1: काबुली वाला बहुत अच्छी कहानी है जी। और मुझे याद है मैंने बचपन में इस पर कोई फिल्म भी बनी हुई है, मैंने वो फिल्म बचपन में देखी थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे इन दोनों के प्यार को देख के। और मुझे उम्मीद है बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी जो नाजमा दीदी ये कहानी सुनाएंगी।
0: तो बच्चों, 5-6 वर्ष की एक बालिका जिसका नाम मिनी है, वो बहुत बातूनी और चंचल स्वभाव की है। मिनी तरह तरह के सवाल अपनी मम्मी से करती रहती, जैसे मम्मी आसमान नीला क्यों है, बंदर की पूंछ है तो हमारी क्यों नहीं, हम पेड़ों पर क्यों नहीं रहते, और ना जाने क्या क्या। मिनी की मम्मी हंस देती और कहती, जाओ यहाँ से, मुझे रसोई में बहुत काम है। लेकिन मिनी के पिताजी मिनी को बाहर ले जाकर इनके सवालों के जवाब समझा कर उसको बताते। एक दिन मिनी अपनी खिड़की के पास बैठी थी जहाँ सामने का बाजार और सड़क साफ दिखाई देता था, वो अक्सर वहाँ जाकर बैठा करती थी। एक दिन एक लंबा चौड़ा आदमी फल और मेवे बेचते हुए आवाज लगाता हुआ वहाँ से गुजरता है, काबुल से आया, मेवे ले लो, मेवे ले लो, फल ले लो। तभी मिनी आवाज लगाती है, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला।
1: काबुली वाला पलटकर मिनी के पास आकर बोलता है, तुमको क्या चाहिए बिटिया? पहले तो मिनी डरी क्योंकि इतना लंबा चौड़ा एकदम उसके पास जो आ गया। तभी उसके पिताजी भी आ गए और मिनी को बुलाया। पिताजी ने कहा, बिटिया बुलाया है तो कुछ खरीद ही लो।
0: तभी मिनी बोल पड़ी, तुम्हारे झोले में क्या है? काबुली वाला बोला, हाथी। मिनी उससे एक और सवाल करती है, तुम ससुराल जाओगे? काबुली वाला हंसता है और पिताजी भी। पिताजी काबुली वाले से उसका नाम पूछते हैं, वो अपना नाम रहमत बताता है और कहता है, साहब मेरी भी एक बिटिया है जो मिनी की तरह और इतनी ही बराबर होगी। इस बेटी को देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई।
1: मिनी जी के पिता बोले, इस बात को सुनकर कोई बात नहीं रहमत, आज से रोज तो मिनी से मिलने आ जाया करो। बस फिर क्या था, काबुली वाला मोहब्बत का मारा रोज उस जगह से गुजरता तो मिनी के लिए मेवे और फल ले जाता। दोनों खूब बातें करते, मिनी को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, मिनी भी बहुत घुल मिल जाती है और फिर वो रहमत से भी तरह तरह के सवाल करती रहती है।
0: लेकिन रहमत उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बड़ी खूबसूरती से देता है। दोनों पिता और पुत्री की तरह घुल मिल जाते हैं। फिर अचानक काबुली वाला कारोबार के लिए दूसरे शहर चला गया, जिसमें मिनी एकदम उदास हो गई और वो हर रोज खिड़की के पास बैठकर रहमत का इंतजार करती।
1: समय बीतता गया, मिनी बड़ी हो गई और लगभग वो सब कुछ भूल चुकी थी। तभी एक दिन काबुली वाला फिर आया मिनी से मिलने के लिए, लेकिन ये दिन मिनी की शादी का था।
0: काबुली वाला अब बूढ़ा हो चला था। मिनी के पिताजी ने पहचान लिया। काबुली वाले ने मिनी को देखने के लिए बुलाया, लेकिन बिना देर किए पिताजी ने मिनी को आवाज लगाई, मिनी, ओ मिनी, जल्दी बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मिनी दुल्हन के जोड़े में तेजी से चलती हुई बाहर आई और देखकर काबुली वाले को अचंभित हो उठी। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने पैर छूकर काबुली वाले से आशीर्वाद लिया। काबुली वाले ने कहा, जुग जुग जियो बिटिया, कहकर आशीर्वाद देते हुए घर से विदा किया।
1: बहुत प्यारी कहानी थी ये और बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी नाजमा दीदी की ये कहानी।
0: और आइए सुनते हैं अब प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गाना था। मिनी की जो कहानी थी वैसे ही छोटे से बच्चे की आवाज में ये गीत था।
1: और बाल दोस्तों, अब बारी आ गई है 5 सवालों की। तो पहला सवाल है बच्चों, हिंदी की लिपि कौन सी है? और दूसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा था? तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? और चौथा प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? और आखिरी प्रश्न में हम आपसे एक मुहावरा पूछ रहे हैं, आपको उसका अर्थ बताना है। और मुहावरा है, टेढ़ी खीर होना। और बाल दोस्तों, अब बारी आ गई है पिछले संडे जो हमने आपसे 5 सवाल पूछे थे उनके जवाब देने की। तो पहला सवाल आपसे पूछा था, गोदान पुस्तक किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो बच्चों, उत्तर है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। दूसरा प्रश्न पूछा था, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? बच्चों, इसका उत्तर है पंजाब। तीसरा प्रश्न था बच्चों, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चौथा प्रश्न था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बच्चों, असम में। पांचवा और आखिरी प्रश्न पूछा था, घींगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। और अब देखते हैं कहाँ कहाँ से सही जवाब हम तक आ पहुँचे हैं। ये आया है पत्र छानी अशरफ खां बरेली से, अंजलि, महिमा, सोनू और अर्पित। इन्होंने लिखा है, अंकुर कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इनके 5 में से 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा पत्र हमारे पास आया है, ये पीलीभीत भूरा खां से। लिखने वाली हैं गुलाब शाह, सदफ और युसरा। इनके 5 में से 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं।
0: और ये मेरे पास जो पत्र आया हुआ है, ये आया है
1: कहाँ से आया है मुनव्वर जहां?
0: आवाज वार 16 ककराला बदायूं से। भेजने वाले

0: मसरूर खान, और इनके भी सारे ही सवाल के जवाब बिल्कुल ठीक हैं, और कुछ इन्होंने सजेशन भी दिया है कि इसमें आप चुटकुले वगैरह शामिल किया करें। और अगला पत्र आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से शाजी अबी अंसारी, शगुफ्ता मुबीन मोहम्मद मुनाजिर लालू और लाल मोहम्मद अंसारी, इनके भी सारे ही सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक है। और अब नाजमा दीदी बिल्कुल समय नहीं है जो अब बच्चों से या किसी से भी कोई भी बात की जाए, अब अगले संडे को मुलाकात तक करें इंतजार, और अपनी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां
1: और नाजमा दीदी को दें इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंकुर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन डॉक्टर कुलदीप गंगवार के संग।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: मैं मुकेश कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ स्वस्थ बचपन कार्यक्रम लेकर, और साथ में है मेरे बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
6: नमस्कार सभी श्रोताओं को। पांडे जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, बड़ा मन में संशय की स्थिति बन जाती है जब कोई बच्चा विशेष तौर से नवजात शिशु बीमार हो जाता है, तो ये मन में उथल पुथल होती है, अब क्या करें, कहाँ इलाज कराएं, क्या सुझाव है आपका और क्या सलाह है हमारे श्रोताओं को? अगर कोई बच्चा बीमार है विशेष तौर से नवजात शिशु, तो कैसी जगह पर और कहाँ इलाज कराना चाहिए?
6: देखिए, नवजात शिशु जब बीमार हो तो कोशिश करेंगे एक नवजात शिशु विशेषज्ञ को या एटलीस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं
5: जी,
6: जो उन बच्चों की समस्याओं को समझ सकता है। कई बार गाँव में या इधर उधर दिखा के एक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है आप उसको दिखाएंगे तो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको नहीं मिल सकती, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी, आप ऐसी जगह इलाज कराएं जहाँ पे सुविधाएं सब तरह की हों
5: जी,
6: क्योंकि अगर कोई बच्चे को सांस में इतनी परेशानी हो रही कि वो बच्चा ऑक्सीजन लगाने के बावजूद ठीक नहीं चल पा रहा, तो जहाँ वेंटिलेटर्स हैं और ख़ासतौर से ऐसे वेंटिलेटर्स जो कि नवजात शिशु को चाहिए, तो इलाज वहीं होना चाहिए, वहीं कराना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कोई नवजात शिशु पैदा होने के बाद नहीं रोया है, उसको अपॉक्सिक इंजरी हो गई है, उसका इलाज होना है, तो आप ऐसी जगह इलाज कराएं जहाँ पे बच्चे को होल बॉडी हाइपोथर्मिया दिया जा सके, 72 घंटे के लिए बच्चे को जिसमें ठंडा रखते हैं, उससे उसकी जो ब्रेन इंजरी है वो मिनिमाइज हो जाती है, और आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि बच्चे को इश्मिक एनसेफलोपैथी ना हो
5: जी,
6: जो कि बाद में कई बार जैसे बच्चों को ब्रेन पे जब इंजरी हो जाती है तो ये बच्चे देर से बैठते हैं, देर से बोलते हैं, सुनने में क्षमता कम हो जाती है, इनकी चलने फिरने की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, और इनको फिर कई बार बाद में भी दौरे पड़ सकते हैं, उनका मानसिक विकास रुक सकता है
5: जी,
6: तो वो जीवन भर की समस्या बन सकती है। तो ऐसी जगह इलाज कराएं जहाँ पर ये सब सुविधाएँ हों, बच्चों की मॉनिटरिंग हो सके। मॉनिटरिंग करने के लिए विशेष जो उनके मॉनिटर्स होते हैं उन्हीं से आप कर सकते हैं, और बच्चों को रखने के लिए जो जिस जगह रखते हैं वो तो या तो इंक्यूबेटर्स होते हैं, रेडिएंट वार्मर्स होते हैं, जो बहुत कम वजन के बच्चे होते हैं, खासतौर से 1.5 किलो से कम के बच्चे होते हैं, उनको इंक्यूबेटर्स में ही रखा जाना चाहिए
5: जी।
6: और जो 1.5 किलो से बच्चे बड़े होते हैं उनको आप भले रेडिएंट वार्मर्स में रख सकें, ऐसे जिस बच्चे को रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए

0: तो वहाँ पे उसको सीपेप मशीन्स हैं या फिर HFNC है, हीटेड ह्यूमिडिफाइड मशीन है, वो होनी चाहिए। और या वेंटिलेटर्स हैं तो वेंटिलेटर्स डेडिकेटेड न्यूनेटल वेंटिलेटर्स होने चाहिए। बच्चों की मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। होल बॉडी हाइपोथर्मिया देने की फैसिलिटी होनी चाहिए। जब होल बॉडी हाइपोथर्मिया आप देते हैं तो वहाँ पर सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए।
1: जी,
0: AVG मशीन से जिनसे आपको पता लगता है कि बच्चे के ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कितने उसका pH है, उसके ब्लड शुगर लेवल क्या है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, सोडियम कितना, पोटेशियम कितना है, लैक्टेट कितना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैक्टेट का। तो ये सब जांचें वहाँ पे इन हाउस होना चाहिए। एक्सरे की मशीन है वो इन हाउस होना चाहिए। कई बार वेंटिलेटर्स काम नहीं कर पाते हैं तो आपको हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर है तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड स्पेशली उन बच्चों को जिनको PPHN होता है, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो बच्चे सांस में गंदा पानी ले लेते हैं या पैदा होते समय उनको ठीक टाइम से नहीं रोते हैं, देर से रोते हैं, तो उन बच्चों को दूसरे तीसरे दिन पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़ने लगते हैं, जिसको हम लोग परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन होते हैं। उन बच्चों में हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और कई बार वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। या वेंटिलेटर्स काम नहीं करते जो साधारण वेंटिलेटर्स होते हैं, तो उसके बाद ऑक्सीलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको
1: अच्छा।
0: कि हम लोग HFO ही बोलते हैं। तो आपको ऑक्सीलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ बच्चे ऑक्सीलेटर्स पे ठीक हो जाते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि डॉक्टर के साथ वहाँ पे आपका नर्सिंग स्टाफ किस तरह का, क्योंकि कोई भी डॉक्टर 24 घंटे बैठ के नर्सरी में ड्यूटी नहीं कर सकता। तो आपकी EMOs कैसे हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स कैसे हैं, आपका जो नर्सिंग स्टाफ है वो सब
1: कितना ट्रेंड है?
0: कैपेबल है, कितना ट्रेंड है और उनको क्या क्या दे पा रहा है, तो वो सब होना चाहिए उसी सेटअप में बच्चे कहलाते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब। और आप कौन सा गीत हमारे श्रोता सुनेंगे आपकी पसंद का, ये भी बता दीजिए।
0: ये गीत है राम बलराम मूवी का, एक रास्ता आहा।
1: जी, राम बलराम मूवी का गीत हम डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद पर आप सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को स्वर से सजाया है।

0: कमज़ोर और दर्द ये था। उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इसी को नर्सरी कहते हैं जो सुविधाएं आप बता रहे थे, या कुछ और होता है नर्सरी?
1: देखिए नर्सरी जो है जिसको हम नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट भी कहते हैं आज की भाषा में, वो कई लेवल की होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3
0: जी।
1: तो लेवल 3 में भी वो दो तरह की, जहाँ पे कि आपको सारी फैसिलिटीज इस तरह की है, जहाँ पे आप नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप HFO यूज कर सकते हैं, या आप सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या वेंटिलेट कर सकते हैं। तो नर्सरी एक शब्द है जहाँ पे नवजात शिशुओं को रखने की एक जगह है जो
0: जी।
1: तो लेकिन उसके जो लेवल हैं, जो स्टैंडर्ड है, वो अलग अलग हैं
0: जी जी।
1: तो लेवल 3 जो मैंने आपको बातें बताई वो लेवल 3 नर्सरी की, जिसमें कि आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, जो आपके पास नर्सरी है वो किस लेवल की है, उसके विषय में हम जरूर जानना।
1: देखिए जैसे कि मैंने आपको सारी फैसिलिटीज बताई, मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी भी है, सेंसर मेडिक्स जो ऑक्सीलेटर्स हैं वो एकमात्र मेरे ही हॉस्पिटल्स में, तो बाकी HFO है आपके, जैसे VN500 है या स्टेफनी है वो भी हैं उपलब्ध, सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग भी है, होल बॉडी हाइपोथर्मिया भी है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेवल 3 नर्सरी है
0: जी।
1: और जो स्टाफ भी है, इवन वो मेरी एब्सेंस में कभी मैं वहाँ नहीं हूँ तब भी वो कैपेबल है कि बच्चों को मैनेज कर सके
0: जी।
1: हम लोग बेड साइड इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं, बेड साइड अल्ट्रासोनोग्राफी को भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस चीज़ का एडवांटेज मिले।
0: ये सारा ज्ञान और ये सारी मशीनें कहाँ से खोज कर लाते हैं डॉक्टर साहब आप?
1: देखिए हर इंसान को जरूरी है, जब आप किसी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो उसमें आपको अपने आप को स्किल्ड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए कि आज के समय में क्या है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने देश में विदेश में जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, उनको आप अटेंड करें, उन चीज़ों को आप अपने शहर में लेके आए जिससे उन चीज़ों का एडवांटेज आपको मिल सके
0: जी, जी।
1: मैं ये गर्व कर सकता हूँ कि मैं आज बरेली शहर में आपको बहुत सारी वो सुविधाएं दे रहा हूँ जो कि दिल्ली जैसे शहर में मिलती हैं, आपको वहाँ पे 5 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है
0: जी।
1: तो वो सारी सुविधाएं जो कहीं किसी भी अस्पताल में मिलती हैं आपको दिल्ली जाके, वो सब सुविधाएं हम लोग यहाँ दे रहे हैं। लेवल 3 की नर्सरी चला रहे हैं, कॉम्पिटेंट स्टाफ है हमारे पास, स्किल्ड मशीन उस तरह से कि जो सब उपलब्ध हैं, जैसे कि जिराफ है, इनक्यूबेटर्स हैं, वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं
0: जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो तकनीक है, जो नए दौर की दवाइयां हैं, नए दौर की मशीनें हैं, ये सब लाने के लिए और बरेली और आसपास के लोगों को इनकी सुविधा पहुंचाने के लिए निश्चित ही बहुत बड़े प्रयास करने होते होंगे आपको। डॉक्टर साहब हमारी शुभकामनाएं, इसी तरह आप प्रयास करते रहिए। और इसी प्रयास के साथ अब एक और गीत जो आप सुनवाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को, वो कौन सा है वो भी बता दीजिए।
1: ये गीत है 2 और 2 5 का, तूने अभी देखा नहीं,
0: किशोर कुमार साहब के स्वर से सजा ये गीत हम अपने सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद पर। और अब श्रोताओ, आज के स्वस्थ बचपन कार्यक्रम से मैं मुकेश कुमार पांडे डॉक्टर कुलदीप गंगवार के साथ आप सबसे लेते हैं अनुमति। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे किसी नई बात, नए अंदाज, नए इलाज के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: सुन रहे थे गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन डॉक्टर कुलदीप गंगवार के संग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

फिर स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। श्रेया घोषाल की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का ये गाना। ये संगीत है राम संपत का। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा है।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। राम संपत का संगीत था, लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लीजिए अब सुनिए धुरंधर फिल्म का ये गीत।

0: सतिंदर सतराज की आवाजों में आप धुरंधर फिल्म का गीत सुन रहे थे।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक उन

श्रेया घोषाल की आवाज में ये तूतक तूतक तूतिया फिल्म का गाना है। प्रणव वात्स का ये गीत लिखा है इन्होंने और विशाल मिश्रा का संगीत है।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आप सुखी, समृद्ध, ऊर्जावान रहें। इसी के साथ ही एक बार फिर से इजाजत, नमस्कार।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है, फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपरहिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहाँ से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बे आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, तो एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oudh.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this? Please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
4: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
1: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है।

0: जाती है और लोग मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है, क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
1: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
2: अब और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
3: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
2: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहां। मिस्टर धनराज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
4: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
5: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
6: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होती।
0: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया, कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूं। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
7: चीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, ये यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के, मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है ये हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है।

0: तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने, तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं, तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं, मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। 10 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

हेलो हाय नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट मुनव्वर जहां आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी पसंद। इस कार्यक्रम के लिए फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट डाली जाती है और उस पोस्ट पर आप सारे लोग कमेंट करते हैं, अपने नाम पते के साथ अपनी पसंद का गीत भी लिखकर भेजते हैं। बहुत सारे लोगों के गीतों की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि सारे लोगों के गीत सुनवाना तो नामुमकिन जैसी बात है, लेकिन हाँ, जो भी गीत सुनवाए जाते हैं दूसरे लोगों की पसंद पर भी वो सारे लोगों को अच्छे लगते हैं कुल मिलाकर। श्रोताओं, शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर। ये सफर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पिछली बार इस कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं की पसंद पर एक गीत सुनवाया था हमने, जो कंप्यूटर महाशय ने प्रॉपर तरीके से नहीं सुनाया था और इस बात के लिए हमने खेद भी जताया था और हाँ, एक प्रॉमिस भी किया था कि अगली बार जब मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों से मिलूंगी, अपने दोस्तों से मिलूंगी, तो कंप्यूटर महाशय को मना ही लूंगी और वो गीत जरूर सुनवाऊंगी। जिन लोगों के, जिन दोस्तों के दिल टूटे हैं उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगी। जी हाँ दोस्तों, आज वही वक्त है, तो पहले सुन लेते हैं वो गीत जो पहले आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाए थे।

श्रोताओं 100.4 एफएम बरेली पर कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। दोस्तों ये हमारे पास पसंद के लिए नाम और पता भेजा हुआ है, ग्राम बड़ बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम। ये हमारे पास फरमाइश आई है पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। जिला पीलीभीत ग्राम ढकिया केसरपुर बासखेड़ा से एस के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, खुशी, प्रिया और छोटी सी गुड़िया। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मणिनाथ बरेली सिटी से भेजने वाले हैं अद्भुत कुमार दीक्षित। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। अगली फरमाइश ये है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमार कंडे, संजय मार कंडे और बेबी किट्टू। अगली फरमाइश आई है कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्लीम, निप्पी सहनी, मोहम्मद अफजल मलिक भेजने वाले हैं। सोंगा मगरलोर छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार। छत्तीसगढ़ भूरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग सेन, गजेंद्र सेन। और अगली फरमाइश के लिए ये आई है हमारे पास कमेंट, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभन तहसील सिल्लौड़ से, जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से है अनिल कुमार घोड़के वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोड़के वैष्णवी, गायत्री यज्ञेश। ये फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से है मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। बुधनगर खंडवा से नदीम भाई, बहजोई से राजू जी। और आगे फरमाइश आई है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री यादव। ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र सिंह डूडी। ये कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना ने भेजी है फरमाइश। गांव गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीमन बेगम, अक्रम अंसारी, शाइना अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। अगली फरमाइश है दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, धनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिनार नूर। अलोट जिला रतनाम एमपी से मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से हैं जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मैजबीन निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। अगली फरमाइश है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। अगली फरमाइश हमारे पास आई है राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद नोयान, सैयद निजामुद्दीन। धोतर जोड़ा आष्टी से हैं।

दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। अगली फरमाइश है पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमकीरत, गुरशबत, राहुल विजेंद्र और जयजान। आइए आप लोगों की पसंद पर सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राजपूत से। आवाज किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM बरेली पर। दोस्तों, ये हमारे पास कमेंट आया है बहेड़ी से, भेजने वाले हैं अंजुम भाई खालदा बेगम। और आगे जो हमारे पास कमेंट आया है, घनौरी तेलीवाना से निसार सलमान।

सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। श्रोताओं, ये हमारे पास कमेंट आया है रायपुर छत्तीसगढ़ से, विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर ने भेजा है। ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। आगे ही हमारे पास कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा, इनके मम्मी पापा और रजा परिवार पूरा। अगली हमारे पास कमेंट आया है विलेज लहोडडा जिला बागपत से, भेजने वाली है जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। अगले हमारे पास ये आया है कमेंट नागपुर महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं कमल स्वानी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं निप्पी स्वानी। अगले ये हमारे पास है कासगंज यूपी से पवन गौड़, आशीष गौड़, सुयश तन्मय, अपूर्वा। और आगे हमारे पास ये कमेंट आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। दही गांव नानदुरा धोंदू भारतूरकर भेजने वाले हैं, मंगला भारतूरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भारतूरकर, संत नगरी शेगांव, शुभम राउत, कुमार रुद्र राउत। आगे हमारे पास पसंद भेजने वाले हैं नेकपाल राजपूत, ग्राम लहरा लाड़पुर, कस्बा बाजीगंज, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं से हैं ये। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। आगे ही हमारे पास कमेंट आया है हयात कॉलोनी अर्रिया बिहार से, फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से आपका रेडियो दोस्त अरुण कुमार मालवीय दर्द, सरिता मालवीय। और ये आगे हमारे पास कमेंट आया है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला ये कमेंट है शिव रामनगर बसमत रोड परभणी महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं रणजीत, कारिन गावकर, सृष्टि और समरजीत। अगली ये फरमाइश हमारे पास भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। आगे ये हमारे पास आया है कमेंट रिंगणी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये हमारे पास फरमाइश आई है उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, इनका पता है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, नाभा जिला पटियाला पंजाब से भेजने वाले हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। मौलाना मौला गढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से हैं तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी। आगे हमारे पास फरमाइश आई है राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन भेजने वाले हैं। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से हैं मास्टर बिठल सरोशे, सुषमा सरोशे, परिधि, मायरा। और आगे एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, गणेश कार्तिक
और अगली फरमाइश हमारे पास आई है दतरंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से। हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल

वर्मा, और ये हमारे पास फरमाइश आई है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। अगली फरमाइश है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या। आइए आप लोगों की पसंद पर सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लोफर से। आवाज लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना। अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप है इस वक्त 100.4 आकाशवाणी के बरेली केंद्र के साथ। कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद फेसबुक के माध्यम से। दोस्तों, ये हमारे पास पसंद आई है पिपरिया से कमल कांत गुप्ता भेजने वाले हैं। A5B ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली से हैं। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा, ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, चमनपुरा उदयपुर से हैं, नजीब खान, सबिया खानम, जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो और रईसा निम्मी, गुजरात गांधी ग्राम से हैं, प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी। किशोर कुमार का गाया हुआ इन्होंने कोई भी गीत के लिए कहा है। रेडियो बरेली से ये आगे सेव वाटर सेव लाइफ का इतना प्यारा मैसेज देते हुए, ये गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। अगली फरमाइश हमारे पास आई है गली सिगलापुर बरेली मौर्य मंदिर से, रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य। अगली फरमाइश है पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा, हबीबा। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पिलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष। तिवर्ता छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप, मरकाम जया, मरकाम जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहाद्री बाई मरकाम। आगे ये फरमाइश हमारे पास आई है शुभानी सिंह, डेविड पैरल और पद्मांशी, लीला मिश्रा, अरविंद और पिल्लूवाड़िया। ये आगे इन्होंने अपना नाम और पता लिखा है। हरपल खुशियों से भरे इन्होंने लिखा हुआ है। काफी लंबा मैसेज देने के बाद अपना नाम पता लिखा है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुराना और सुदामा नगर खंडवा से हैं, लक्ष्मी नंदन, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनुज खान, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान। अगली फरमाइश है ये शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। मुंडा टोला डोडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से हैं, डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम। अगली फरमाइश आई है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। अगली फरमाइश है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका। पुनावले पुणे से है अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका, विशाखा सोनवने। पोस्ट भोजीपुरा ग्राम

उदयपुर बनोजान जिला बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। नाजिम अली, दानिश अली, खालिद अली, गुड्डू अली, बेटी अदीब, फातिमा, जेब नूर, शबनम जहां, आकिब अली, हुसैन अली। और अगली फरमाइश ये हमारे पास आई है कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से, जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य, ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला से, स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। आगे फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम हीरावाली फजिलिका पंजाब से, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। आगे ये हमारे पास फरमाइश है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना ताई, हिरामण शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोढ़ांडे। ये फरमाइश हमारे पास आई है गनगोला दादागंज जिला बदायूं से, इशरत खान शायराबानो, रहूप खान, साबरी परवीन, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान। आइए आप लोगों की फरमाइश पर सुनते हैं, आप लोगों की पसंद पर सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दूसरा आदमी से। आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत राजेश रोशन का।

निकल जाएं। दोस्तों दूर निकल रहे हैं हम लोग इस कार्यक्रम से, एक सुरीले सफर के रास्ते से एक अजनबी वादियों में खोते जा रहे हैं। फिलहाल एक अजनबी जैसे दोस्त हमारे बनते जा रहे हैं इस फेसबुक के माध्यम से। अगर आप भी अपनी फरमाइश, अपने नाम

साथ भेजना चाहते हैं और आप भी 100.4 FM बरेली के दोस्त बनना चाहते हैं और कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं आकाशवाणी बरेली के साथ, तो प्लीज आज ही अभी जुड़िए और कमेंट कीजिए हमारी फेसबुक के माध्यम पर जो हमने पोस्ट की है उस पर। फिलहाल जिन लोगों ने पोस्ट पर कमेंट किए हैं उनमें से ये हमारे श्रोता हैं। थाने के सामने अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से भेजने वाले हैं आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव हैं ये भी, और अभय यादव, दीक्षा यादव। अगले ही हमारे पास श्रोता जुड़ गए हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौर, श्रीमती वंदना गौर, मयंक गौर, तन्वी गौर, जयपाल यादव, ये हमारे पास फरमाइश आई है। माँ बलमरेश्वरी धाम सांकरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, नारायण लाल साहू, कुल वंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय साहू और रुद्राश प्रताप साहू। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जिन लोगों ने एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है वो बार बार ना करें प्लीज। अगली हमारे पास फरमाइश जो आई है माँ महामाया धाम भिलौरी बेमेतरा छत्तीसगढ़ से है, सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता रिसीवन, नीलकंठ चंद्रहास, हीरेंद्र संजीवन, त्रिलोक कुमार, मास्टर रंजीत साहू। अगली फरमाइश है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बनी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदेही, बेबी हंसिका, कुमारी अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से है, श्रीमती जयंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से है, अब्दुल गफ्फार डाबर जी, मधुबनी बिहार से है नवीन सिंह, ज्योति सिंह। अगली फरमाइश हमारे पास आई है रावल करनाल से विनोद लखनपाल, भिलाई छत्तीसगढ़ से है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। आगे हमारे पास कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद भेजी है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे, अंबेडकर चौक व कोडी से है उत्तम जमदांडे, स्वराज जमदांडे, ये हमारे पास पसंद आई है। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मणिपुरी, राजा दास मणिपुरी, रानी मणिपुरी, एटा रोड गंज डुंडवारा से उत्तर प्रदेश से हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, शेख मोहम्मद कलीम, डी एस बच्चन, आदर्श नगर मलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडे शर्मा। ये फरमाइश आई है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोढ़ाना, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, कांठ रोड लादावली से हैं ये फरमाइश। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल नमन, पिंकी राधे, गुरे अर्शमिता, प्रिया गरीब भाई, श्री राम राठौर और परिवार के सभी लोग। अगली फरमाइश हमारे पास आई है श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से भेजने वाले हैं आजम कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीता विंतिस, विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह और प्यारी प्यारी कोको रानी। अगली फरमाइश ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से है मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देही, स्वाति सिंह, तानिया एवं सभी मित्रगण। बाकरगंज से ही हैं अख्तर अली, शाहरुख खान, आसिफ अली, साहिबा मोबीन। अगली फरमाइश गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश प्रतीक्षा, स्वापिल और रक्षिता लोखंडे। ये फरमाइश है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। अगली फरमाइश है गांव खोकरान वाली श्रीगंगानगर।

घर विनोद, बारासा विशाल, बारासा विकास, रोशनी, शगुन, अगली फरमाइश कोडवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती ओम उषा, अमित कुमार हैप्पी दुविया निवादा शिरा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी प्रांजल, ये फरमाइश है पंचकूला सेक्टर 9 से आशु चुघ, अश्वनी चुघ, गोविंद टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढींगरा। और अगली फरमाइश है बीपी गौतम, सरिता गौतम, श्रेय गौतम, कुश अन्या, ऐश्वर्या। और ये अगली फरमाइश है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई सोलकार, पिंकी सोलकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोलकार। अगली फरमाइश आई है बीट शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूब, पी पी गुलथे। ये फरमाइश आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, जमनिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोग मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिसा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आशिया सबीहा, अनस और रेहान। शाहू नगर यवतमाल से है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी बेबी, प्रियांशी। ग्राम टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप चांदी, तृप्ति कुमार थांदी और गगनदीप थांदी थे, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, वामिक और वाणी थांदी। आइए आप लोगों की पसंद पर सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म खुद्दार से, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत राजेश रोशन का, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, आपकी पसंद कार्यक्रम में ये अगला कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है बेडी मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, यश प्रियाण वर्मा। अगली फरमाइश है मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिंग, आकांक्षा मलिक। अगली फरमाइश है ये आप लोग दो दो बार नहीं किया करें, नहीं भेजा करें अपने नाम और पते। अगली फरमाइश हमारे पास आई है घिसू दिलावर दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एका एकता अस्मिता सौरभ कुरार दिलवारी और पता है राजपुर मध्य प्रदेश से। श्रोताओं आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग एक बार अपनी फरमाइश के लिए नाम और पता लिखकर भेज चुके हैं वो प्लीज बार बार ना भेजें। अगली हमारे पास पसंद ये आई है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से, लिखने वाले हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। अगली फरमाइश है वीरगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार। अगली फरमाइश हमारे पास आई है राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवांडे, ज्योति नरवांडे, आकांक्षा नरवांडे और आकाश कुमार। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव। और अगली फरमाइश है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, गांव बांडी वाला फजिलका पंजाब से ओम बड़गिया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत और बेबी गरिमा। अगली फरमाइश है गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मजनू मंजू विश्वकर्मा ये भेजने वाले हैं। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है बाबूदीन मेरठ कैंट से भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ये। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता दिव्या, रचना श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, आदिति वर्मा, शिवांश प्रताप सिंह। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, नेतन नाहटा से हैं और चेतन नाहटा से है ये। आगे हमारे पास आई है फरमाइश विलेज देगांव तहसील फ्रॉम पुराना महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं सदाशिव, कविता, श्रिया और बंटी। रेडियो बरेली की जय इन्होंने लिखा हुआ है और आगे नाम और पता लिखा हुआ है। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से भेजने वाले हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा शिवानी और योगेंद्र नायक। नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज, पीहू और दिया। आगरा से है श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और अबीर चौरसिया। आसलगांव बाजार तहसील जलगांव जामोद जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से है राजू मांडे, गजनन मांडे, संजय माठे, ज्ञानेन्द्र माठे, प्रकाश दांडे जी और इनके साथ हैं शेरगांव से श्री संतोष कालेजी, श्री गजनन सालोरकर, सुरेश भिसे पाटिल जी,

रानीवाड़ा रोड नागपुर से हैं देवेंद्र भटकर जी, और अगली फरमाइश हमारे पास आई है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन पाल, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल। ये फरमाइश है दयानंद भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मिस्केन, रितिका वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही, प्रियांशी। उत्तम नगर दिल्ली से है भोगराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। पटियाला रोड गंज डुडवारा से है आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया खां शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन। ग्राम मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से है रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश व भुवनेश कुमार कंबोज। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और अगली फरमाइश आई है ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। ये फरमाइश है ग्राम रजौनी जिला महुआ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम करेले भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद, दिलदार अहमद, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आरिश। ये फरमाइश है जवाहर नगर दुर्ग से आर सी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। मछली गोदाम कैदी मुंडा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। और अगली फरमाइश है राम सिया राम आदि पुरुष की, इन्होंने अपना पता नहीं भेजा है। जिला परिबी ढकिया केसरपुर से है अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद राजपूत, सत्यपाल वर्मा और समस्त ग्राम वासी। ये फरमाइश आई है मेहर नगर उमरखेड़ से, इन्होंने पहले भी बार बार भेज रहे हैं ये। अगली फरमाइश है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। आइए आप लोगों की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, गीत साहिर का, संगीत रवि का।

श्रोताओं, कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर है और इस पड़ाव पे काफी सारे नाम हमारे पास और हैं और एक गीत की फरमाइश भी और है। दोस्तों, ये हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी और इनके साथ हैं आशी गोस्वामी, शिवनिया गोस्वामी, अन्नु गोस्वामी। भोजीपुरा सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। ये हमारे पास फरमाइश आई है तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, शमा, शिवी, मधुवाला प्रजापति, चिट्ठा मंदिर रोड, यमुनानगर से। और अगली फरमाइश है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब, नायाब और लड्डू। राजकोट गुजरात से है रश्मि, झरना, भरत कुमार। नई बस्ती गंज डुंडवारा से है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। ये फरमाइश आई है सफीदो सिटी हरियाणा से, मानक खन्ना, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और समस्त खन्ना फैमिली। अगली फरमाइश है ये नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से, मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से है टेक राम, यदु विकास, यदु हेमलता, यदु गीतेश्वरी, यदु। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। अगली फरमाइश ये है गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसबीर सिंह अरोड़ा भेजने वाले हैं। ये फरमाइश आई है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से, गजनन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु। और अगली फरमाइश ये हमारे पास आई है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान ताइडे, वसंत राव भोजने, पी एस नहावकर, तुषार करनाल गली। और आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है। फिल्म का नाम है ताजमहल, गीत साहिल लुधियानवी का, संगीत रोशन का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुति गौरव सक्सेना की, प्रस्तुति सहयोग गजेंद्र सिंह का।
1: श्रोताओं नमस्कार, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है गौरव सक्सेना जी आपका। आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी, और नमस्कार सभी श्रोताओं को। और जैसा कि होता है कि हम लोग प्रत्येक रविवार आपके लिए उपस्थित होते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र मिला लेके, ठीक उसी तरह आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं।
1: और आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं,
2: इसका मतलब
1: मौसम का असर?
2: हाँ बिल्कुल, गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है।
1: अच्छा एक चीज है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है उसमें।
2: बिल्कुल, बहुत ज्यादा,
1: है ना। और ये जो प्रभाव है वो हमारे मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है और फिर हमारे व्यवहार में भी आ जाता है।
2: बिल्कुल आ जाता है, गर्मी होती है तो दिमाग में भी चढ़ती है।
1: जी, इसलिए जरूरी है कि अच्छा एक चीज है, हाँ, कि गर्मी किसी की नहीं रही।
2: किसी की नहीं रही, बिल्कुल। और शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्हें गर्मी पसंद होगी।
1: जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ठंडक में जो आनंद है और ठंडा दिमाग, और ठंडे दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से एक्ट करना, रिएक्ट करना,
2: बिल्कुल
1: ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन
2: बिल्कुल,
1: में
2: बिल्कुल।
1: तो ये बात इसलिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे स्वास्थ्य संसाधन भी हैं, दवाएं हैं, खान पान है। तो ये बात इसलिए कि जो अभी इतना सारा जिक्र किया, ये हमारे तन मन को एकदम व्यवस्थित रखने के लिए है। तो आज हम मना रहे हैं विश्व योग दिवस।
2: विश्व योग दिवस, और इसका जरूरत इसलिए भी है क्योंकि होता क्या, हम लोग बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में और चीजें क्या होती है ना, कई बार हम दौड़ते दौड़ते समझ नहीं पाते कि कहीं पे हमें रुकना भी है, विश्राम भी जरूरी है।
1: हाँ।
2: और जो शरीर में जो थकावट आई है, जो दिक्कतें आई है, ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग अपने आप को फिर से उतना ही एनर्जेटिक कर सकते हैं।
1: और योग के माध्यम से हम अपने क्रोध पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, गुस्से को भी नियंत्रण कर सकते हैं, और इसके अलावा मौसम के असर को भी बेअसर कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, ये इसका मूल उद्देश्य अपने आप को अनुशासित करना।
1: जी,
2: और इसीलिए पूरे दुनिया भर में इस चीज की इतनी मान्यता हुई है।
1: अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे ही आप स्टूडियो में आए और हमने कहा कि आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, तो सुबह योगा किया आपने?
2: गजेंद्र जी ऐसा है कि वैसे आज तो मैंने किया ही, चूंकि एक आज एक दिन ही ऐसा है। वैसे भी मेरी कोशिश रहती है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय मैं अपने लिए निकालूं, कुछ समय अपने योग को दूं, तो ये रहता है हमारी।
1: अच्छा, सुबह योगा कर लें आप 10-20 मिनट 30 मिनट तक, तो पूरे दिन एकदम स्फूर्तिवान बने रहते।
2: बिल्कुल,
1: है ना। हाँ। तो अब इसी स्फूर्ति को हम अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं।
2: लग रहा है आज कार्यक्रम और बेहतर होने वाला है।
1: हाँ, क्योंकि श्रोताओं ने बहुत गजब ईमेल्स किए हैं।
2: हाँ बिल्कुल, और शुरू किया जाए।
1: बिल्कुल, तो आज का जो पहला ईमेल हम पढ़ने वाले हैं वो बरेली जंक्शन से गरीब भाई का है। बड़ी एक संदेश के साथ इन्होंने अपने ईमेल की शुरुआत की है। आज सुरक्षा अपनाओगे तो कल सुरक्षित भविष्य पाओगे। आप सभी को हमारा नमस्कार। आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। 11 जून को आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में शादी जरूरत है या मजबूरी विषय पर शिप्रा जी की प्रस्तुति अच्छे विषय को लेकर हुई और प्रस्तुति अच्छी थी। 12 जून को फिल्मी फ्राइडे इन्होंने सुना, प्रस्तुति अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ छोटू का बचपन किसने छीना, इस विषय पर देवेंद्र रावत जी की पेशकश। श्रोताओं के विचार बहुत बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा लकी 3 की प्रस्तुति भी अच्छी रही। 13 जून को हेलो बरेली और अनुरोध गीत में रावत जी की प्रस्तुति अच्छी थी। मनभावन में मुनव्वर जी ने अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। 14 जून को एक मुलाकात में मिथिलेश जी की डॉक्टर सौरभ जी से जो बातचीत सुनवाई गई थी, और अंकुर में नाजमा जी के साथ संजय जी की पेशकश अच्छी थी, पर नेमचंद भैया की कमी खली प्रोग्राम में। 15 जून को संजय जी द्वारा अनुरोध गीत अच्छा सुनने को मिला, गीत भी अच्छे थे। 16 जून को शीशपाल जी द्वारा झुमका गिरारे में श्रोताओं से बातचीत अच्छी थी। 17 जून को अनुरोध गीत में रोचना जी की प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में स्थापना दिवस के अवसर पर हरीश जी की श्रोताओं से बातचीत अच्छी थी। 18 जून को झुमका गिरारे में अमृता जी ने चौपला पर एक अच्छी प्रस्तुति दी, जो चौपला पुल है, और बताया कि चौपला पुल अब मरम्मत के बाद खोल दिया

0: गया है। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आपका वो कौन सा झूठ है जिसका सहारा लेकर आपने अपने काम से किनारा किया? ये विषय बहुत बढ़िया था, आप सबको बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार गरीब भाई, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से ईमेल के लिए। और सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और अपने जीवन को और आगे ले जाएंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, आपने एक जो बात लिखी है कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप लगातार हमारे एक नियमित श्रोता बने हुए हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं। और ना केवल पसंद कर रहे हैं बरन आप लगातार हमें अपने विचारों से अवगत भी करा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता है क्या, बहुत सारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, इसके बावजूद अपनी व्यस्तताओं के चलते वो हमें लिख नहीं पाते, लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर लिख रहे हैं। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक कार्यक्रम के बारे में, जैसे कि आपने बताया कि अंकुर अभी नाजमा जी और संजय जी ने प्रस्तुत किया और नेमचंद भैया अभी कार्यक्रम से अनुपस्थित है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल तो नेमचंद जी किसी कारणवश अभी अवकाश पर है। और वैसे भी गजेंद्र जी, मुझे लगता है कि मूल में कार्यक्रम और कार्यक्रम की गुणवत्ता होनी चाहिए, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रस्तोता हैं, जिन्होंने भी पिछला कार्यक्रम पेश किया, जो प्रस्तुत किया, तो वो आपको पसंद आएगा। क्योंकि होता क्या, कई बार हम लोग किसी एक को सुनते सुनते उसके आदि हो जाते हैं, नहीं कि लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी तो लगा कुछ मिसिंग सा है, तो ये हमारा मानवीय स्वभाव है। फिलहाल तो यही है कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर काम कर रहे हैं हम लोग, और यही कोशिश है कि जो कोई भी प्रस्तुत करे कार्यक्रम, और ना केवल अंकुर या कोई भी कार्यक्रम जो हमारे यहाँ से प्रसारित होते हैं, कार्यक्रम की गुणवत्ता पर ध्यान हम लोगों का ज्यादा है, उसको लेकर हम लोग ज्यादा सचेत हैं।
0: जी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी लिखते हैं, नमस्ते जी, 12 जून को प्रसारित कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे इन्होंने सुना, बेहद पसंद आया। प्रोग्राम की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। 12 जून का आपकी बात आकाशवाणी के साथ में जो विषय था, छोटू का बचपन किसने छीना, इस कार्यक्रम में देवेंद्र रावत जी की नंबर वन प्रस्तुति के साथ सुना, और श्रोता साथियों के जो विचारों को हमने जाना, बहुत अच्छे विचार थे। देवेंद्र रावत जी ने भी इस विषय पर श्रोता साथियों के विचारों के साथ हमने विचार भी साझा किए जो दिल को छू गए। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। 14 जून का आपका पत्र मिला भी इन्होंने सुना, श्री गौरव सक्सेना जी और साथी द्वारा शानदार पेश किया गया। कार्यक्रम में श्रोता साथियों के ईमेल और कमेंट प्यार पूर्वक शामिल किए गए, उत्तर बड़े संतोषजनक और सम्मान सहित दिए गए। कार्यक्रम में हमने खुर्जा की खुरचन खा के पत्र लिखा था जो कार्यक्रम में शामिल हो गया। आपने बरेली की सेवैयां खाकर बेहतरीन अंदाज के साथ उत्तर दिया, कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। अच्छा, यहाँ पर गौरव जी,
1: जी
0: हमने बरेली की बर्फी भी खाकर ही तो प्रोग्राम करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: है ना। तो मुझे लगता है कि बरेली और जिस जगह की भी आप जाएं, तो खान पान में हमारे भारत की ये विशेषता है कि हर स्थान का अपना कोई ना कोई एक ऐसा व्यंजन, कोई ऐसी मिठाई जरूर होगी जो वहाँ आसपास में बहुत ज्यादा फेमस होगी।
1: और अच्छा भी है कि हम लोग कहीं जाएं तो जाने कि हम लोग किस जगह पे आए, वहाँ क्या चीज, अपने भारत को जानने एक तरीका ये भी है कि कहाँ पर क्या क्या मिलता है, जानकारी होनी चाहिए।
0: तो आगे भी लिखते हैं कि देवेंद्र रावत जी, मुनव्वर जहां, संजय कुमार, नाजमा जी, शीशपाल, नीतू त्रिपाठी, अमृता सिंह जी, शिप्रा मिश्रा जी की शानदार प्रस्तुति के साथ हमने बहुत से कार्यक्रम सुने, कार्यक्रम पसंद आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तिलक राज अरोड़ा जी के लिए आप क्या कहेंगे उनके इस ईमेल के लिए?
1: नमस्कार तिलक राज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए। और बिल्कुल जैसा कि ये लग रहा है ना कि हमारे जो श्रोता है वो भी अपने ईमेल के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी अब दिखाने लगे हैं, जिस तरह की बातें हम लोग आमने सामने बैठकर करते हैं उस तरह की चीजें हमारे यहाँ ईमेल के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। तो लगता है कि जैसे हमारे श्रोता ही हमारे सामने बैठकर हमारे साथ बात कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि तिलक राज जी आपको हमारे सभी कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं और आप उस पर अपने लगातार अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, और समय निकाल कर इतना व्यस्त जीवन शैली के बावजूद आप लोग हमें लिखकर हम तक पहुंच रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से। ये हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए, सभी के लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात है, और यही अनुरोध है, यही आपसे विनती है कि आप इसी तरह से हमें आप खत लिखते रहिए, मेल करते रहिए या कमेंट्स करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं। परशोत्तम कुमार जी कुछ कह रहे हैं, वो अपने ईमेल के माध्यम से बताते हैं, जम्मू कश्मीर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुति, इस कार्यक्रम में आप दोनों की बहुत अच्छी लगती है, आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम लाजवाब चल रहे हैं, हमें आपके केंद्र से कोई भी शिकायत नहीं है, आप सभी श्रोताओं के लिए बड़ी लगन मेहनत से कार्यक्रम पेश करते हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। 28 तारीख का किसान वाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जिसमें मोटे अनाज पर की गई बातचीत जो दी गई थी वो जानकारी उपयोगी रही।
1: राजेंद्र जी, ये डिजिटल इंडिया का फायदा है कि हम लोग पूरी देश में पहुंच रहे हैं, ना केवल देश में बल्कि और भी
0: विदेशों में
1: भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज

0: कुछ साल पहले अगर हम लोग सोचते कि हमें कोई कश्मीर से पत्र लिखेगा, झारखंड से लिखेगा, तो शायद बड़ा मुश्किल होता था कि वो चीजें या तो हम तक पहुंचती नहीं थी कई मामलों में, ऐसा रहता था। और आज देखते हैं कि कश्मीर से और बहुत दूर दूर से हमारे पास आ रहे। और प्रशोध कुमार जी, आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, आप हमें लगातार लिख रहे हैं, आप हमारे एक नियमित श्रोता है और लगातार आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारे अधिकांश जो पत्रोत्तर के कार्यक्रम रहते हैं, आपका पत्र मिला में लगातार आप हमसे जुड़े रहते हैं, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लिखते रहिए और हमें सुनते रहिए।
1: आगे बढ़ते हुए अगला जो ईमेल है वो पढ़ते हैं, और बड़ा खूबसूरत ये जो ईमेल है वो हमें भेजा है, नाम बाद में पढ़ेंगे, पहले उनका मजमून पढ़ लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, साथ ही आकाशवाणी बरेली की 30वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें बरेली केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, कार्यक्रमों को मन लगाकर सुनते हैं। 12 जून का आपकी बात आकाशवाणी के साथ लकी 3 कार्यक्रम देवेंद्र रावत जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया, अच्छा लगा। 13 तारीख को आपकी पसंद हेलो बरेली भी देवेंद्र जी ने अच्छे गीतों के साथ पेश किया, अंदाज वही निराला था। 14 तारीख को नाजमा जी और संजय जी द्वारा अंकुर कार्यक्रम भी अच्छा लगा, बेहतरीन जानकारियों के साथ पेश किया गया, संजय जी ने आपकी पसंद में बहुत अच्छे गाने सुनवाए। इसी दिन आपका पत्र मिला कार्यक्रम, गौरव जी ने सभी खतों के जवाब बेहतरीन अंदाज में दिए और खतों को खूबसूरत अंदाज में भी पढ़ा गया। 14 और 15 जून को मुनव्वर जहां जी ने आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश किया अच्छे विषयों के साथ। 16 तारीख को शीशपाल जी आपकी पसंद झुमका गिरारे अच्छा लगा। 17 का खास दिन आकाशवाणी बरेली की स्थापना दिवस समारोह, बहुत से इतिहास रचने का दिन, एक यादगार और खूबसूरत लम्हे जो हमेशा याद रखे जाएंगे। आकाशवाणी परिसर में योगासन, फिर वॉकथॉन रैली जिसमें शामिल आकाशवाणी स्टाफ, कुछ कलाकार, पुलिस बल और तमाम श्रोताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसा कार्यक्रम बरेली से पहली बार हुआ जो यादगार बन गया। इसके लिए मिथिलेश जी, गौरव जी दोनों बधाई के हकदार हैं, उन दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। 18 तारीख को अमृता जी द्वारा झुमका गिरारे में चौपला पुल की खास जानकारी दी गई और इसी दिन आपकी पसंद कार्यक्रम भी हमें अच्छा लगा और पसंद आया। बाकी कहते हैं केंद्र के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, आप सबकी मेहनत को सलाम। 12 जून को फिल्मी फ्राइडे, आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी थी। और आकाशवाणी के साथ बाल श्रम निषेध दिवस पर देवेंद्र रावत जी ने छोटू का बचपन किसने छीना, ये अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा ये कृषि जगत, युववाणी, नारी संसार, काव्य पाठ, मन भावन, नमस्ते बरेली, यंग बरेली, रसरंग, सब रंग, जनमंच, ये सभी कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किए गए, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरह आकाशवाणी बरेली से एक से बढ़कर एक कार्यक्रम सुनते रहें, ये हमारी कामना है। और हमारे ये जो श्रोता है वो ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी जी हैं।
0: एक बहुत लंबा और बहुत अच्छा सा ईमेल है जिसके लिए लाल मोहम्मद अंसारी जी और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र जी, जैसा कि इन्होंने बात की स्थापना दिवस और वाकाथन रैली की, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसके लिए एक फेसबुक पे एक इवेंट क्रिएट किया था और लोगों से अनुरोध किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच कर इसका इस रैली में शामिल हो, इसका हिस्सा बने। तो अच्छा लगा देख करके जब हम लोग यहाँ पर सुबह 5 बजे आए और देखा कि हमारे जो भी साथी थे, ऑफिस के साथी थे, उसके साथ साथ बहुत सारे श्रोता भी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे।
1: बिल्कुल।
0: और उन्होंने पूरे उत्साह पूर्वक पूरे दिन, स्थापना दिवस की बात करें, योग सत्र जो आयोजित किया गया था उसमें भी हिस्सा लिया और जो हम लोगों ने वाकाथन रैली का आयोजन किया था उसमें भी बहुत सारे हमारे श्रोता इसमें शामिल हुए थे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद ये लाल मोहम्मद अंसारी जी भी इस कार्यक्रम में आए थे। तो अच्छा लगा कि जिस तरह से श्रोताओं की भागीदारी बढ़ती है जब किसी कार्यालय की, जैसे हम लोग आकाशवाणी में, तो अच्छा लगता है कि सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी करना चाहते हैं और जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए एक उत्साह की बात है और कुछ बेहतर करने के लिए भी हमें ये चीज प्रेरित करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाल मोहम्मद अंसारी जी कि आपने इतना प्यारा सा ईमेल लिखा और अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाई। इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब एक सुरक्षा जनक संदेश के साथ
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम में अगले ईमेल की शुरुआत, सड़क सुरक्षा की यही पुकार, बिना हेलमेट सब बेकार। प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा सब प्रेम नमस्कार। केंद्र के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं, आप सभी की मेहनत को दिल से सलाम करते हैं। बता रहे हैं ये कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ में जो बाल श्रम निषेध दिवस पर देवेंद्र जी ने बातचीत की, टाइटल था छोटू का बचपन किसने छीना, इस विषय पर वास्तव में काबिले तारीफ प्रस्तुति दी। 13 जून को नमस्ते बरेली में इन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित अनुष्का मिश्रा से जानकारी सुनी, ज्ञानवर्धक थी। आपकी पसंद में रावत जी की प्रस्तुति अच्छी लगी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में घरों से गायब होती सिलाई मशीन विषय पर जानकारी अच्छी थी, पर मुनव्वर जी ने संदेश कम लिए और फोन कॉल ज्यादा। संदेश का समय कम से कम 15 मिनट तो रख ही दीजिए। 14 जून को अंकुर में नाजमा दीदी के साथ संजय जी की प्रस्तुति अच्छी थी, मगर नेमचंद भैया

0: नजर ना आए। आपका पत्र मिला हमें गौरव जी और साथी ने ढेर सारे मेल और कमेंट्स को लेकर एक अच्छा प्रोग्राम पेश किया। युववाणी में हेलो फ्रेंड्स की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। 16 जून को आपकी पसंद में शीशपाल जी की प्रस्तुति अच्छी थी। झुमका गिरारे में बरेली आकाशवाणी के स्थापना दिवस को लेकर एक अच्छी प्रस्तुति दी गई। 17 जून को स्थापना दिवस पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में हरीश जी ने श्रोताओं से बातें करके आकाशवाणी की यादों को ताजा किया। यादें ताजा हो ही जाती हैं। 18 जून को अमृता जी द्वारा आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी लगी। झुमका गिरारे में चौपला पुल पर आपकी जानकारी बहुत अच्छी थी। आप सभी को शानदार प्रस्तुति देने के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे ये जो श्रोता हैं वो विनेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से।
1: नमस्कार विनेश जी। गजेंद्र जी, जैसा कि हम लोग अभी देख भी रहे हैं, हालिया अनुभवों से लग रहा है कि एक जो सड़क सुरक्षा है बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: न केवल मैदानी क्षेत्रों में वरन अगर पहाड़ों पर भी अभी हम लोग देखें तो हालिया कितनी सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, छोटी छोटी गलतियों को लेकर। ओवर स्पीडिंग होती है, हम लोग सीट बेल्ट का यूज नहीं करते, हेलमेट का यूज नहीं करते हैं, और कई बार अंधाधुंध गाड़ियां चलाते ना देखते हुए कि सड़क पर साइकिल सवार भी हैं, पैदल लोग भी हैं। और इससे कई बार बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को सामने आती हैं, जन्म होता है, कई दुर्घटनाएं हम लोग फेस करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील विषय है जिस पर हम सभी को मिलकर इस चीज पर बात करनी चाहिए, और न केवल बात करनी चाहिए वरन इसे जीवन में भी अपने उतारने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी यह है कि आपने विनेश जी ने बहुत ही अच्छा ईमेल लिखा है कि एक तो जिस तरह से लिखते हैं ना कि एक एक कार्यक्रम के बारे में विवरण देते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगा, कौन सी प्रस्तुति, किसकी प्रस्तुति, तो इतनी तन्मयता से या इतने अच्छे से लिखने के लिए आपको बहुत अच्छे से सुनना भी पड़ता है। तो अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता इतनी गंभीरता से तल्लीनता से सुन रहे हैं, और बाकी अपने सभी जरूरी काम करने के साथ साथ, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमें लिखते रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मौला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं गौरव जी?
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं।
0: अच्छे हैं?
1: बिल्कुल।
0: सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। 18 जून का अनुरोध गीत अमृता सिंह जी ने पेश किया था, बेहद पसंद आया। 17 जून को अनुरोध गीत रोचना जी ने पेश किया था, ये भी अच्छा लगा। 15 जून का यही कार्यक्रम संजय जी ने पेश किया। 14 जून को आपका पत्र मिला जो गौरव जी के साथ पेश किया गया था, वो पसंद आया। एक बात अभी तक समझ नहीं आई, कुछ अनाउंसर लोग अपना नाम बताते हैं, कुछ नहीं, ऐसा क्यों, जबकि पहले सब अपना नाम बताते थे। इस बात को क्लियर कर दीजिए। आकाशवाणी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, पर आपने दूर के श्रोताओं को इनवाइट नहीं किया, बस पास के श्रोताओं को ही अपने पास बुला लिया, ऐसा क्यों? क्या हम आपके श्रोता नहीं हैं? और वही पास वाले लोकल के आपके रेगुलर लिसनर हैं? इस बात से दिल हमारा बहुत दुखा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैं वक्कार फरीदी जी और आपका परिवार और साथियों को। सबसे पहली बात तो यह है गजेंद्र जी, हमने किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित नहीं किया था, चूंकि हम जैसा सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने फेसबुक पर एक इवेंट क्रिएट किया था जिसके माध्यम से सूचना दी गई थी सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को, कि हम लोग 17 तारीख को एक वाकाथन का आयोजन कर रहे हैं और उसमें हम लोग ने शामिल करने का अनुरोध किया था। तो ये जरूर हुआ कि जो श्रोता आसपास की जगह के थे वो लोग उस सूचना को पढ़कर यहाँ पर शामिल हो गए हमारे कार्यक्रमों में। तो बस यही एक कारण था कि जो स्थानीय श्रोताओं की संख्या हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा बढ़ गई थी। और दूसरी चीज ये कि व्यवहारिक भी शायद नहीं होता, क्योंकि हमारे श्रोता केवल बरेली आसपास के क्षेत्रों के नहीं है, कई लोग तो हजार हजार किलोमीटर और कई समुद्र पार भी हैं, तो हर किसी के लिए इस तरह के आयोजनों में हमेशा शामिल होना संभव भी नहीं हो पाता। मतलब अगर हम बात करें कि कोई भी श्रोता हमारे लिए दूर का या पास का नहीं है, हमारे लिए सभी श्रोता समान रूप से सम्मानीय है, हम उनसे प्रेम करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से वो अपना प्रेम हम पर बनाए हुए, अपना स्नेह बनाए हुए हैं हमारे कार्यक्रमों को लेकर, तो आप इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिए और हमें लगातार अपने पत्रों से, अपने ईमेल से अवगत कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और एक बात और भी है गौरव जी, चूंकि एक ऐसा इवेंट था जिसमें सब कुछ, मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन या 4 दिन के भीतर एकदम सब कुछ निर्णय लिए गए।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और इतनी दूर से बिजनौर से आपको आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता
1: है। मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। और सुबह जितनी जल्दी यहाँ पर आयोजन था 6 बजे, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो श्रोता जो दिल्ली में हैं, बिजनौर में हैं या लखनऊ में हैं, सबके लिए बहुत व्यवहारिकता नहीं होती।
0: नहीं होती, मुझे लगता है कि आगे कभी अगर भविष्य में ऐसा होता है तो
1: बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर ये बात है कि हम लोगों ने कुछ को बुलाया कुछ को नहीं बुलाया, ऐसा तो बिल्कुल
0: ऐसा
1: नहीं
0: तो
1: कह
0: बिल्कुल
1: सकते
0: नहीं
1: कि हम लोगों ने एक सार्वजनिक तौर पर एक मैसेज किया था और अनुरोध किया था कि अगर आप जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़िएगा।
0: बिल्कुल।

0: अब हम चलते हैं कटरा चांद खां वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली की ओर, जहां अनोखी लाल मौर्या जी हैं। बड़ी बेसब्री से अपने ईमेल का इंतजार कर रहे हैं कि भेजा तो हमने भी था, शामिल करेंगे या नहीं। तो इनकी शंका का समाधान हो चुका है, अब नाम जुबान पर आ गया तो ईमेल का मजमून भी आने वाला है आप तक।
1: बिल्कुल,
0: आपका पत्र मिला। कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। शुक्रवार की तरह, हर बार की तरह शुक्रवार से ही ये शुरुआत करते हैं। सुबह 8:15 पर इन्होंने फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम सुना और गाने इनको बहुत अच्छे लगे। इसी दिन शाम को Lucky 3 कार्यक्रम सुना 5:30 पर। इसमें देवेंद्र रावत जी के साथ श्रोताओं की पसंद पर जो गाने सुनवाए गए थे बहुत अच्छे थे। प्रस्तुति तो देवेंद्र रावत जी की बहुत अच्छी रहती है। इसी दिन शाम को युवाणी कार्यक्रम सुना और हम श्रोताओं के लिए जानकारी दी गई थी। 6 गीत सुनवाए गए बहुत अच्छे थे। रविवार को सुबह 8 इन्होंने आपकी पसंद कार्यक्रम, सुबह कहाँ होता है तो आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, 10 होता है। संजय जी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम पेश किए और अंकुर कार्यक्रम का जिक्र इनको करना चाहिए था लेकिन आपकी पसंद कार्यक्रम का जिक्र कर बैठे। क्योंकि इनको अंकुर बहुत पसंद है, सुबह 8:15 पर रविवार को जो प्रसारित होता है, संजय जी और नाजमा जी के साथ कार्यक्रम इन्होंने सुना। जानकारी दी गई बहुत अच्छी थी और जो गाने बालगीत सुनवाए गए थे वो भी अच्छे थे। इसी दिन को शाम 5:30 पर मनभावन कार्यक्रम, श्रोताओं की शब्दावलियों पर जो गाने सुनवाए गए थे गानों का सिलेक्शन अच्छा था। और सुबह सोमवार नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, जानकारी बहुत अच्छी थी। संजय जी के साथ जो शहर के ऊपर जानकारी दी गई और जो गाने सुनवाए गए वो भी बहुत बहुत अच्छे थे। हमें सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं और कोई भी शिकायत नहीं है। कहते हैं कि शाम 4 आपकी बात आकाशवाणी के साथ, हरीश जी ने जो श्रोताओं से बातचीत की, अनुभव लिए आकाशवाणी के वर्षगांठ पर, वो बहुत अच्छे थे। तो अनोखे लाल मौर्या जी का ईमेल है, क्या कहेंगे आप?
1: यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद अनोखे लाल जी आपके इस ईमेल के लिए और अच्छा लग रहा है कि आप हमारे इन कार्यक्रमों को लगातार सुन रहे हैं और यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहेंगे। बस यही अनुरोध है कि आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते रहिए और हमें लिखते रहिए। अच्छा गजेंद्र जी, एक चीज आज और है, कोई शिकायती पत्र आज नहीं है,
0: है? है? तैयार ही है ना?
1: बिल्कुल
0: हाँ।
1: अरे वाह,
0: देखिए शुरुआत में ही अगर शिकायतें शुरू हो जाए ना तो फिर वो एनर्जी और वो भाव नहीं रहते, इसलिए शिकायतों को बाद के लिए रखना चाहिए बचाकर।
1: हाँ, वही मैं इंतजार कर रहा था कि आज कुछ आया नहीं है, कोई नाराज नहीं
0: आया है और वो कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है बल्कि किसी और विषय से संबंधित है, तो है कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से संबंधित है,
1: तो वो विषय भी शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी सदस्य कहते हैं कि अंदाज उसके हाथ हैं, आगाज करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। एक बेहतरीन और उम्दा मिजाजी किरदार यकीनन, जिनके आला अंदाज और जादुई अल्फाजों का हर शख्स कायल है। ऐसी शख्सियत आदरणीय मिथिलेश जी को आकाशवाणी केंद्र बरेली का केंद्राध्यक्ष बनने की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत बहुत मुबारकबाद पिछले हफ्ते आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना गौरव सर और साथी को, हमारा मेल भी शामिल किया गया था। इसी दिन का अंकुर कार्यक्रम नाजमा दीदी के साथ सुना। कार्यक्रम में अब कुछ कमी सी महसूस हो रही है, वो तो आपको भी पता है और वो नेमचंद भैया जी है। और झुमका गिरारे कार्यक्रम नीतू जी के साथ सुना, बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद परवेज देवेंद्र रावत जी को भी सुना, बहुत अच्छे अंदाज में कार्यक्रम पेश किए गए। आकाशवाणी बरेली की 33वें स्थापना दिवस पर झुमका गिरारे शीशपाल जी के साथ सुना, कार्यक्रम बेहद पसंद आया। मुनव्वर जहां रोशना मिश्रा जी की आवाज कुछ कम सुनने को मिल रही है और एक शिकायत है हमारी, तैयार
1: करिए। बिल्कुल।
0: हेलो बरेली कार्यक्रम में 9:30 तक 4-5 घंटी गई पर फोन नहीं उठा हमारा। एक सुझाव है, इस हफ्ते के दोनों झुमका गिरारे कार्यक्रम मुहर्रम पर किए जाएं तो बेहतर होगा, बाकी आप मर्जी।
1: बिल्कुल, दोनों बातें कह दी हैं निसार जी ने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस ईमेल के लिए सार जी। अब आते हैं इनके ईमेल पर, इन्होंने क्या क्या शिकायतें की हैं और उसका समाधान भी हम लोग करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि अंकुर कार्यक्रम को नाजमा दीदी के साथ सुना, कुछ कमी महसूस हो रही थी। बिल्कुल, जैसा कि हम पिछले एक ईमेल के उत्तर में बता चुके हैं कि फिलहाल तो अभी जो नेमचंद जी हैं अभी अवकाश पर हैं और अभी नाजमा जी जो कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रही हैं, जो भी साथी होगा उसके साथ। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग ने हमेशा कहा है कि व्यक्तिगत नामों से बेहतर है कि हम लोग कार्यक्रम की गुणवत्ता की ओर ध्यान दें, क्योंकि लोग हमेशा आते जाते रहते हैं कि आज जैसे की बात हुई स्थापना दिवस है, 33 हो गए इस आकाशवाणी को और 33 में जाने कितने प्रस्तोता आए होंगे, कितने अधिकारी कितने कर्मचारी आए, लेकिन स्थायित्व किस चीज का है? केवल वही जो कार्यक्रम स्थिर बने हुए, लोग बदलते

0: जा रहे हैं
1: जी
0: और कार्यक्रम है जो संगीत या जो भी चीज हम लोग यहाँ से प्रसारित करते हैं वही एक चीज है जिसे हम लोग मेंटेन किए हुए हैं। तो हम सभी लोग एक टूल्स के तौर पर काम करते हैं, हम हो ना हो ये आकाशवाणी होना चाहिए
1: बिल्कुल
0: और श्रोताओं का मनोरंजन लगातार होते रहना चाहिए। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की गुणवत्ता की ओर ही झुकाव बना रहे तो बेहतर होगा। और दूसरी चीज, आपने एक कहा है कि हेलो बरेली कार्यक्रम में 9 से 9:30 बजे तक हमारे 3-4 बार कॉल आई और शायद उठ नहीं पाया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि समय बहुत सीमित होता है और कई बार ऐसा होता है बहुत सारे श्रोता होते हैं, कभी हम छूट जाते हैं कभी आप छूट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे श्रोताओं हैं और सभी को एक कार्यक्रम में रोज शामिल कर पाना उतना आसान होता नहीं है, संभव भी नहीं हो पाता है। तो यही उम्मीद है कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखेंगे। और रही बात मुहर्रम की, और वैसे भी ना केवल इस कार्यक्रम की बात, अगर झुमका गिरे की बात ना भी करें तो वैसे भी अगर कोई भी हमारे यहाँ जो त्योहार आता है, कोई भी उत्सव आता है, कोई भी राष्ट्रीय दिवस आता है, तो हमारा आकाशवाणी वैसे भी कार्यक्रमों को शेड्यूल करता है, उस पर कार्यक्रमों को निर्धारित करके कुछ ना कुछ प्रस्तुतिकरण होता है। अब तो इसलिए इस बारे में तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाने की जरूरत है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि हम किसी कार्यक्रम को छोड़ रहे हैं या शामिल कर रहे हैं। यथासंभव जितने कार्यक्रम किसी विशेष पर्व पर बनाए जा सकते हैं हम उन कार्यक्रमों के साथ और बेहतर कार्यक्रमों के साथ उसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गौरव जी, अब तो कोई ईमेल बाकी नहीं है, लेकिन अभी जो एक बात आई ना कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, है ना?
0: बिल्कुल
1: आपने कहा
0: बिल्कुल
1: था अभी
0: बिल्कुल
1: ईमेल के उत्तर में, तो राजेश खन्ना जी ने कहा है किसी फिल्म में कि जहां आज मैं हूं कल कोई
0: कल
1: और
0: कई हो,
1: था,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल
1: ये भी एक दौर है और वो
0: वो
1: भी
0: भी
1: एक
0: एक
1: दौर
0: दौर था
1: था।
0: बिल्कुल। तो
1: तो इसी
0: इसलिए
1: बात पर कि हमें इस संसार में कुछ भी पूरा अपना नहीं मानना चाहिए, हम इस संसार की रूपी सराय में एक मेहमान बन के आए हैं।
0: और इस कार्यक्रम का भी उदाहरण ले सकते
1: जी,
0: हैं कब से ये चल रहा है और कितने लोग यहाँ पर बदल गए, कोई
1: बदल
0: आपकी
1: गए,
0: कुर्सी पे बैठा था कोई हमारी
1: बिल्कुल
0: कुर्सी पे,
1: बिल्कुल
0: कल कोई और आएगा।
1: जी। तो कुछ भी सही नहीं है अगर ये हम मान के चलते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने कर्म क्षेत्र में हम ज्यादा बढ़ते हैं और मोह माया के पाश में कम बनते
0: कम
1: हैं।
0: बनते बिल्कुल
1: तो हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, क्योंकि चलना पड़ेगा, वक्त हुआ पूरा। अपने श्रोताओं को पत्र लिखने के लिए पता बता दें, हालांकि पत्र तो बहुत कम मिल रहे हैं, ना ही मिल रहे हैं। तो कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 2430001, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
0: ईमेल है आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com।
1: तो योग करते रहिए, निरोग बने रहिए, इसी कामना के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
0: और गौरव
1: को दीजिए अनुमति, कीजिए स्वीकार, सप्रेम
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की, प्रस्तुति सहयोग गजेंद्र सिंह का। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 MHz पर।

एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा

0: साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
4: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
4: सोनू जी, देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए 2-3 चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो 2 चीजें सुलभ हुई है महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
3: जी,
4: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आप आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख

0: सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। तो इस तरह की जो योजना है, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती है क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करती। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: जाता। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है, तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था यूक्रेन से।

0: कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहाँ जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आपके लिए है ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहाँ कहाँ प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहाँ पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहाँ फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ क्या डिमांड है दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहाँ करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत।
1: तो सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000 10,000

0: हजार करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसमें। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं IIT हैं IIM उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है वहाँ उनके टीचर जो मेंटोर हैं वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन रहा है वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ

0: के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती या, और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 2,000 के, 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिया कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है तमाम तालाबों का, सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहाँ से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए

0: जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
2: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो

0: किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए चार लेबर कोड आए हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही है वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं भी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा और वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हाथ नहीं चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही

0: खुश है। इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास
2: और उनके बच्चे पढ़े
1: भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहाँ बहुत साक्षरता है, वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद, 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
2: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:05 होने को हैं। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के कार्यक्रमों से।
4: लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बीच हमेशा की तरह एक विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं, और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं श्री कृष्णदत्त मिश्र जी, योगाचार्य हैं, जाने माने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। इसके अतिरिक्त लखनऊ के एक जाने माने विद्यालय में भी आप योगाचार्य का के रूप में कार्यरत हैं। संस्कृत संस्थान योगाचार्य से भी हैं आप जुड़े। भारतीय आदर्श योग संस्थान लखनऊ के अध्यक्ष एवं योगाचार्य हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्णदत्त मिश्र जी आपका आज के विशेषज्ञ के रूप में हमारे कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में। नमस्कार सर,
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं।
5: धन्यवाद।
4: आज का दिन तो बहुत व्यस्तता से भरा रहा होगा आपके लिए। आज सुबह से
5: तो पूरी तरह से हमारे भारत नहीं बल्कि अपितु विश्व पूरा इस योग में सम्मिलित है, महासंगम में स्नान कर रहा है।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और

0: एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि योग सबसे बड़ा एक सहायता सहायक के रूप में दुनिया के सामने, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सामने आ रहा है। और हमारे श्रोताओं को आज हम पितृ दिवस की भी शुभकामनाएं देते हैं, आज फादर्स डे है, साथ ही साथ आज संगीत का भी दिवस है। तो हम अगर योग की बात करें तो योग में एक पिता स्वरूप भारतवर्ष पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, जैसे एक पिता मार्गदर्शन करता है अच्छे जीवन के लिए। और साथ ही साथ अगर संगीत की बात करें तो स्वस्थ जीवन के लिए संगीत सुनना भी एक आवश्यक है, संगीत एक थेरेपी की तरह काम करता है। और योग हमारी सांसों के, हमारे शरीर के अंदर का जो संगीत है यानी हमारी सांसें, हमारे हृदय के अंदर का जो संगीत है यानी हमारी धड़कनें, उनसे हमारा परिचय कराता है योग। तो सबसे पहला सवाल हमारे श्रोताओं से सर, आज संगीत दिवस, पिता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाओं के साथ, योग क्या है साधारण शब्दों में? ऐसे तो बहुत बड़ा निबंध लिखा जा सकता है योग पर, पूरा दिन समय कम पड़ जाएगा, लेकिन संक्षेप में अगर हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहें कि योग क्या है।
1: योग यजु धातु से बना हुआ शब्द है और उसका तात्पर्य ही है जोड़ना।
0: बिल्कुल,
1: यानी प्रकृति का पूरा स्वरूप जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि जो आध्यात्म ऊर्जा है, यानी योग के जो पहली लाइन है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी आपके जिसने चित्त को धारण कर लिया हो और जिसने वृत्तियों को देख लिया हो, वही असली योग
0: बिल्कुल
1: सम्मिलित है।
0: और चित्त वृत्ति से हमारा परिचय कराता है योग। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो 21 जून जो साल का सबसे लंबा दिन होता है और स्वास्थ्य के लिए एक सबसे बड़ा संदेश लेकर आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज, और जो 2026 की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में योग कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
1: देखिए, योग ही से ही हमारा जीवन है। एक ऐसी संजीवनी है जो भागीरथी प्रयास से आपको प्राप्त होता है।
0: बिल्कुल,
1: वास्तव में देखिए, भागीरथी प्रयास से गंगा का अवतरण हुआ, उसी प्रकार मनुष्य के संजीवनी क्या है? प्राण ऊर्जा। और उस प्राण ऊर्जा को आपको अपने शरीर में फैलाना है, और वो तभी फैलेगी जब आप पूर्णतः अपने इस क्रिया को करेंगी। यानी योग एक प्रत्यक्ष विद्या है।
0: बिल्कुल,
1: और प्रत्यक्ष विद्या को जब प्रमाण तब मिलता है जब आप उसको अभ्यास करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो असल में लोग डिग्रियां ले लेते हैं और अपने को ये कहते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, और शुरुआत करते करते देर हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आपको शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं और वास्तव में आप भारत के प्रतिभागी बनना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ऋषि मुनियों का ये दिया हुआ स्वरूप अपना लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर सा विषय आज का, और कहते हैं ना कि जिसने खुद को साध लिया उसने जीवन को जीत लिया। और योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को जोड़ने की एक साधना है, तन मन और आत्मा का एक ऐसा सुंदर समन्वय जो जीवन को संतुलित बना देता है। और इसीलिए आज FM रेनबो आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में योग विषय, करें योग रहे निरोग। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज उपस्थित हैं स्टूडियो में योगाचार्य कृष्णदत्त मिश्रा जी। तो आप अपने सवाल भी 0522-2238-845 या फिर 0522-2238-852 पर। इसके अतिरिक्त आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और संगीत दिवस भी है तो एक संगीत म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, एक संगीत वाला ब्रेक जो हमें स्वस्थ रहने में, हमेशा हमें नई ऊर्जा देने में सहायक होता है। और वापस आते हैं अपने कार्यक्रम में, सुनते रहिए हेल्थ एंड फिटनेस FM रेनबो पर।

0: 12:12 का समय है, 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है आप सभी ने, और जो भी श्रोता हमें न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए सुन रहे हैं, मोबाइल पर लाइव रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा एक मिनट देरी से हमारा प्रसारण कुछ सेकंड लेट पहुंचता है, तो हमारे भरोसे हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:12 हो रहे हैं, आपके पास क्या समय हो रहा है नहीं पता। लेकिन समय की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम मिलता ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, नहीं योग करने के लिए नहीं, और योगा करने में तो और ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। हमारे साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करें योग रहें निरोग विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और आपकी शंकाओं की का समाधान देने के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे विशेषज्ञ योगाचार्य कृष्णदत्त मिश्रा जी स्टूडियो में हैं। तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं उनसे, लेकिन सबसे पहले हमारे श्रोताओं के सवाल। और श्रोता 0522 2338 845 या फिर 0522 2338 852 डायल करके सीधा योगाचार्य जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि इस वक्त हमारे साथ दो श्रोता लाइन पर है, एक एक करके उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी। हेलो मैम, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, नाखों से 100% ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप नेत्रहीन है और आपका क्या नाम बताया? जतिन।
1: जी जतिन,
0: आप सवाल पूछे अपना, क्या जानना चाहते हैं?
1: हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार
1: जी। मैं सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी होती है,
2: हाँ हाँ,
1: युवाओं के लिए योग कितना कारगर रहता है सर? सर ये बताइए।
2: सर युवाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा अमृत का समान है, क्योंकि आपके युवा वर्ग को अगर कोई भी चीज ठीक करनी है शारीरिक रूप से और मानसिक और बौद्धिक रूप से, तो उसमें योग की भूमिका बहुत ही प्रबल है।
1: जी।
2: तो सर्वोपरि है, हम ये कहेंगे। तो आपको क्या परेशानी है आप ये हमसे पूछ सकते हैं?
1: एक्चुअली परेशानी कोई नहीं है, बस हम पूछना चाहेंगे सर कि युवाओं के लिए कितना कारगर रहता है और कैसे क्या
0: बिल्कुल जतिन, आप सवाल आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक है और इस विषय पर अभी हम आगे और चर्चा करेंगे, तो आप इसी तरह ध्यान से सुनते रहिए पूरा कार्यक्रम, तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलता रहेगा। धन्यवाद। और हमारे साथ एक और श्रोता है। हेलो, मुझे लगता है कि इनकी लाइन हेलो डिस्कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, हमारे साथ छवि राम राठौर जी थे शायद और कुछ जानना चाहते थे। सर जैसे कि जतिन ने प्रश्न किया, युवाओं की अगर हम बात करते हैं या किशोरावस्था किशोरों की या बच्चों की भी बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो आजकल की लाइफ में बात हुई, मैंने कहा समय नहीं मिलता, तो आप बताएं कि कितना मिनट पर्याप्त होता है, कम से कम कितने मिनट हमें देना चाहिए योग को? और दूसरी चीज ये कि छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एकाग्रता की जो सबसे ज्यादा कमी हो रही, उसमें कितना सहायक हो सकता है योग, कितने मिनट वो करें?
2: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और उन्होंने भी ये प्रश्न करके लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा
0: जी
2: उपलब्धि है। युवा जो है आजकल भ्रमित है, भ्रमित इस मामले में कि कब खाना है, कब सोना है, कब बैठना है, एक अनियमितता बनी हुई है और

0: वो अनियमितता नहीं होनी चाहिए
1: बिल्कुल,
0: और क्योंकि युवा युवा के जैसे दिखना चाहिए, उसको आप 1 किलोमीटर के लिए भेज दीजिए वो बिल्कुल आलस के मारे भरा पड़ा है। आप सब्जी लेने जाना है स्कूटर उठा गया, पास में ही सब्जी मिलती है, पैदल भी जा सकता है, लेकिन नहीं। तो युवा, और बहुत से युवा ऐसे हैं कि जो वास्तव में फिटनेस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, और तमाम चीजें हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। तो आप अपने प्रति कितना सचेत हैं ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि सचेत होना बहुत जरूरी है। आपके गार्जियन ने सारी व्यवस्था कर रखी है, जिम भी है आपके पास, आपके पास पार्क भी है बगल में, आपके पास सारी चीजें हैं उपलब्ध है, योगा की सेशंस लेने वाले लोग हैं, लेकिन आप सरकार और तमाम लोग ऐसी व्यवस्थाएं पार्कों में किए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग फिटनेस के लिए खोज रहे हैं कि है। वही वाली हालत हो जाती है कि मृग ढूंढे बन माही।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो जो कस्तूरी कुंडल मृग बसे और मृग ढूंढे बन माही,
1: जी जी,
0: मतलब उसकी महक कहाँ से आ रही है उस हिरण को नहीं पता चलता है।
1: बिल्कुल,
0: तो उस युवा को ये पता नहीं रह रहा है कि हमको करना क्या है। तो आप योग में अगर वो सम्मिलित हो जाएगा तो उसकी भ्रांतियां टूट जाएंगी। तो ये जरूरी है कि वो योग से जुड़े, और सूर्य नमस्कार उसके लिए, और भ्रामरी क्रिया उसकी मेमोरी के लिए बहुत जबरदस्त चीज है।
1: बहुत सारे ऐसे अद्भुत आसन हैं, ऐसी योग क्रियाएं हैं योग में, जो मुझे लगता है छात्रों का जीवन और बेहतर बना सकती हैं, और उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में और बहुत ज्यादा सहायक हो सकती हैं। एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पर है। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: मैम, मैं फारूक अली लकेसर खीरी से बोल रहा हूँ।
1: जी फारूक जी, क्या पूछना चाहते हैं, बात कीजिए आप।
2: सर, डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, बताएं।
2: सर, सबसे पहले तो हमारे योग दिवस और संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
0: आपको भी, आपको भी बहुत बहुत आकाशवाणी की तरफ से शुभकामनाएं।
2: और सर, मैं ये छोटा सा प्रश्न ये है कि क्या योग करने से हमारा मोटापा कम या कंट्रोल में आ सकता है?
0: आपको हम एक सलाह देंगे कि अगर आप योग करते हैं, खाली एक आसन हम आपको बताएंगे, त्रिकोण आसन। अगर आप 10 दिन मात्र करते हैं, आज अपना अपना वजन का वो देख लीजिए, और 10 दिन बाद आप इस त्रिकोण आसन को करिएगा, और फिर देखिएगा कितना वजन कम हो गया। तो वास्तव में आसनों की संख्या जरूरी नहीं है, आपको उसको सही तकनीक से करने की जरूरत है, क्योंकि आसन तो बहुत है मोटापे को कम करने के लिए। सूर्य नमस्कार है, अगर 5 बार रोज सूर्य नमस्कार कर रहे हैं मोटापा होगा ही नहीं। लेकिन आप कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप केवल मोटापा यानी खान पान में भी आपको थोड़ा सा अपने ध्यान देना होगा। आप यहाँ योगा कर रहे हैं, फिर शाम को आप वही अपने फास्ट फूड और तमाम चीजों को खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए दोनों का संतुलन नहीं बनेगा।
1: इनका संपर्क टूट गया, लेकिन मुझे लगता है कि इनको इनके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। एक प्रश्न और आया हमारे पास सर ईमेल के माध्यम से। ये पिंकू सोनी जी हैं, बाराबंकी से पूछना चाहते हैं शुभकामनाएं देते हुए कि अपनी दिनचर्या में योग में सबसे पहले कहां से शारीरिक योग की शुरुआत की जाए, कृपया मार्गदर्शन करिए। और यही सवाल मेरा भी कि जो न्यूकमर्स हैं या बिगनर्स हैं, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत सारे लोगों ने मजबूरीवश, क्योंकि तमाम संस्थानों में भी आज योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन्होंने बस सिर्फ, और कुछ लोग स्टेटस के लिए, स्टोरी के लिए आज पार्कों में जाके उन्होंने वीडियो बनाए होंगे, सेल्फी ली होगी, योग किया होगा, लेकिन वो नियमित योग को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। अगर शुरुआत करना चाहें, जिन्हें आज बहुत सारी मोटिवेशन प्रेरणा मिली होगी कि अगर वो योग करेंगे तो आजीवन वो स्वस्थ रहेंगे, तो वो शुरुआत कहां से करें?
0: देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। शुरुआत जो है अपने मॉर्निंग वॉक से करें।
1: अच्छा,
0: मॉर्निंग वॉक के बाद जो है वो सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करें
1: जी।
0: जैसे आपकी उंगलियां हिल रही हैं कि नहीं, कलाई हिल रही है कि नहीं, आपके शोल्डर हिल रहे हैं कि नहीं, आपकी गर्दन हिल रही है कि नहीं, पैर के मूवमेंट आपको करने चाहिए जिससे कि आपकी नस नाड़ियां पूरी तरह से खुल जाएं, और तब आपको प्राणायाम और आसन में आनंद मिलेगा
1: जी।
0: तो ये शुरुआत आपने बड़ी अच्छी की है कि कैसे करें, और युवा क्या हम कहेंगे, बुजुर्गों को, महिलाओं को,
1: किसी भी उम्र में हम शुरुआत कर सकते हैं,
0: ये सभी के लिए है
1: बिल्कुल।
0: और वो जो शुरुआत अगर कर देंगी, उसी दिन से उनका हेल्थ का जो ग्राफ है वो ऊपर उठ जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पर है, पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे की ये चर्चा हम जारी रखेंगे। जी नमस्कार, हेलो हेलो हेलो, जी प्रणाम, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?

0: हाँ जी, अपना नाम पुनः बताएं।
1: जी, मेरा नाम सत्यनारायण पोरवाल है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच है।
0: जी पोरवाल जी, क्या जानना चाहते हैं?
1: जी मैम जी, योगा अभ्यास के क्या तरीके हैं और क्या इसके फायदे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, फायदे तो आपको तमाम कल से ही बताए जा रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में तो हम बता ही रहे हैं। तरीके मुझे लगता है कि योगाचार्य जी, आप जो रेडियो के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को समझा सके जितना, क्या
2: देखिए तरीके बहुत हैं। जैसे अपने शरीर को अंगड़ाई यानी ताड़ आसन करना, खींचना है ना, अंगड़ाई लेना, पैर के मूवमेंट को गोल घुमाना है ना,
0: साइकिलिंग
2: तो
0: करना।
2: हाँ, अपने आपकी नस नाड़ियों को जब तक एक मूवमेंट नहीं मिलेगा तो वो संचालन नहीं होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है,
0: बिल्कुल
2: आपका ऑक्सीजन लेवल रुक जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपका कहना सही है कि किस तरह से हम वो करें कि जो है हमारा इसमें हमारी हमारे मन लगे और हमको थोड़ा सा अच्छा लगे।
0: बिल्कुल,
2: तो मैंने आपसे बताया पहले भी, एक प्रश्न आया था, वॉक करना पहले शुरू करें।
0: जी जी जी। और अच्छा, एक हमारी संध्या जी हैं, इनका प्रश्न है और ये हमें इंदिरा नगर लखनऊ से मेल कर रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि मैं एक टीचर हूँ और जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की कि समय नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों को, तो इन्हें भी अर्ली मॉर्निंग विद्यालय जाना पड़ता है, तो ये जानना चाहती हैं कि क्या दिन में किसी भी समय योग किया जा सकता है या खाना खाने के बाद योगा योग क्रिया करने बैठे जब हम योगा करने तो कितना अंतराल होना चाहिए कि कितनी देर पहले हमने खाना खाया हो और मिनिमम कितने मिनट पर्याप्त होता है योग के लिए।
2: देखिए आपका प्रश्न सही है, खाना खाने और उसके बीच का अंतराल 2 घंटे होने चाहिए।
0: जी,
2: अगर आपने खाना खा लिया है तो 2 घंटे बाद ही आप योग करें।
0: जी,
2: और आप योग किसी भी समय कर सकती हैं। दोपहर में अगर आपको समय मिल रहा है तो दोपहर में कर लीजिए, अगर आप शाम को करना चाह रही हैं तो शाम को कर लीजिए, अगर सुबह कर रही हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हर आदमी ये संदेहास्पद स्थिति ना बनाए कि हमको कब करना चाहिए। सभी को मालूम है प्रातः काली,
0: जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे या टीचर्स हैं, अर्ली मॉर्निंग उन्हें जाना है काम पे, तो वो शाम को आकर
2: कर सकते हैं। और आप समझ लीजिए टीचर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको पेशेंस रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
2: और वो बच्चों के साथ किस तरह से मतलब अपने को एडजस्ट करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो नित्य प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम करें और साथ में अपने को ध्यान की और आवृत्ति करें। अगर ध्यान करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ध्यान पे पूरा वो जोर दें, 1 मिनट 2 मिनट शुरुआत करें या सांसों को जो है लंबी गहरी सांसों को लेने का ध्यान करें तो वो उससे इनकी आवृत्तियां बदलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से वो अपना काम कर पाएंगे, किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनकी हम अगर बात करें तो। प्राणायाम, योग और मेडिटेशन में क्या अंतर है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं सर अपना।
3: हमारा नाम मोहम्मद आसिम, मैं जिला बदायूं पर
0: बदायूं से। जी आसिम जी, क्या पूछना चाहते हैं?
3: जानना चाहते हैं योगा करने से क्या फायदे मिलते हैं, योगा है क्या?
0: जी इसी पर तो ये चर्चा हो रही है, आप कार्यक्रम ध्यान से सुनिए, शुरुआत से अभी तक हम यही चर्चा कर रहे हैं कि योग क्या है और क्या फायदे होते हैं, तो कार्यक्रम ध्यान से सुनते रहिए, आपको जरूर उत्तर मिलता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आपके प्रश्न के लिए। और एक ईमेल है हमारे नियमित श्रोता मोनू जी हैं, जानना चाहते हैं, नमस्कार भेजा है और शुभकामनाएं देते हुए ये कह रहे हैं कि आकाशवाणी टीम का धन्यवाद, व्यायाम तो नहीं कर पाता, उठने में देरी हो जाती है, शॉप पर उठा बैठक हुआ कि करती है, ये एक शॉपकीपर है और ये 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, साइकिल की भी सवारी करने लगे हैं, तो क्या हमारा योग हो जाता है? अच्छा, ये जो मोनू जी का सवाल है सर, उससे जोड़ता हुआ ये एक सवाल मेरा भी है कि जो फिजिकल एक्टिविटी लोग कहते हैं या हम अपने काम के अनुसार या अपनी दिनचर्या के दौरान फिजिकली एक्टिव रहना और सिर्फ योग या एक्सरसाइज के लिए समय निकालकर सिर्फ वही काम करना, सिर्फ योगा करना आधा घंटा या पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहना, दोनों में क्या डिफरेंस है?
2: देखिए अब जैसे आपने बताया साइकिल चला रहे हैं या एक्टिव रहते हैं,
0: मतलब ये जैसे शॉपकीपर हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल मेहनत का काम करते हैं, शारीरिक श्रम हो जा रहा है उनका,
2: ये भी एक योग है, है ना, दौड़ना जाना ले आना, तो उनका मूवमेंट हो रहा है।
0: अच्छा,
2: कई लोग होते हैं कि मूवमेंट ही बंद कर देते हैं, कमरे में बैठे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं फोन से और सामान आ गया, पोर्टल

0: आजकल आधुनिक हो गया है
1: जी
0: कि सामान हम कौन लेने जाएगा, पोर्टल से हमने मंगा लिया, तो वो सारी चीजें अब बदल चुकी है। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप पार्टी करते हैं, बहुत आप लजीज चीजों को खाते हैं, तो उतना उससे दुगना आपको मेहनत करना पड़ेगा
1: जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं उससे ज्यादा
0: जी,
1: उसको बर्न करने में
0: क्योंकि
1: मेहनत करनी पड़ेगी।
0: ऑक्सीजन ही है जो आपके सारी चीजों का सवाल का जवाब हल करती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्रेन में कमी होगी, तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। आपके हार्ट में अगर कमी होगी तो आपका हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। आपके लंग्स की प्रॉब्लम होगी तो लंग्स में बाधित होगा, तो सांस की प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन पे ही निर्धारित है।
1: बिल्कुल।
0: ऑक्सीजन की डिमांड है आपके बॉडी को। तो अगर आप बाजार बहुत जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। थोड़ा सा आपको पार्क में समय देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे जगह पे हट के आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि वहां पे आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़े, क्योंकि वही आपकी एक औषधि के रूप में दवा है।
1: बिल्कुल। और जैसे मोरू जी का सवाल था, उसी तरह जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं, क्या उनको अलग से योग की जरूरत नहीं है? आधे
0: अलग
1: घंटे
0: से योग जरूरत
1: है जरूरत, बस
0: क्योंकि
1: यही यही
0: देखिए
1: मैं जानना
0: अभी
1: चाहती
0: आप
1: थी।
0: देखिए पोल्यूशन बाजार में गया है वो आदमी, और वो कहे कि नहीं मैं बहुत दौड़ता हूं और घर का भी काम करता
1: हाँ,
0: हूं,
1: दौड़ भाग करते, झाड़ू
0: तो
1: पोछा कर रही हैं महिलाएं,
0: हाँ
1: कहती हैं हमारा
0: महिलाएं भी
1: तो
0: कहती
1: योग
0: हैं
1: हो
0: हम
1: गया।
0: तो योग हो गया। तो
1: हाँ
0: ऐसा नहीं है।
1: जी।
0: अब जैसे शोल्डर की प्रॉब्लम है महिलाओं को, फ्रोजन शोल्डर बहुत हो रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: थायराइड
1: बिल्कुल
0: बहुत हो रहा है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यह है कि अपने को बंद कमरे में रखा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो थोड़ा सा निकलने की जरूरत है।
1: जी जी बिल्कुल। और भी मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं जो आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन इस बीच हमारे श्रोता जुड़े हैं, उनको हम प्राथमिकता देते हुए पहले उनके सवाल लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: हिमांशु
1: हिमांशु, इतना संकोच करके क्यों बात कर रहे हैं आप? जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी बताएं।
2: हमारा सवाल है, योगा करने के बाद कुछ खान पीन की व्यवस्था रखें या बस ऐसे?
1: मतलब योगा करने से पहले पहले टेबल
0: नहीं
1: सजा ले, सब कुछ रख ले, उसके
0: देखिए
1: बाद योगा करें
0: आपका
1: ना।
0: प्रश्न अच्छा है,
1: जी
0: और आपको ये चाहिए कि हाँ योगा करने के बाद कम से कम आप आधा घंटा कुछ ना खाएं,
1: पानी पी सकते हैं
0: पानी पी सकते हैं, घूट घूट
1: या
0: पानी।
1: किसी तरह कोई एनर्जी ड्रिंक, नींबू पानी
0: हाँ
1: वगैरह ये
0: नींबू
1: ले
0: पानी,
1: सकते हैं,
0: नींबू
1: ग्रीन
0: पानी
1: टी।
0: ले सकते हैं, आप मट्ठा ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: आप गर्मी का सीजन चल रहा है तो मट्ठा बहुत अच्छा रहेगा, और घूट
2: ठीक
0: घूट
2: है।
0: कर पीजिए। लेकिन आधे घंटे तक थोड़ा कुछ खाना मत खाइए।
1: जी
2: जी जी
1: थैंक यू हिमांशु आपके सवाल के लिए। एक और श्रोता है हमारे साथ। हेलो हेलो जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं बी एस शर्मा, ग्राम पड़वा कॉलिया।
1: जी आपका नाम नहीं समझ पाए हम, फिर से बता दें।
3: बीए शर्मा।
1: बी ए शर्मा जी, शर्मा जी सवाल पूछिए अपना।
3: मेरा सवाल ये है, ये जो आपसे लोग पूछते हैं कि व्यायाम करना या ये कहाँ तक सही है, क्या है इसमें?
1: जी
0: जी व्यायाम करना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि
3: व्यायाम
0: हमारी
3: करने का सही सही मायने तरीका क्या है?
0: सही मायने तरीका ये है कि आपकी जितनी हड्डियों की जोड़ है
3: जी
0: वो हिलना डुलना चाहिए, ठीक है? जैसे
3: जी
0: पहले के लोग पर प्राचीन काल में जो है, अभी पहले कुछ वर्षों से पहले जो है, लोग सिल बट्टे पे मसाला पीसा करते थे, तो अब पीसना बंद कर दिया, पैकेट के मसाले लाते हैं और उसी से सब्जी बना देते हैं, और उनको यूरिक एसिड नहीं होता है। जो सिल बट्टे पे अपने हाथ को चला रहे हैं या हाथ की सूक्ष्म क्रिया कर रहे हैं, तो आप देखिए ये बहुत बड़ा रिजल्ट आया। मैं आपसे अनुभव की बात बता रहा हूँ कि लोग मेहनत जब से छोड़े हैं वो बीमार ज्यादा पड़े हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: और
1: बात है
0: आप देखिए
3: सर।
0: जी
3: नहीं नहीं जी, सर जी सर जी सर जी
0: जी
3: आज इस युवा पीढ़ी को अपाहिज किसने बनाया?
0: आज के युवा पीढ़ी को
1: टेक्नोलॉजी
0: अपाहिज ने बनाया है परिवार ने,
1: ने
0: परिवार ने बनाया सर।
1: बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत
0: आप
1: सारे।
0: ये देखिए, आप
3: सर जी
0: अपने
3: देखिए,
0: परिवार अपने बच्चे को सुबह कितनी बार उठाते हैं, या
3: सर जी मेरी सोच,
0: आप स्वयं कितनी बार पार्क में जाते हैं?
3: मेरी सोच सर जी एक है
0: जी,
3: अगर ये पब्लिक चाहे रात में 2 बजे उठ के अपने घर पे ही बैठ के व्यायाम करें,
1: कान
3: में उससे ज्यादा योगा क्या हो सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी, आप आपके ही सवाल से ही आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। आप रेडियो पे कार्यक्रम सुनिए आगे का। ये इन्होंने

0: एकांत की बात की। एक अक्सर हमने देखा है कि जैसे जिम जाते हैं लोग, वहां पर म्यूजिक चलता रहता है, उसके बीच एक्सरसाइज करते हैं। इसके अतिरिक्त जब घर में भी जुम्बा कर रहे हैं, म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज हो गई, या अगर घर में या दिन में किसी समय योग करने बैठते हैं तो आसपास का शोर, अगर हमें खुद को साधना है, स्वयं को जानना है, प्राणायाम करना है, अपनी सांसों का संगीत समझना है, तो एकांत बहुत आवश्यक है, एकाग्रचित मन। और शायद मुझे लगता है कि जब ध्यान मेडिटेशन की बात हम करते हैं तो उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये, तो कितना आवश्यक है आसपास का वातावरण।
1: देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है
0: जी,
1: और उन्होंने जो प्रश्न किया है एकांत में वो बहुत ही संजीदगी से ये कहना चाहूंगा
0: जी
1: कि एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप बंद कमरे में हो जाइए। एकांत का मतलब है प्रकृति के बीच में रहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: अगर आपके मकान में ही करने की इच्छा है तो खिड़की दरवाजे खोल के करिए, एसी चला के आप योगा नहीं कर सकते
0: जी,
1: आप पंखा चला के योगा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उससे आपके सांसों का संबंध सीधे बना हुआ है
0: जी।
1: तो ये मैं ये जरूर कहूंगा कि सारे लोगों से कि इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लें, और एकांत का मतलब है कि ध्यान एकाग्रता से ही, एकांत से ही आती है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वो एकांत का मतलब वो आप अपने पार्कों में जाइए, आपके पार्क नहीं है तो अपने छत पे आप कर सकते हैं, आप खिड़की दरवाजे, अगर छत जाने लायक नहीं है, फ्लैट है तो खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, पंखे बंद रहें, सुबह के वातावरण में आप शांत होके अपने को एकाग्रता और ध्यान कर सकते हैं। तो ये सब सिचुएशन बनानी
0: पड़ेगी, जो शांत वातावरण है ये उसे ही मिल सकता है जो सुबह जल्दी उठेगा।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा है
0: जी,
1: आप सुबह के बिना आप नहीं पा सकती। आप 11 बजे आप कोशिश करेंगी कि हम फ्लैट के छत पे बैठ के एकांत में ध्यान कर लें, तो आपको इतनी गाड़ियों की आवाज और इतनी सारी चीजें सुनाई देगी कि आप नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल। और अगर मन को साधने की बात करते हैं, हम प्राणायाम या ध्यान की बात करते हैं जो योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं और हमने हमारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर लगा है, अपनी धड़कन पर लगा है, तो आसपास का शोर तो हमें वैसे भी नहीं समझ में आएगा, सुनाई पड़ेगा।
1: बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन वो सांस जो जा रही है वो नुकसान का कारण बन सकती है।
0: जी जी,
1: आप ठीक कहा आपने कि हमारा ध्यान इतना केंद्रित हो गया है कि हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी सांस जो है पोल्यूशन वाली वो तो जा रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इस पे सोचने की और विचारने की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप थोड़ा सा अपने फोन के स्पीकर को अपने माउथ के पास ले आइए और थोड़ा तेज बोलिए जी। अपना नाम बताएं।
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी।
2: आप अंजू दीदी बात कर रही हैं?
0: हाँ जी, मैं अंजू शुक्ला बोल रही हूँ जी।
2: दीदी आज मैं आपको योग दिवस की बधाई देता हूँ आप सभी
0: जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ योगाचार्य कृष्णदत्त मिश्र जी हैं, आप उनसे कुछ जानना चाहते?
2: दीदी जैसे कि योग के,
0: पहले अपना नाम बताएं आप, अपना नाम बताइए।
2: संतु।
0: संतु
2: जी।
0: अच्छा जी, बताएं, पूछे सवाल।
2: मैम जैसे योग से शरीर से फिट रहता है, शरीर योग से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शरीर योग से फिट रहता है, इसी विषय पर ही तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद संतु जी, आगे का कार्यक्रम आप रेडियो पर सुनिए। सर, जब बात की संतु जी ने, और इसी तरह एक प्रश्न भी पूछा है कि सीमा गुप्ता जी का ये प्रश्न है, और ये हमें कहां से सुन रही है ये तो नहीं लिखा इन्होंने, इनका सवाल है कि क्या ओवरऑल बॉडी के लिए योग आवश्यक है, और कौन सा आसन या मेडिटेशन जरूरी है जो रूटीन में लेडीज कर सकती हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए?
1: ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है, एक सेतुबद्ध आसन है
0: जी।
1: सेतुबद्ध आसन महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, और इस आसन को आप अगर करेंगी महिलाएं
0: जी,
1: तो उनकी सारी बीमारियां जो उनकी पर्सनल बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है, जैसे महा जो क्या नाम है पीरियड की बीमारी है
0: जी,
1: या और भी तरीके हैं शरीर में ऐठन दर्द और तमाम तरह का चीज रहता है, तो ये उस समय ये इनको बहुत फायदा करेगा। अनुलोम विलोम महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एकाग्रता बनना और पूरी तरह से अपने को नर्स नाड़ियों को 72,000 नाड़ियों को जागृत करना और एनर्जी का फील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं के लिए बहुत सी चीजें बनी हुई है। भुजंग आसन है जो कोबरा पोज कहते हैं, वो चक्रास को एनर्जी देता है, पूरे 7 चक्रास उनकी महिलाओं के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
0: बिल्कुल,
1: जो कि 5 बार अगर रोज ये करें तो उनकी

0: एनर्जी में कमी नहीं रहेगी, बरकरार रहेगा। और दूसरी बात कि भ्रामरी क्रिया जैसे मानसिकता की वो जो है काफी फील करती हैं, काम करते करते थक जाओ और फिर भी परिवार को खुश ना कर, तो ये जो इस फीलिंग में अगर वो भ्रामरी कर रही हैं तो उनको भी ऊर्जा बनना और उनकी उनको परिवार वालों को भी सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए इतना समर्पित रहती हैं तो इनके लिए भी हम कुछ योगा का प्रबंध करें, इनको मैट ला के दें और इनको रोज मॉर्निंग वॉक भेज दें और वो जो है जाके योग करें।
1: बिल्कुल, आज की जो जिंदगी है, जीवन है, आज कल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन, गुस्सा बहुत तेजी से आता है लोगों को, अनिद्रा यानी नींद ना आने की भी समस्या बढ़ रही है, इन सब में योग सहायक हो सकता है?
0: इसी सब के लिए तो योग बना है। आप देखिए टेबलेट खाते खाते उनके जो MG होती है बढ़ती
1: जाती है
0: और डॉक्टर कहता है कि अब ऐसा है कि आपको इससे हम ज्यादा नहीं दे सकते और क्योंकि आपके किडनी पे असर पड़ सकता है।
1: जी जी।
0: तो आदमी अगर बहुत ज्यादा अवसाद रोग है और डिप्रेशन में है तो उसके लिए केवल 15 मिनट का अगर उसने अनुलोम विलोम कर लिया,
1: अच्छा,
0: तो समझ लीजिए वो जड़ से खत्म कर देगा अवसाद रोग।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये बहुत संजीवनी का काम करेगा।
1: जी जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन पर। हेलो,
2: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी, मैं विमल सिंह बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत चिलन पोस्ट रहा हूँ, जिला तहसील मलियाबाद, जिला लखनऊ से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ।
1: जी विमल जी,
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: हाँ जी बताएं, नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसे मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो इसमें सर हमारी हिम्मत की नहीं मजबूत पड़ती, न मैं कुछ कर पाता हूँ कि सर शरीर से ज्यादा परेशान है, ऐसा कौन सा सिस्टम जो अगर हम करें जो शरीर से अंदर इतना परेशान ना रहे?
0: जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि परेशान मतलब दिमागी तौर से आप रहते हैं थोड़ा, तो वो
2: से तो मतलब वो है एक जो नेत्र ध्यान है दोनों आंखों से दिखता नहीं और बाकी शरीर से अंदर कहीं कमर दर्द कर रही, कहीं सीना दर्द।
0: जी जी वो जी जी वो दर्द का ही कारण है ये योग, है ना। आप अगर अनुलोम विलोम रोज करेंगे तो ये एक दर्द निवारक भी है और आपके बॉडी के डिटॉक्स को भी ये ठीक करता है, है ना। आप भस्त्रिका रोज किया करिए 30 बार खाली 30 बार अपने हाथों को उठाया करिए सांस भरते हुए और फिर एक झटके में छोड़ दीजिए नाक से सांस, तो भस्त्रिका अगर करेंगे बॉडी आपकी बहुत जल्दी डिटॉक्स होगी और आपके अंदर का जो दर्द है वो खत्म होगा। और दूसरी बात कि आपके जो पाइपलाइन है आपकी नसें हैं वो खुलने लगेंगी और वो जब खुल जाएगी तो फिर तो आपको पूछना ही नहीं है। आप नित्य प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट योग करिए फिर देखिए आपको इसका एहसास होगा और सूर्य नमस्कार अगर आता हो तो जरूर करिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास से ही सारी चीजें आ जाएंगी। और एक और श्रोता हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? अपना आप थोड़ा तेज बोलिए। हेलो
3: हेलो
1: जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है लेकिन बहुत धीमी आ रही है, आप थोड़ा तेज बोलिए और जल्दी बोलिए। नाम बताएं अपना। हेलो, मुझे लगता है कि घबराई हुई है या बस सवाल नहीं पूछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जब आपका फोन लग जाए और मेरी आवाज आपको सुनाई पड़े तो आप तुरंत रिस्पांस करें तो मुझे लगता है कि हमारा समय भी बचेगा और हमारे आज के विषय पर हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा आपके सवालों के साथ कर सकेंगे आपने योगाचार्य जी से। एक और श्रोता है हमारे साथ। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि इनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इस बीच वकील अहमद जी का मेल है और ये कहना चाहते हैं, पहले तो शुभकामनाएं दी हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, इन्होंने भी वही बात कही जो मोनू जी ने कहा कि जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं जैसे कि ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, आम का बाग है उसी में टहलते हैं, तो क्या ये पर्याप्त है स्वस्थ जीवन के लिए? सीतापुर से इनका मेल आया।
0: नहीं, ये तो बढ़िया चीज बताया इन्होंने कि आम का बाग है और उसमें टहल रहे हैं,
1: खुशकिस्मत है कि आसपास बाग है,
0: बाग तो है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये इनकी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो सकती, अच्छा रहेगा। लेकिन इनके साथ साथ इनके घुटना संचालन, गर्दन संचालन, ग्रीवा संचालन, शोल्डर संचालन, ये सब चाहिए। एक उम्र के बाद जो है ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे ये छोटे मोटे सूक्ष्म क्रिया करने से हमारा पूरा बॉडी फिट रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, इनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो चलिए कोई बात नहीं, इस बीच हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स मेल के माध्यम से भी प्रश्न पूछना चाहते हैं और मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं ही। देखते हैं कितनी सफलता हम पाते हैं, किन किन विषयों पर हम बात

सकते हैं। फिलहाल लाइफस्टाइल बीमारियां, बीपी, शुगर और खास तौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए हेल्थ एंड फिटनेस 100.7 एफएम रेनबो पर। 12:41 का समय हुआ है। मैं हूं अंजू शुक्ला और हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं योग दिवस पर बात करने के लिए, योगाचार्य कृष्ण दत्त मिश्र जी।

0: जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और जिंदगी हमें बहुत सारे अवसर भी देती है ये भी कोई नहीं जानता। अक्सर वो शानदार सा अवसर आपके सामने से होकर निकल जाता है और आप उसे उस मौके को पकड़ नहीं पाते, और यही मौका बार बार आपको हर रोज मिलता है। हर रोज सुबह होती है खूबसूरत नजारा प्रकृति का, और उस खूबसूरत नजारे के बीच आपका शरीर, आपकी सांसें आपसे कहती हैं कि उठिए और थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, योग करिए और स्वस्थ रहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस, जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है एफएम रेनबो का आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, उसमें आज हमारे बीच विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं योगाचार्य कृष्णदत्त मिश्र जी। बहुत अनुभव है सर को, और अपने अनुभव के आधार पर वो आपके प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं, और हमारे साथ बड़े सारे श्रोता फोन लाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और आप अगर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायल कर सकते हैं, लखनऊ का एसटीडी कोड 0522 2238845, और दूसरा नंबर है 0522 2238852। इसके अतिरिक्त अगर फोन लाइन बिजी मिल रही है तो बिना देर के अपने प्रश्न हमें ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। स्मॉल लेटर्स में टाइप कीजिए fmakashvanilucknow@gmail.com, दैट इज fmakashvanilucknow@gmail.com। हमारे साथ एक श्रोता है आचार्य जी फोन पर, इनसे बात कीजिए। हेलो
1: जी सर।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं बबलू यादव मोहनलालगंज लखनऊ।
0: जी बबलू जी, क्या जानना चाहते हैं, बात कीजिए योगाचार्य जी से।
1: मैम आपको ढेरे शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की।
0: जी आपको
1: और
0: भी।
1: साथ भी मेरे ओर से
2: बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और सर मैं ये जानना चाहता हूँ
2: जी,
1: कि बढ़ते हुए शुगर के लेवल में कौन सा प्राणायाम अधिक करना चाहिए मुझे?
0: बिल्कुल, देखिए इसी सवाल पर हम आ रहे थे, म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने भी चर्चा की थी। बबलू जी बस इस सवाल को हम पूछेंगे, थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, ठीक है, आपके सवाल का उत्तर मिलेगा। प्रोग्राम ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है जी। एक और श्रोता है लाइन पर, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं सर। हेलो हेलो, मुझे लगता है संपर्क हट गया है इनसे। हेलो
3: हेलो जी मैडम नमस्ते।
0: जी बबलू जी।
3: जी मैडम मैं हिमांशु बोल रहा
0: हूँ। अच्छा हिमांशु जी बताएं, अपना प्रश्न पूछिए।
3: मैडम जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा पेट निकल रहा है तो कौन सा योग करना चाहिए जिससे पेट कम हो जाए?
0: क्या क्या उम्र है हिमांशु आपकी?
3: मेरी 44।
0: अच्छा ठीक है हिमांशु, आप रेडियो पर प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस आपके प्रश्न पर हम आते हैं, ठीक है, आपका उत्तर मिलेगा योगाचार्य जी के द्वारा। जी सर हमने दो प्रश्न लिए, बबलू जी जानना चाह रहे थे शुगर, और हिमांशु जी जानना चाह रहे थे पेट निकल रहा है। पहले हम

0: करते हैं कि बीपी, शुगर और थायराइड, ये जितनी भी बीमारियां हैं, डिप्रेशन पर हमने बात की, मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य को जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, खास तौर पर शुगर और बीपी की प्रॉब्लम, तो इसमें कौन सा योग क्रिया, कौन सी योग क्रिया हमें सहायक हो सकती है और किस तरह के आसन या योग करने चाहिए ऐसे लोगों को?
1: देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और जो डायबिटिक के लोग हैं, इस समय संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसका मूल रूप ये कहेंगे कि खान पान जो बाहरी, अगर घर का काम कर रहा है व्यक्ति तो खान पान नहीं हो पा रहा है उसका ठीक से, और वो बाहरी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है, खा रहा है, तो वो जो है खान पान पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और प्लस उसको वॉकिंग जरूर करना पड़ेगा।
0: जी,
1: डायबिटिक पेशेंट है तो वॉकिंग करना और मंडूक आसन।

0: अच्छा है। और जो डायबिटिक के लोग हैं इस समय संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसका मूल रूप ये कहेंगे कि खान पान जो बाहरी, अगर घर का काम कर रहा है व्यक्ति तो खान पान नहीं हो पा रहा है उसका ठीक से, और वो बाहरी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है, खा रहा है, तो वो जो है खान पान पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और प्लस उसको वॉकिंग जरूर करना पड़ेगा
1: जी।
0: डायबिटिक पेशेंट है तो वॉकिंग करना, और मंडूक आसन, डायबिटिक के लिए मंडूक आसन बहुत ही कारगर बना है।
1: मंडूक आसन,
0: मंडूक आसन
1: किसी किसी विशेषज्ञ योगाचार्य के निर्देशन में या अच्छा सा वीडियो देखकर उसके हाँ, पहले
0: हो, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ हो और उसको मंडूक आसन मना है, नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन वो किसी योगाचार्य के सानिध्य में ही करें,
1: बिल्कुल,
0: और उनकी यूट्यूब या किसी को देख के ना करें, क्योंकि उसको वो बता नहीं पाएगा कि यूट्यूब में कि कैसे,
1: बिल्कुल, है ना? बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वो चीज जो उसको चाहिए वो किसी पार्क में जाके और इसको अच्छे ढंग से सीख ले, 15 मिनट का उसके आसन है और पूरा डायबिटिक कंट्रोल रहेगा।
1: अच्छा,
0: तो भुजंग आसन है, धनुरासन है, सब पेट के बल वाले आसन जितने भी हैं वो सब डायबिटिक के लिए।
1: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके अतिरिक्त जैसे महिलाओं में मेनोपॉज की बात आती है, सर्वाइकल है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है, बड़ी सारी डिफिशियंसीज विटामिन की, तो इनमें कौन सा आसन कारगर साबित हो सकता है?
0: देखिए, आपने बोला कि अब जैसे बहुत सी चीजें सम्मिलित हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है या थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है, हार्मोनल डिजीज को पूरी तरह से बांटने का काम ही थायराइड का होता है, तो थायराइड को अगर ठीक करना है तो उज्जायी प्राणायाम है, ये बहुत ही बेस्ट चीज होती है। उज्जायी प्राणायाम अगर हर आदमी 20 बार कर ले तो उसको थायराइड नहीं होगी।
1: अच्छा,
0: है ना, इतना कारगर है वो। और यही नहीं, उसके कफ नहीं ठीक से, मतलब कफ पे भी कंट्रोल रहेगा, और हार्ट की जो धमनियां होती हैं वो चिपकेंगी नहीं कभी, तो बहुत फायदे हैं। और यूरिक एसिड तो बढ़ने का मूल कारण है माना गया है कि आप सूक्ष्म क्रियाओं को नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घर में लेटे हैं, पड़े हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ठीक है मैं दर्द की दवा दे देता हूँ, मैं वो, तो वो जो है आप क्या है, डॉक्टर भी मना करता है, थोड़ा घूमिए फिरिए टहलिए, तो डॉक्टर भी मना करता है, लेकिन वो खुद प्रेशर देते हैं कि आप नहीं लिख दीजिए, तो ये दवा विकल्प नहीं है, अपने को अपने मूल जड़ को समझना जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: कि किसके वजह से ये परेशानी हो रही है।
1: बिल्कुल, और योग मुझे लगता है कि परेशानियों को, व्याधियों को जड़ से ठीक करने का काम कर सकता है, सहायक हो सकता है। और एक जो प्रश्न आया हिमांशु जी का, कानपुर से ही हमारे साथ जुड़े थे, इनकी 44 वर्ष इनकी उम्र है, पेट निकला हुआ है, खासतौर पर पुरुषों पर, और खासतौर पर जो आज की लाइफ स्टाइल है, कॉर्पोरेट जॉब है, रिमोट जॉब है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घंटों स्क्रीन के सामने लैपटॉप पे सिस्टम पे बैठे हैं, चलना फिरना बहुत कम हो पा रहा है, मानसिक तनाव तो है ही, उससे तो निजात मिल ही नहीं रही है, ऐसे में वजन बढ़ना, पेट निकलना कैसे नियंत्रित करें योग के माध्यम से?
0: देखिए, पेट निकलना एक मूल कारण माना गया है कि किसी भी टाइम आप भोजन कर ले रहे हो, टाइम का एक आपका वो रहना फिक्स होना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: आप 12 बजे खाते हो तो 12 बजे खाओ, 1 बजे खाते हो तो 1 बजे खाओ रोज, लेकिन एक टाइम फिक्स होना चाहिए।
1: बिल्कुल, लाइफ स्टाइल सुधारें। और अगर योग आसन की बात करें तो कौन से आसन इनके लिए
0: इंस्टेंटली, अगर मोटा पेट को अंदर करना है तो आपको धनुरासन है, सलभ आसन है, आपके और भी आसन है जैसे भुजंग आसन है, है ना, पेट को कम करने के लिए उष्ट्रासन सबसे ज्यादा बना है, तोंद को अंदर करने के लिए।
1: अच्छा, उष्ट्रासन
0: यानी अपने एड़ियों को पकड़ के और कमर को आगे की ओर खींचना और फिर उसमें स्थिर होना, लेकिन वो भी आप कर पाएंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो कमर पे हाथ रख के अपने को पीछे मोड़ा करिए, तो वो भी तोंद को निकलने का। अच्छा, कई लोग जो है चावल खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी पी देते हैं, तो वो जो है क्या होता है कि वो और बढ़ा देता है
1: अच्छा
0: पेट को, तो ऐसी अवस्था में कम से कम आप पानी ना पीजिए, है ना, खाने के तुरंत बाद भी
1: पानी नहीं पीना चाहिए,
0: थोड़ा सा मतलब वेट करिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ है, हेलो
2: जी, मैं शिवम बोल रहा हूँ कानपुर से।
1: शिवम जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं
2: जी? आप सभी को पहले तो योग दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं, और मेरा प्रश्न ये है कि योग से तात्पर्य केवल आसन प्राणायाम से है कि अष्टांग योग से है, और मेरा दूसरा ये कि क्या सूर्य नमस्कार से वजन कम होता है और कि मन बढ़ता है, और मेरा आखिरी ये कि मतलब जैसे आपने वजन कम करने के लिए बताया था
1: जी,
2: फिर वजन बढ़ाने के लिए क्या मतलब

0: कौन सा आसन ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पूछा आप अपना नाम बताएं फिर से।
0: जी मेरा नाम शिवम त्रिपाठी, मैं कानपुर से बोल रहा
1: शिवम
0: हूँ।
1: जी, ठीक है शिवम जी, आपका के प्रश्नों का उत्तर योगाचार्य जी रहे दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा रेडियो पे। जी आप बताएं सर, सबसे पहले तो क्या सूर्य नमस्कार वजन कम करने के लिए तो सहायक है ही है,
2: सहायक नहीं, परिपूर्ण है।
1: परिपूर्ण है, और बढ़ाने के लिए भी, मतलब
2: और
1: वजन जिनका
2: वजन
1: कम है, जो
2: जिनका कम,
1: अंडरवेट है।
2: हाँ बढ़ाने के लिए भी आपके बहुत से हार्मोनल्स प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके वजह से आपके बॉडी में इस अस्थिरता रहती है
1: जी जी
2: ना। तो उन अस्थिरता को दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, पुष्ट करता है शरीर को।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल।
2: जो अगर वो करेंगे 5 बार से शुरुआत करें, अगर नहीं पहले कर रहे हैं तो 3 बार से शुरुआत करें, और अनुलोम विलोम उसमें बहुत ज्यादा अग्र भूमिका निभाता है।
1: जी जी जी जी
2: अनुलोम विलोम आपके पूरे वातावरण को चेंज करने का, वो कई लड़के बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप भी दुबले पतले हैं, तो वो उसके वजह से
1: हाँ, कुछ
2: एक
1: कभी
2: रहती है
1: जेनेटिक आती है
2: जेनेटिक
1: कभी।
2: चीजें
1: जी
2: रहती हैं। लेकिन ये जो है ये सही कह रहे हैं कि कुछ खान पान में केला दूध जैसे है, अपने
1: बिल्कुल।
2: को पुष्ट करने की बात हुई तो केला दूध आप ले सकते हैं, और आप जो है अंकुरित आहार लीजिए,
1: जी जी
2: और ये सारी चीजें एक मतलब उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, संतुलित आहार, प्रोटीन युक्त आहार लीजिए। और एक प्रश्न हमारे कौशिक वधावन जी, हमारे श्रोता हैं राजकोट गुजरात से, कौशिक अस्मिता और वडवाड़ा परिवार की ओर से प्रश्न आया है। इन्होंने प्रश्न नहीं भेजा, इन्होंने सिर्फ शुभकामनाएं भेजी हैं। योगा कर्म सु कौशलम, स्वस्थ तन शांत मन सुखी जीवन, यही है योग का आधार। और वास्तव में योग अपनाने से जीवन तो सफल होता है, ये सुंदर बनता है, स्वस्थ बनता है। और ये जब अच्छा, एक और प्रश्न है ब्रह्मेश सोनी जी का, कुछ योग करने की प्रक्रिया भी बता दें जो रोज करना है तो बहुत अच्छा होगा।
2: बहुत अच्छा किए, ताड़ासन जैसे है रोज करना चाहिए, और गर्दन की सूक्ष्म क्रिया दाहिने बाएं ऊपर नीचे ये रोज करनी चाहिए, हाथों की सूक्ष्म क्रिया ये रोज करनी चाहिए, और पैरों की सूक्ष्म क्रिया रोज करनी चाहिए।
1: जी
2: साथ में अगर आप कुछ जैसे अपने नित्य क्रिया में ताड़ासन करते हैं और संतुलित आसन संतुलन आसन करते हैं, अर्धचक्र करते हैं, ये सब आसन ऐसे बने हैं कि रोज इम्पोर्टेंस इसका है,
1: जी
2: तो ये जरूर करना चाहिए।
1: जी सर, स्मिता जी का मैसेज है और उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र में जोड़ों के दर्द से जो परेशानी है, तो योग आसन करने में मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण
2: महत्व
1: होती हैं, जैसे वज्रासन में वो नहीं बैठ पाती जिनके घुटने नहीं मुड़ते हैं, तो क्या वो कुर्सी पर बैठे बैठे कोई योग क्रिया कर सकती
2: जी
1: हैं आसन?
2: जी अयंगर जी ने यही कहा है
1: जी
2: कि आप अगर चक्रासन, आप जैसे आप कोई मोटा आदमी है वो चक्रासन नहीं कर सकता है, लेकिन वो गद्दा बांध के और उस पर लेट सकता है,
1: अच्छा।
2: और वो जो है जब लेटेगा तो उसका पूरा ऋण जो है कर्व होगा, और वो उसका उतना ही फायदा करेगा जो एक चक्रासन को फायदा करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो चेयर पोजिंग पे भी सूर्य नमस्कार आजकल आ गया है, सूर्य नमस्कार आप
1: प्राणायाम भी कुर्सी पे बैठे या
2: प्राणायाम
1: कर
2: भी आप
1: सकते हैं।
2: कुर्सी पे बैठ के कर सकती हैं, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, तो ये सारी चीजें आप जब जमीन पे नहीं बैठ पा रही हैं तो उसको आप कुर्सी पे बैठ के कर सकती हैं।
1: अच्छा, एक इसके साथ एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे हम योग जो फिजिकल आसन है वो हम करते हैं तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद, क्या प्राणायाम के लिए भी यही नियम है?
2: प्राणायाम देखिए एक ऐसा है, प्राणायाम नाम ही पर्याप्त
1: जी
2: है ना, प्राण की ऊर्जा को बढ़ाना,
1: जी
2: आयाम मतलब विस्तार देना।
1: जी जी
2: तो वो जैसे अब ब्रेन ब्रेन के लिए प्राणायाम कौन सा है? भ्रामरी प्राणायाम, यानी ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स पावर हैं उनकी क्षमता को अगर आंकलन किया जाए तो वो आपको भ्रामरी करके तुरंत मिलेगा उसका रिजल्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक तथ्य है,
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: बिल्कुल।
2: तो आप डॉक्टर से पूछिए कि अगर हम भ्रामरी नाक से आवाज निकाल रहे हैं और गुंजन कर रहे हैं भोरे के जैसे, तो वो हमारे ब्रेन पे उसका कैसा असर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
2: तो वो सारी नसों को खोलना, और छोटी छोटी नसें, बाल के बराबर नसें, उनको भी खोल देना, ये भ्रामरी का कमाल है।
1: बिल्कुल। चलते चलते एक प्रश्न और आया है, हमारी लिसनर है कनिका अजगोला जी, और इन्होंने पूछा है एंजियोप्लास्टी हुए व्यक्ति को कौन से योग करने चाहिए। देखिए आज फादर्स डे है और ये अपने पिताजी के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं कि पिताजी की एंजियोप्लास्टी हुई है, 58 वर्ष उनकी आयु है, तो ऐसे कौन से आसन है जिन्हें जिससे हार्ट ब्लॉकेज ना हो?
2: बिल्कुल, देखिए हार्ट ब्लॉकेज का मूल कारण माना गया है कि अगर स्प्रिंग पड़ती है या जो भी उसका ट्रीटमेंट है, वो ऐसा नहीं कि दोबारा ना हो, दोबारा भी हो सकता है, तो तो आपको करना क्या है कि वो जो है अनुलोम विलोम तो उनके लिए बढ़िया है।

0: उसमें सांस रोकना, कुंभक क्रिया नहीं करना है
1: जी
0: ना, सांस को लेना और छोड़ देना है। तो ये क्रिया अगर नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। और लहसुन की कली, अर्जुन की छाल
1: जी
0: का चाय पीजिए।
1: जी बिल्कुल
0: आप चाय ना पी के अर्जुन की छाल का पीजिए। देखिए अर्जुन की छाल का पूरा उसका वैज्ञानिक तथ्य सामने आया, पूरे वर्ल्ड में जो है इसको अर्जुन के पेड़ को माना गया कि हार्ट की पूरी सुरक्षा कवच करता है।
1: बिल्कुल
0: तो अगर उनको अर्जुन की छाल की वो जो अगर दी जाए
1: चाय,
0: काढ़ा या
1: हाँ
0: चाय,
1: काढ़ा, हाँ,
0: तो वो समझिए बहुत अच्छी है।
1: जी एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है। बहुत सारे लोग इंटरनेट देखकर, सबके हाथ में मोबाइल है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तमाम सारा ज्ञान उन्हें इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है, तो वो इंटरनेट देखकर योग करना शुरू कर देते हैं, तो कितना घातक ही हो सकता है? क्या बिना प्रशिक्षित योग शिक्षक के कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी एक ऐसे ही वाक्या हुआ था, एक लड़का जो है शीर्षासन कर रहा था और अचानक उसका सिर एकदम मुड़ गया अचानक से, और वो हड्डी उसकी टूट गई। तो वो ऐसी स्थिति में कभी ऐसा ना करे, बिना किसी आचार्य के साथ रह के ही करे। और पहले सर्वांगासन उसको करना चाहिए था, अर्ध हलासन करना चाहिए
1: बिल्कुल
0: था,
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद जो है शीर्षासन पे उसको बल देना चाहिए।
1: बिल्कुल क्लास मतलब प्राइमरी की शिक्षा लिए बिना
0: प्राइमरी
1: वो ग्रेजुएशन
0: बिल्कुल,
1: करने चले थे,
0: ये पीएचडी
1: तो
0: कर रहे
1: जी
0: थे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये
1: तो
0: सब
1: ये
0: चीजें
1: घातक हो सकता है
0: घातक
1: हमारे
0: हो
1: शरीर
0: सकती
1: के
0: है।
1: लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे सभी श्रोताओं को आपने न सिर्फ उनके सवालों के जवाब दिए बल्कि बहुत सारे प्रेरणादायक संदेश भी दिए कि आप योग केवल आसनों तक नहीं सीमित रखा, आपने जीवन जीने की एक सकारात्मक कला के रूप में
0: बिल्कुल
1: उसे हमारे सामने रखा, क्या खाना चाहिए, कैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, आपने सब कुछ बताया। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए अगर एक लाइन में कोई संदेश आप देना चाहें आज के दिन पर।
0: आज एक ही लाइन है कि अपनी दिनचर्या को नियमित बनाइए, संयमित करिए,
1: जी
0: अपने को उस रूप में ढालिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर आपका कोई संजीवनी बनेगा तो वो योग है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उस योग की गंगा धारा को अपने शरीर में फैलाइए,
1: जी
0: तभी आप जो है अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और आकाशवाणी का धन्यवाद, श्रोताओं का धन्यवाद, और आप सभी का शुक्ला मैडम आपका धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ श्रोताओं आज हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जुड़े थे श्री योगाचार्य श्री कृष्णदत्त मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से भी जुड़े हुए हैं आप, और तमाम योग संस्थानों के माध्यम से संस्थाओं के माध्यम से योग को दुनिया तक फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। और वास्तव में योग केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि बीमारी से पहले स्वास्थ्य की सुरक्षा है। योग केवल शरीर को नहीं, हमारी सोच, हमारी सांस, हमारी दिनचर्या को और हमारे जीवन को संतुलित करता है। तो श्रोताओं आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हर दिन कुछ मिनट योग के लिए, हर दिन कुछ पल स्वयं के लिए जरूर निकालेंगे, ताकि जीवन केवल लंबा नहीं बल्कि स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान बने। इसी शुभकामना के साथ मैं आरजे अंजु आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, योग कीजिए और निरोगी रहिए।

श्रोताओं, आप हैं इस वक्त 100.4 आकाशवाणी के बरेली केंद्र के साथ। दोपहर का 1 बज गया है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है अनुरोध गीत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आप अपने पत्रों को लिखकर भेजते हैं अपने नाम पते के साथ हमारे पते पर, यानी कि आकाशवाणी बरेली के पते पर। और अपने नाम पते के साथ होता है फिल्म का नाम भी। इसी तरह से हजारों पत्र हमारे पास आते हैं, हम उसमें से छांटते हैं पत्र। एक एक श्रोता के कई तादाद में पत्र आते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो जुड़ रहे हैं, वो लोग भी हमें खत जरूर लिखेंगे। खत लिखने के लिए हमारा पता है

कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली। बरेली का एसटीडी कोड है 243001। और अब शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दोस्तों, ये पहला पत्र हमारे पास आया है मॉडल टाउन करनाल से। भेजने वाले हैं सुधीर न्यूटन, जग्गी दुआ, संदीप गुगलानी, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापति, हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से हैं, जयपाल श्रीमान, यशपाल श्रीमान और इनके साथी, क्रांतिकारी छात्र परिषद भूड़ बरेली से रजत कुमार ब्रह्मचार्य कुमार, निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से हैं नसीम अहमद अंसारी, मेराज जहां मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अशिफा भी, मन्नत भी, बेड़ी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये पत्र आया है अजीत नगर मलौट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर, दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, कालीबाड़ी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं राजीव वर्मा, विनोद कुमार, राकेश राजपूत, हेमलता राजपूत, रूपा रानी, वैभव सुरभि, केशव राजपूत, राज पैलेस मऊ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, रितेश कृष्णा और पीहू सोनकार और समस्त परिवार, मछली गोदाम कैदी मुंडा रायगढ़ से हैं भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लिलू सिंह, रितु सिंह, झारखंड से हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि, झाझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि और आरती सिंह। आइए आप सबके अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम कहानी से। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत, आपके अपने पत्रों पर आधारित, सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM बरेली पर। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। भेजने वाले हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मिका बिरक। ग्राम आदर्श ग्राम रोधी पोस्ट आवला चौबारी जिला बरेली से। भेजने वाले हैं प्रेमी भगवान दास, चंद्रपाल साहू, लाला जसपाल साहू, लीलाधर साहू, लेखराज, शिवम और इनके समस्त साहू परिवार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। ये पत्र आया है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं तहसील दातागंज से। भेजने वाले हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, गुनगुन यादव और सूरत श्री यादव। श्रोताओं, ये अगला पत्र है जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से। भेजने वाले ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेनू, कुमकुम, निब्या, सरिता और अंतिमा। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं

प्रेम कमल वाषणे सुशीला कमल, प्रभात कमल, अमरीश सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेद, ऋचा और ऐश्वर्या। गांव कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल, सुनीता, शम्मी, रंजनी, आकाशदीप, अनहद, पोतरा गुरशबद। प्रेम निकेतन वजीरगंज से सुबोध कुमार वाषणे, अंजनू वाषणे, ईशा वाषणे, शिवम, ऋतिक और ब्रिजपाल वाषणे, नेहा और प्रतीक। बक्सीना दातागंज बदायूं से भेजने वाले हैं विमल ठाकुर। वार्ड नंबर 6 आंवला बजरिया से है मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी और आसिफ अंसारी। श्रोताओं ये पत्र आया है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली। लुधियाना पंजाब से है अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, अदीबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से है वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन, आसमा फकीर। बुलंदशहर से है बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन सैफी, भारूनिसा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन और नाजिम अली। आइए आप सब लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम खलनायक।

प्रोग्राम चल रहा है अनुरोध गीत आपके अपने पत्रों पर आधारित। दोस्तों, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अगर आप भी 100.4 FM बरेली के दोस्त बनना चाहते हैं और अपने पत्र लिखकर हम तक भेजना चाहते हैं तो जरूर लिखिए। और इस कार्यक्रम के लिए पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, बरेली का पिन कोड 243001। हमें बेसब्री से इंतजार कर रहेगा अपने नए दोस्तों के पत्रों का। और जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने अपने पत्र हम तक भेज दिए हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये पत्र आया है डोगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, मालवा रेडियो श्रोता संघ, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। इनका पूरा पता है मालवा रेडियो श्रोता संघ, प्रमिलागंज, अलौट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर से भेजने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और साजदा रानी, इनके साथ हैं हिना कौसर। श्रोताओं, ये पत्र आया है अहमदपुर खैगांव खंडवा से। भेजने वाले कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, कृष्णा वर्मा और समर फूलमाली। बहेड़ी से हैं अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कैकशा, दानिश, आदिल और शफक। गनगोला से हैं आलिम खान, नेहा खान, शबाना खान, संजीदा, मुस्तफ़ा, वली अहमद खान। मोहल्ला सड़क दातागंज से हैं राकेश गुप्ता, सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी कृष श्रीवास्तव। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से हैं डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। सब्जी मंडी बुलडाणा से हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा और आयज अनम। मलौट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी।

श्रोताओं, ये पत्र आया है याकूत गंज फरुखाबाद से। मिर्जा नसरीन बेगम, मुनव्वर हुसैन अरबाज मिर्जा, शाहबाज मिर्जा, मोहम्मद अहमद खान, बेटी रूही मिर्जा, महजबी नेहा कानपुरी और अजरा कुरैशी, जोहरा जमाल। आइए, आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं ये अगला गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। अनजान के लिखे गीत को राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम है याराना, आवाज किशोर कुमार की।

तेरे जैसा यार कहाँ। जी हाँ दोस्तों, 100.4 FM बरेली हर समय हर घड़ी आपके साथ है, आपके सुख दुख खुशी गम हर पल में। कमी है तो आपके अपने की, कि आप हमें अपने पत्रों द्वारा, अपने ईमेल द्वारा, अपने व्हाट्सएप मैसेज द्वारा और हाँ अपने फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ने की, वो कमी को आप आज ही पूरा कीजिए और एक दोस्ती की पहल कीजिए आप भी आज ही से। फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत। अगर इस कार्यक्रम में आप अपना पत्र लिखना चाहते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड 243001। जिन दोस्तों के पत्र हम तक पहुंच गए हैं वो हैं ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, शेख वाहब, नूर जहां।

बानो बदलापुर मुंबई से हैं, बंटी गवाणकर सुभाष पोतेवार, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, आदर्श नगर मलौट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलढांडा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवांडे, ज्योति नरवांडे, आकांक्षा नरवांडे और आकाश कुमार, ग्राम बड़बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी गिल ग्राम मुंडेला से चंदा चांदनी आकाश कुमार, इनके मम्मी पापा रीता देवी और कन्हैया काकू। अगला पत्र है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। श्रोताओं, ये पत्र आया है कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से, वीके चौधरी, वीके जौहरी, विनोद अरुण कुमार जौहरी, अर्चना जौहरी, विनीता जौहरी, अर्पित जौहरी और निमिष जौहरी। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। लच्छनपुर से राम जी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार। पीर बहोड़ा बरेली से हैं आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम और तवसुम। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तब्रेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत जिसे आवाज दी है रेशमा ने, गीत आनंद बख्शी का, संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम हीरो।

श्रोताओं, आपकी और हमारी लंबी जुदाई ना हो पाए इसके लिए आप हमें लगातार खत अपने लिखते रहें। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह ये सारे लोग हमें खत लिखते हैं और हमारे परमानेंट लिसनर बन गए हैं, इसी तरह से ये हमारे पास ये पत्र आया है गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से। भेजने वाले हैं बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डागरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहटी बरेली उत्तर प्रदेश से है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। श्रोताओं, ये पत्र आया है छावनी अशरफ खां होली चौक बरेली से। भेजने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन भाई, अजय वनोरमा देवी, वंदना शर्मा, खेमकरण लक्ष्मी देवी, रीता विनोद, मोहल्ला मलुकपुर गली जुग्गन निकट मस्जिद शेर खां बरेली से, बेबी बाजी अनम इरम परवीन गुलफशा तैबानूर तमन्ना आलम और हसान। श्रोताओं, ये पत्र आया है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, मासूम, धर्मवीर, मनमौजी।

आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश, फूलबाग, किला छावनी, बरेली से हैं विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त भारद्वाज, गंगा दत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी, मुन्नी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज और श्रीराम राठौर, मोहल्ला गड़ैया बरेली से हैं मोहम्मद कैसर शमसी, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नवेद, रजिया शमसी बेबी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया है श्री गंगानगर राजस्थान से, भेजने वाले हैं रघुनाथपुरा से भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, करुला मुरादाबाद से है अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नवेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से है जीशान वारसी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से है योगेंद्र नायक, रमन साहू, पवन वर्मा, मुशीर खान, गीता नायक, अलका साहू, अंजलि वर्मा और शहाना शबनम। आइए आप सबके अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म से आवाजें अनुराधा पंकज उदास की हैं, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आनंद मिलिंद का।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत, आपके अपने पत्रों पर आधारित। ये खत हमारे पास आया है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभय तहसील सिल्लौर जिला छत्रपति सांभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं अनिल कुमार वैशाली, प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश। छत्तीसगढ़ भूर सुधा से हैं भवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग सेन, गजेंद्र सेन। और ये पत्र आया है बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग भेजने वाले हैं। लेबई से गुलाब दास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगिनी से दिनेश वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा। कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से हैं ठेकेदार रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नजाकत अलवी, शाहिन बेगम अलवी, आहिल बाबू, आदिल अलवी। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुरा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक शर्मा, अमित वर्मा, सचिन समर, राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। मेन रोड बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से हैं यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पुराना होली चौक ग्राम करगैना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन वर्मा, कार्तिक शर्मा, इशिता शर्मा, युवराज शर्मा, जिज्ञास शर्मा, संदीप चंचल, सूरज चिंकी, अब्रार अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी। श्रोताओं, ये पत्र आया है परौली जिला बदायूं से। भेजने वाले हैं राम रक्षपाल मिश्र। राजेंद्र नगर तालाब के पास पटेल नगर डेलापीर रोड जिला बरेली से पप्पू भाई, आयन, शिबू, रेहान, मोहिन, तहसीम भाई, मुन्ना भाई, शुभ प्रतिज्ञा और आरती। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी की रचना को संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत, आपके अपने पत्रों पर आधारित, सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM बरेली के साथ। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। भेजने वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू और एरोही, और साथ में है स्वाति मौर्य। परी महल कासगंज से है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान। मोहल्ला तलैया उला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई, अब्रार अफजाल, मल्लू शबीना, रामू प्रजापति। धर्मपुर बरेली से हैं फहीम खान, सिद्दीक अली, अज्जू और साबिया। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार, शीला धंजे, गायत्री धंजे। खुदरी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। नखासा रोड उस हैत बदायूं से हैं डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमन अब्बासी, अनस मंसूरी, मुमताज मंसूरी, मोनिस अब्बासी, सुहेल अंसारी, मोहम्मद याकूब अब्बासी और आकाश और समस्त परिवार व दोस्त। पटेल नगर मलौट पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगन दीप, बेबी आरजू जजौरिया। बरेली जंक्शन से भेजने वाले हैं गरीब भाई विक्की भारद्वाज। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद

फरहान इदरीसी और ये फरमाइश आई है एम असलम सैफी जैबुनिसा बेगम अकरम सैफी आबाद खान दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से हैं, मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से हैं, अभिजीत गवाणकर आई, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली श्वेता सुमित कुमारी धवनी गवाणकर परी, शिवाजी नगर वडाली देशमुख से हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा बाई और सुनैना खोबरखेड़े, खांडवी तहसील जलगांव जामोद से हैं राम थांडे, दीपाली थांडे और स्वराज थांडे, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हैं बेबी नुसरा खान, वारिस अली खान, सलीम अहमद, शहनाज खान, शकील अहमद और शाबाज खान। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीत संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, इसी गीत के लिए हमारे पास अनुरोध किया था लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू ने। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, शाह सादिक भाई और शाहिद भाई। गिमरा ग्राम अमलेश्वर से भेजने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश तानी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

मैं ना भूलूंगा और मैं ना भूलूंगी। दोस्तों आप लोगों को भी आज ये प्रण करना है, 100.4 FM बरेली के साथ बने रहेंगे। और आज आप ये इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए, कार्यक्रम का पता लास्ट में एक बार और बता देती हूँ। कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली। और अब अपनी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां को दीजिए अनुरोध कार्यक्रम से इजाजत, क्योंकि स्टूडियो में अगले कार्यक्रमों की कमान संभालने के लिए आ चुके हैं शीशपा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत मुनव्वर जहां के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम रसरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोकगीत के साथ।

श्रोता, हमने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक कव्वाली जिसको गाया है कविता पौडवाल और सोनू निगम ने।

0: है तार टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, ये अब आपको सुनवाते हैं ये गजल जिसको गाया है जगजीत सिंह ने।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं चंदन दास को।
1: घर मेरा काश तुम्हारा।

0: श्रोताओं, मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आई श्रोताओं, अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला ओपी नैयर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तरसी मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के

0: मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

पराया धन फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, एस डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, और इस गीत के पहले श्रोताओं परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओ, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ काम काज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इसी गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से, और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल की तर्ज थी श्रोताओं। इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाहा बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या, मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

हार जाना ऐसा होता है।

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्बल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार, नसीन परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसल, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहेगी।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल धानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इस गीत के लिए सादुल शहल से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को

0: जान से मार डालने के लिए। आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी
1: एक काले आदमी के लिए। अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
2: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
2: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
2: कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
2: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
3: 100% अन्याय है।
2: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
3: यस सर।
2: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मुलेज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
3: सर, मैं रेडी हूं।
2: ठीक, देन स्टार्ट।
0: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
0: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
0: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
2: बोलिए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना। ये तो बेहोश हो गया, लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।
3: ओके सर।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गर्म करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेल, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।

0: है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
1: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मलाइज।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
1: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
1: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलाइज क्या फरमा रही हैं?
2: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
3: अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलाइज?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
2: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
1: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
1: यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
1: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
4: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
1: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
1: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
1: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
4: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
1: क्या नाम है तुम्हारा?
4: जिनी पैराम्बा।
1: क्या करती हो?
4: कॉलेज में पढ़ती हो।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
4: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
1: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ। वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
1: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
4: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
1: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
4: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
4: जी, मेरी?
0: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
1: प्लीज मिसेस मोलाइज, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
4: आप कहना क्या चाहते हैं?
1: मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये चाहता हूँ सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
0: नहीं, वो क्यों जाएगी?
1: ओहो डरने की कोई बात नहीं है।
4: मैं कहाँ जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
0: नहीं
3: सर, मैं ये कह रहा
1: हूँ। जिडू फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
0: नहीं वो नहीं जाएगी। जिनी तुम अंदर जाओ।
1: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर मैं कह रहा था कि
1: जिडू जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे। इट्स माय ऑर्डर।
4: मौसी नहीं, छोड़ दो मुझे।
1: चला, चला, चला।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार, मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार, माओं के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए, मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाइज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मोलेज। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: कौन? जिनी? ये जिनी को यहां क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहां?
1: तुम कैसे हो बेंच?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूं जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, बेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: इसे इसे यहां क्यों लाए हैं? कहिए कहिए, क्यों लाए हैं इसे यहां?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है, लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है
0: जी।
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जिनी,
1: मुझे बचाओ।
0: जिनी,
1: बेंच,
0: जिनी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, उसे क्यों लेकर आए हैं, बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वह कौन कौन थे?

0: कहिए, बोलिए।
1: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज बात करी जा रही है योग विषय पर। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता, इस विषय पर हम आपके विचार साझा कर रहे हैं। और आप हैं हमारे श्रोता गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से। लिखते हैं कि अगर यह कहूं कि वर्तमान जीवन शैली में योग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है तो कदापि गलत नहीं होगा। बिल्कुल, माइग्रेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, शुगर और मोटापा आज के समय के ऐसे रोग हैं जिन्होंने घर घर में अपने पांव पसार लिए हैं। यानी हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति इनमें से किसी न किसी रोग से ग्रसित है। ऐसे समय में योग व्यक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। योग क्रिया में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, रेचक, नाड़ी शोधन प्रमुख हैं। वर्तमान समय की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में पिज्जा, बर्गर, नूडल्स जैसे फास्ट फूड शरीर को जंक लगा रहे हैं। योग के द्वारा उचित आहार विहार नियम को साधने में महारत हासिल होती है। मन की एकाग्रता या शांति आज किसी के पास नहीं है। ये अनमोल चीज उसी के पास है जिसने अपने जीवन में प्रतिदिन योग को अपनाया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है गंगा सिंह रावत जी, और बहुत विस्तार से आपने लिख भेजा है। हमारे एक और श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ जी। लिखते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। नमस्कार राम कुमार जी। आगे लिखते हैं कि आज 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। यह हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि विश्व गुरु भारत आज पूरी दुनिया में योग दिवस पर एक संदेश ये जा रहा है कि योग के द्वारा ही भारत के लोग स्वस्थ रहते हैं, इसलिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प ले रही है, क्योंकि योग दिवस से लोगों ने प्रेरणा ली है कि भारत ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ योग दिवस के द्वारा लोग स्वस्थ रहते हैं। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 जून को सिर्फ संदेश देने के लिए मनाया जाता है, बाकी प्रति

0: योग करना हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी, भारत के नागरिक पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। इसलिए करें योग, रहें निरोग का संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। आज हमने अपने हमारे क्षेत्र में हमारे साथ क्यों नहीं एक साथ योग दिवस पर योग किया और संदेश दिया कि हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और हम प्रतिदिन इसका हिस्सा बनते हैं। आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। शुभकामनाएं राम कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, कि आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे योग विषय पर, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता। हमारे लगभग सभी श्रोताओं ने यही बताया कि योग जो है शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन हमको योग करना चाहिए और योग को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। प्रतिदिन हम योग करेंगे तो

रोग रहेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अपना काम भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज ही प्रण लीजिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ रहिए। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओं 5:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम खेल जगत प्रसारित किया जाएगा 5:45 पर। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा रोज की तरह 6 बजे, जिसमें कुछ खास है। आज में आपको बातचीत होगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस पर। इसके साथ ही सुनिएगा हेलो फ्रेंड्स। 6:30 पर हम आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुन सकेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर से भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। श्रोताओं कल प्रातः 8:15 का समय रहेगा कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। लोकगीतों का समय रहेगा 8:45 का। प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा 9:00 और 9:30 का। आपकी पसंद ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 10 बजे से। कल दिन के 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सबरंग का। 11:30 पर आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम। पत्रों पर आधारित फरमाइशी प्रोग्राम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे कल दोपहर 1 बजे से। कल दोपहर 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रसरंग का, जिसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे गजल कव्वाली लोकगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल 3:30 पर। आपकी बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 4 बजे से। कल शाम 5:05 का समय रहेगा भजन संध्या का। महिलाओं का प्रिय कार्यक्रम नारी संसार प्रसारित किया जाएगा कल शाम 5:30 पर, जिसमें आपको सुनवाएंगे नुसरत जहां से भेंट वार्ता। विषय रहेगा परिवार में सामंजस्य कैसे बनाए रखें। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा रोज की तरह कल शाम 6 बजे से। ग्राम जगत ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल शाम 6:30 पर, जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी बच्चों का टीकाकरण इस विषय पर और सुनवाएंगे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। अक्षय वट ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे

कल शाम 7 बजे से। श्रोताओं कल शाम 7:31 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत।

श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 होने को हैं। लीजिए आप आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोरी अमोनकर के गाए इस भजन के साथ।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं भजन संध्या। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुपमा देशपांडे का गाया ये भजन।

श्रोताओं, अभी आपने जो भजन सुना उसको गाया था अनूप जलोटा ने। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं भजन संध्या। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये मधुर भजन।

श्रोताओं, हरिओम शरण के गाए इसी भजन के साथ भजन संध्या का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। निजे प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, कार्यक्रम मन भवन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, ये कार्यक्रम है जिसमें हम आपके मन के भाव और विचारों को, आपके संदेशों को प्रसारित करते हैं, आपकी शब्दावली जो आप लिख कर भेजते हैं उसको प्रसारित करते हैं। कार्यक्रम में ये पहला पत्र हम तक पहुंचा है गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला का। आप लिखते हैं कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंतकाम कमज़ोर लोग लेते हैं, माफ़ करने वाले बड़े होते हैं। एक मजबूत इंसान की निशानी है माफ़ कर देना। घरों में नफरत लोगों ने पाल रखी हैं, हमें मोहब्बत को आम करना पड़ेगा। हमारे समाज में कितनी बुराइयां जन्म ले रही हैं। किसी केसवटे आपके घर आए तो उसके लोग प्यार मोहब्बत तो दूर की बात, इस पर तंज किए जाने लगते हैं कि छोटी बड़ी का लाना, गरीबी का ताना, उस पर तरह तरह के टॉइंट। माँ बाप इतने नाजों से पली अपनी बेटी देते हैं। आपने लिखा है संबंधों पर, रिश्तों पर। जी हाँ, आज के दौर में रिश्ते बहुत नाजुक हो रहे हैं और इनको संभालने की, सहेजने की बहुत आवश्यकता है। मुनव्वर लल्ला जी, आपने हमें पत्र लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 23 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 22 जून 2026 यानी कल शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं की गंभीर स्थिति और इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 22 जून 2026 यानी कल साढ़े 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम मनभावन में ये एक पत्र हमारे हाथ में है, इसको भेजा है बरेली जंक्शन से गरीब भाई ने। गरीब भाई लिखते हैं कि भोजन उतना लें थाली में, बेकार ना जाए नाली में। जी, बहुत सुंदर बात लिख भेजी है गरीब भाई आपने। आगे लिखते हैं कि अक्सर हमने देखा है लोग दावत में जाते हैं, थाली में सब कुछ भर लेते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो वो सब कुछ उनसे खाया नहीं जाता, वो थाली टेबल के नीचे सरका देते हैं और वो खाना खराब हो जाता है। जरा उस व्यक्ति से पूछिए जो आपको दावत पर बुलाता है, उसने कैसे इंतजाम किया होगा। मान लीजिए 500 लोगों का इंतजाम है और पता चला 400 में ही खाना समाप्त हो गया, तो कृपया ऐसा ना करें। भोजन उतना ही लें थाली में जितना आप खा सकते हैं और नाली में बेकार ना जाए। जी गरीब भाई, आपने बहुत सुंदर बात लिख भेजी है। हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए, खाने का सम्मान करना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से जीव ऐसे हैं जिनको, जो बेचारे भूखे रह जाते हैं, इनको रोज़ खाना नहीं मिल पाता, तो उनको देखते हुए भी हमको थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए खाने का, और वेस्ट नहीं करना चाहिए खाने को। बिल्कुल उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, और कार्यक्रम मन भावन में ये पत्र हम तक पहुंचा मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं विमल वर्मा जी। लिखते हैं कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए, भूल जाइए शिकवे शिकायतों के पलों को, छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर विमल वर्मा जी, आपने ये लाइनें लिख भेजी हैं और बहुत सार्थक हैं, और इनको समझने की बहुत ज़रूरत भी है।

0: श्रोताओं, यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम मनभावन में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम का पता लिख भेजिए, लिख लीजिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम मनभावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली और हमारा पिन कोड है 243001। साथियों, किसी पोस्ट कार्ड पर अपने मन के विचार, कुछ शब्दावली जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो लिखकर हमको भेज दीजिए इस पते पर और इसको हम कार्यक्रम मनभावन में शामिल करेंगे। साथियों, अब कार्यक्रम में समय और अधिक नहीं बचा है तो कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनभावन 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल जगत।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक बैडमिंटन के खिलाड़ी से। जी हां, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और खेलो इंडिया गेम्स में उन्होंने खेला है और भी क्या कुछ उन्होंने किया है पूरी जानकारी उनसे लेंगे। और उनका नाम है काव्या बरनवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में काव्या जी।
2: थैंक यू मिथिलेश जी।
1: तो सबसे पहले तो काव्या जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की।
2: मैंने बैडमिंटन 4th क्लास में खेलना शुरू किया था, स्टेडियम जाना शुरू किया था समर वेकेशन में। फिर उसके बाद स्कूल में मैं खेलती रही क्योंकि स्कूल में भी टूर्नामेंट होते थे। फिर स्टेडियम में भी, हमारा जो स्टेडियम है डोरीलाल,
1: अच्छा
2: हाँ, वहाँ पे उसी ऑडिटोरियम में हम लोग खेलते थे। उस टाइम पहले जब मैंने शुरू किया था तो दीपमाला मैम सिखाती थी।
1: अच्छा, अच्छा।
2: फिर अनिल मल्होत्रा सर है यहाँ बरेली में, उन्होंने थापा सर, दीदी थापा सर थे जिन्होंने उस टाइम पे, अभी भी खेलते हैं वो, उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा इंडिया वगैरह टूर्नामेंट्स खेल रखे थे। तो वो सिखाते थे हम लोग को, हर महीने कैंप लगते थे। तो वहां से फिर मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। मैं स्कूल के बाद तुरंत जैसे ही आती थी तुरंत साइकिल से फिर स्टेडियम जाती थी, फिर सेशन अपना अटेंड करके 6-7 तक घर आती थी, फिर वापस स्कूल काम और फिर वापस रोज बैडमिंटन।
1: इतनी एनर्जी कहाँ से ला रही थी आप उस समय, क्योंकि पढ़ाई भी करना फिर खेलने जाना।
2: पसंद था, बहुत
1: पसंद था,
2: बहुत बहुत
1: एक जुनून था कि हाँ मुझे खेलना
2: बहुत
1: है।
2: बहुत घर वालों से डांट भी खाई है, बहुत खाई है।
1: अच्छा, घर वाले राजी थे कि हाँ भाई जाओ खेलो?
2: नहीं
1: नहीं,
2: स्टार्टिंग में मम्मी खुश होती थी।
1: अच्छा,
2: पापा भी खुश होते थे बट दे वर लाइक कि ये ठीक है इसे, मतलब वैसी
1: पढ़ते रहो,
2: लेकिन
1: पढ़ाई ज्यादा करनी है ना,
2: वैसा था बट खुशी बहुत होती थी। फिर
1: दोनों में से कोई खिलाड़ी रहा है
2: पापा,
1: पेरेंट्स में?
2: नहीं, पापा खेलते थे, पापा को शौक था पहले।
1: अच्छा अच्छा,
2: और
1: तब तो वो इनकरेज करते होंगे।
2: हाँ, वो इनकरेज करते थे बट
1: मतलब दिमाग में था कि हाँ भाई पढ़ने पे ज्यादा फायदा है, खेलने पे उतना नहीं।
2: हाँ,
1: अच्छा,
2: ऐसे कर करके पता नहीं था कि प्रोफेशनली खेलने लगूंगी, बहुत ज्यादा पसंद आने लगेगा।
1: पहले शौकिया खेलना शुरू किया। हाँ, अच्छा लगता था।
2: हाँ,
1: लेकिन बैडमिंटन क्यों?
2: क्योंकि पहले मैंने स्विमिंग वगैरह भी ट्राई किया था, मुझे हर स्पोर्ट्स में यूजुअली इंटरेस्ट रहता था।
1: अच्छा अच्छा,
2: बट बैडमिंटन भाई जाता था खेलने।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो वो भी जाता था तो मम्मी उसी के साथ भेज देती थी, फिर मैं देखती थी तो बड़ा अच्छा सा लगता था।
1: वो भी प्लेयर है
2: भाई, ने स्विमिंग में स्टेट खेला है।
1: अच्छा अच्छा,
2: वो मतलब बैडमिंटन खेल,
1: मतलब दोनों लोग हैं स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव हैं।
2: हाँ
1: जी जी।
2: तो अभी
1: और पिताजी जो हैं वो किसके प्लेयर?
2: टेबल टेनिस।
1: टेबल टेनिस है,
2: टेबल टेनिस खेलते थे वो, बट वही है प्रोफेशनली नहीं खेलते थे।
1: तो फिर लेकिन कैसे मैनेज कर लेती थी पढ़ाई भी और ये खेल भी?
2: मैं ना पूरे साल नहीं पढ़ती थी, एग्जाम के
1: अच्छा
2: कुछ वक्त पहले से पढ़ना शुरू करती थी। और मैं स्कूल में जैसे फेमस थी, मतलब सब जानते थे बैडमिंटन की वजह से, क्योंकि ट्रॉफीज वगैरह लेके आती थी मैं स्कूल में। तो इस चक्कर में टीचर्स लोग भी ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ बैर वैर नहीं था, दे लाइक्ड मी एंड वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि, क्योंकि स्कूल में भी गेम्स पीरियड्स में मैं जाती थी बैडमिंटन खेलने, जो नॉर्मल पीरियड्स होते थे टीचर्स को बोल के, क्योंकि सर वगैरह हमारी प्रिपरेशन करा रहे होते थे टूर्नामेंट्स के लिए। तो मैं अच्छी स्टूडेंट थी उस चीज में, और बाकी मैं पढ़ाई में भी बुरी नहीं थी।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: मतलब इंटेलिजेंट।
2: हाँ,
1: मतलब कम समय में ही पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया है ना,
2: कैचअप कर लेती थी।
1: ये अच्छा है। तो पहली बार कोई बड़ा टूर्नामेंट कब खेला आपने और कौन सा?
2: पहला जो मेरा बड़ा टूर्नामेंट था मेरे लिए तो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा था, पहला पहला, क्योंकि यही शुरू

0: हुआ था
1: हाँ बिल्कुल
0: और वो डिस्ट्रिक्ट में जैसे इफको वगैरह के भी लोग बड़े सीनियर्स आते थे जो हमसे पहले भी खेलना शुरू किए थे, तो मैंने जब पहली बार उनको हराया था
1: अच्छा
0: वो मतलब वो ऐसा मैच था वो मैं आज तक नहीं भूलूंगी। उनके पैर में मोच आ गई खेलते खेलते और
1: अच्छा
0: मेरे अंदर भी स्टैमिना उस टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था और मतलब वो बहुत ही बड़ी चीज थी मेरे लिए जीतना, स्कूल के लिए जीतना और अपना करना। फिर उसके बाद दूसरा मेरा जो

0: हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारे लाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और इसी की बात हो रही थी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस जमाने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूजिक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूजिक की तरफ। उसी उधेड़बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे इरोज टाकीज जो बम्बई में है उसके पीछे लिली कोर्ट में। मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ में गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज के म्यूजिक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप, वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए
0: जी।
1: एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ, तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना। इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाह साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे
0: जी।
1: तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी होके रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा में चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का, ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
0: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं
1: जी। अवश्य।

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی،
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है। देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यू कर ले फैसला, कि हम जो चूमे तो मिलता दोष है, तेरी ही खातिर जाए सरफरोश है।

बचपन के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

0: डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: So girls, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया और कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योग अभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समृद्ध विरासत योग को वैश्विक मान्यता दिलाकर हमें गर्व की अनुभूति कराई है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, मेरठ, अमरोहा, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर, जौनपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, रामपुर, मैनपुरी और अमेठी सहित सभी जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों और स्वैच्छिक संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास और योग जागरूकता कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर

0: बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आज करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मैजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। अभ्यर्थियों को आवागमन में दिक्कत न हो इसके लिए उत्तर रेलवे विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शाहजहांपुर के ग्राम हथौरिया में खनौत नदी पर बनने वाले सेतु निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री खन्ना ने कहा कि खनौत नदी पर बनने वाला ये पुल क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी

की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न, करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल, परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: Yes. The stumps, but lucky for her that the goes down.
2: पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने ये तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार ना करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है।

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़े।

बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई, तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक और जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा में।

एक बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु

0: एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया, लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।
1: से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है सरफरोशी की।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर निहर शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी मोटी मछली। लेखक हैं वी एम आनंद और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: मिस्टर भैरवी लाल, मिस्टर बी लाल।
2: यस सर।
1: जब से हमने ये वन टू ऑल डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, यहाँ पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ, मक्खियाँ ही मक्खियाँ।
2: मक्खियाँ मोमो मक्खियाँ? सर मैं आपको मतलब नहीं समझा।
1: मतलब तुम उस दिन समझोगे भैरवी लाल, जब इस स्टोर में ताले लग जाएंगे।
2: ऐसा ना करिएगा सर, ऐसा ना करिएगा।
1: बजाय इसके कि तुम लोग किसी कस्टमर से बात करो, किसी मोटे ग्राहक को फांसो, सारे दिन मक्खियां मारते रहते हो।
2: क्या करें सर, यहाँ पर कोई खास कस्टमर तो आता नहीं।
1: कस्टमर आता नहीं? अरे जब आता है तब तुम कौन सी तोप मार लेते हो। कस्टमर खाली हाथ चला जाता है, और खरीदता भी है तो 10-5 रुपए का। ऐसे कैसे काम चलेगा क्यूमिस पाउडर वाला?
3: यस बॉस।
1: तुम सारा दिन अपना मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक किया करती हो, कभी किसी कस्टमर को अटेंड करती हो?
3: पन तो अपना सब कस्टमर अटेंड करता है सर, पर इधर कौन सा बड़ा कस्टमर आने ही मांगता है।
1: मिस पाउडर वाला कस्टमर वही बड़ा होता है जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, समझी तुम?
2: सर जब से आपने हमें ये सिखाया है कि हर ग्राहक को अपना बाप समझो, तब से मैं हर ग्राहक को अपना बाप समझ रहा हूँ।
3: यस सर, आई ऑल्सो ट्रीट माई एवरी कस्टमर लाइक माई डैडी।
1: लेकिन जिस डैडी की जेब न साफ की जाए वो डैडी कैसा? मेरा मतलब है अब से तुम हर ग्राहक को मछली समझो।
2: मछली?
3: You mean a fish?
1: Yes, हर ग्राहक को मछली समझो।
2: अच्छा।
1: और अपने आप को बगुला, जो ही मछली स्टोर में घुसे उस पर
2: झपट पड़ो।
1: राइट।
2: हम तो कहीं तक कष्ट तक पहुंच ले जाएंगे ना पावर। चुप सर, वेरी गुड आइडिया।
1: देखो कस्टमर के सामने अपने माल की तारीफों के पुल बांधो, और कस्टमर को किसी चीज की प्राइस डिस्कस करने का मौका मत दो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि उसको बोलने का मौका मत दो, उसको इंटरटेन करो, और फिर देखो कस्टमर कितना बड़ा ऑर्डर देता है तुमको।
3: रियली सर, इट इज अ वंडरफुल आइडिया। अब तो कोई भी कस्टमर इधर से बच के जाएगा ही नहीं सर।
2: जाए कैसे मैं साहब? सर रियली यू आर अ ब्रेन।
3: रियली सर यू आर अ जीनियस।
1: कस्टमर आया है।
3: कस्टमर ना कहिए सर।
4: वंडर, आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से लेकर कार तक हर चीज मिलती है।
1: देखो भाई, आज इस ग्राहक से बड़ा ऑर्डर लेना है। आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में जाइए जाइए। आइए सर, आइए आइए आइए। खुशामदेद, वेलकम, स्वागतम। वन टू ऑल स्टोर हमने आपके लिए ही खोला है सर। यहाँ पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मिलती है।
4: वेरी गुड। ऐसा पूछिए तो मुझे ऐसी ही दुकान की यानी ऐसे स्टोर की तलाश थी। क्या मुझे काफी ज्ञान मिला? हाँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: सर आप फिक्र न करें, जो चीज आपको शहर में किसी दुकान पर नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि सुई से लेके कार तक सर। और सर आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सुनो सुनो, मछली फंस गई,
3: मोटी मछली।
1: जी, मेरा मतलब है मोटी मछली। वो आप देखना है सर, वो हमारे खिलौनों का डिपार्टमेंट, टॉयज डिपार्टमेंट।
4: योर मेन टॉयज डिपार्टमेंट?
1: जी हाँ सर, वहाँ पर हर तरह के खिलौने मौजूद है सर, और वहाँ पर एक मोटी मछली भी है।
4: You mean fat fish?
1: जी हाँ सर, फैट फिश। आइए ना, आपको हर डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। चलिए सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, मिस पाउडर वाला।
3: Yes, sir.
1: सबसे पहले हम वहीं चलते हैं।
3: Sure.
1: ये देखिए सर, ये है हमारा टॉयज डिपार्टमेंट। ये देखिए सर, ये भालू, भालू देखिए, भालू
4: wonder,
1: कितना सुंदर है। और ये कुत्ता देखिए सर, और ये सर कबूतर, और ये सर ये देखिए मोटी मछली है।
4: मोटी मछली।

0: Oh, I see. It's a really lovely fat fish.
1: Sir, ye machli kitni handsome hai, kitni innocent hai, bilkul aap ki tarah. Sir, ye dekhiye.
0: I like it very, very much.
1: Oh, thank you, thank you. आपकी चॉइस बेमिसाल है सर. क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि आपके छोटे बच्चे की एज क्या है?
0: मेरा छोटा बच्चा? Oh, he is only 5 months old.
2: Oh, good.
1: Very good, sir, very good. तो फिर आप ये बच्चा गाड़ी जरूर पसंद करेंगे. सर, हमारे पास बच्चा गाड़ी का नया स्टॉक आया है. ये देखिए, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट डिजाइन. क्या मैं पूछ सकता हूँ सर कि इन बच्चा गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है?
0: अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गाड़ी सबसे बढ़िया है.
1: ओह, वंडरफुल सर, वंडरफुल. योर चॉइस इज वंडरफुल. सर, ये बच्चा गाड़ी ऑटोमेटिक है.
0: ऑटोमेटिक?
1: जी हाँ. यू समझिए कि जब आप और मेम साहब शाम को घूमने निकलेंगे तो साथ साथ ये बच्चा गाड़ी आप ही आप चलती जाएगी सर.
0: वंडरफुल, वंडरफुल. यानी कि अपने आप चलती जाएगी?
1: हाँ सर. देखिए, वो बात क्यों है कि कभी आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे तो मेम साहब साथ चलेंगी, कभी मेम साहब साथ चलेंगी तो आप बच्चा गाड़ी पकड़ेंगे. बस इस तरह से गाड़ी अपने आप चलती जाएगी सर.
0: Oh, I see, I see.
1: और ये देखिए सर, इस बच्चा गाड़ी में एक निपुल लटका हुआ है. जब भी बच्चा रोने लगे आप ये निपुल चूस सकते हैं. जी, जी, जी, जी, मेरा मतलब है सर, ये बच्चे को निपुल चूसा सकते हैं सर.
0: Oh, I see. Very good.
1: आइए साहब, इस तरफ आइए. जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर. ये देखिए सर, ये हमारा कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट है सर. और इनसे मिलिए सर, ये हमारे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, मिस पाउडर वाला.
3: गुड इवनिंग सर.
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग.
1: पाउडर वाला, बी टैक्टफुल. ये बहुत बड़ा कस्टमर है. मोटी मछली,
0: मछली.
3: ओके बॉस. सर, आप जरा हाथ आके देंगे?
0: आई यू मीन मैं अपना हाथ बढ़ाऊं?
3: यस सर. ये सेंट लगा रही हूँ आपके हाथ में, जरा सुनकर देखिए कैसा खुशबू है.
0: बहुत बढ़िया खुशबू है इसका.
3: सर, ये सेंट काटा माटा जैस्मिन सेंट का है.
0: काटा माटा जैस्मिन सेंट?
3: यस सर, काटा माटा जैस्मिन सेंट का खुशबू है. सर, जो भी कोई इस सेंट को लगाकर बाजार में जाएगा ना, सारी दुनिया उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भागेगा. और सर, ये देखिए, रॉक एंड रोल फॉक्स ट्रॉट पाउडर. सर, ये पाउडर कोई ऑर्डिनरी पाउडर नहीं है. इस पाउडर को लगाकर सारा फिल्म इंडस्ट्री महकता है सर. फिल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, सब लगाता है. सब वन टू ऑल, सब लगाता है. पता सर? नॉट ओनली दैट, इधर देखिए सर, ये पाउडर जो है ना, फिल्म का डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर, यहाँ तक कि रेडियो का डायरेक्टर भी इस्तेमाल करता है सर. फिर आप क्यों नहीं यूज करेगा? करेगा ना. और सर, ये देखिए, ओडो कॉमन शैम्पू. ये शैम्पू से आपका सर का बाल एकदम मुलायम हो जाएगा सर.
0: लेकिन ये शैम्पू,
3: समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया. आप ये शैम्पू लेकर क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, ये शैम्पू आपके लिए नहीं है, आपका मेम साहब के लिए है. आई नो सर, आप तो फिर का गंजा है.
1: ओ, मिस पाउडर वाला,
4: बच्चे चुप रहे.
1: तुम साहब को गंजा कहती हो? डोंट यू नो ए कस्टमर इज नेवर गंजा.
3: आई एम सॉरी सर.
1: इट्स ऑल राइट सर. आई एम वेरी सॉरी सर. वो मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने आपको गंजा कहा सर.
0: डजंट मैटर, डजंट. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं.
1: बात क्यों नहीं सर, बात क्यों नहीं है? अगर देखा जाए सर तो आप गंजे नहीं है सर. मेरा मतलब आप गंजे लगते जरूर है, मगर आप गंजे है या नहीं. लेकिन फिर भी आपके सर पे बाल है, मतलब बाल नहीं है, लेकिन फिर भी बाल है, लेकिन नहीं है, लेकिन है. मेरा मतलब आपके सर पर थोड़े थोड़े बाल हैं.
0: ओह यस, ओह यस
1: सर. आई थिंक नाउ यू नीड दिस शैम्पू.
0: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट.
1: और सर, इनसे मिलिए. ये हमारे म्यूजिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, मिस्टर भैरवी लाल, यानी कि मिस्टर वी लाल.
5: गुड इवनिंग सर.
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग.
5: ये देखिए सर, हमारे पास तरह तरह के नए से नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर साज यहाँ मौजूद है, हर साज यहाँ पर बिकता है. हुजूर, आप कौन सा साज बजाने का शौक रखते हैं? मेरा मतलब है बेंजो.

0: गिटार सारंगी तानपुरा तबला ढोलक
1: मुझे आई मीन हर सांस बजाने का शौक है। इट्स माय हॉबी।
0: वंडरफुल सर, वंडरफुल। वो तो हुजूर के चेहरे से नजर आ रहा है कि हुजूर को हर सांस बजाने का शौक है और हुजूर को रिकॉर्ड सुनने का भी तो शौक होगा।
1: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट।
0: तो सर आप ताल कहरवा भैरवी पहाड़ी ख्याल मैदानी ख्याल तीन ताल चार ताल नैनीताल मल्ली ताल पसंद करेंगे या दादरा ठुमरी गजल के रिकॉर्ड पसंद करेंगे या फिर आप फिल्मी गाने
1: झुमका गिरा रे
0: जैसा कि कल जो मेरा चौपाटी पर
1: आगमन

0: नहीं जाना, चले नहीं जाना, चले नहीं जाना।
1: चुप रहिए, मुझे आई मीन सिर्फ कथकली के रिकॉर्ड पसंद है।
2: कथकली? लेकिन सर कथकली तो नाच का नाम है, किसी गवैये का नाम तो नहीं सर।
3: फेरवी लाल, डोंट यू नो ए कस्टमर इज ऑलवेज राइट? कस्टमर जो कहता है ठीक कहता है।
2: नो सर, नो सर, आई मीन यस सर, आप ठीक कहते हैं। कथकली हमारे देश की एक मशहूर गायिका है। कथकली ने सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है। उसके गले में क्या दर्द है, मेरा मतलब है गले में क्या आवाज है, आवाज में क्या दर्द है, दर्द में क्या कसक है, कसक में क्या जादू है। कथकली का गाना सुनते ही आंखों में पसीना और माथे पर आंसू, मेरा मतलब है आंखों में आंसू और माथे पर पसीना आ जाता है।
3: मिस्टर भैरवी लाल साहब हमारे स्टोर में पहली बार तशरीफ लाए हैं, इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लाओ। आप तशरीफ रखिए सर, मैं भी मंगवाता हूँ
2: कोल्ड ड्रिंक।
3: सुनो सुनो सुनो,
4: इनके लिए लाइका
3: ओहो
2: मैंगो जूस,
3: मैंगो जूस लाओ।
4: बुलाए थे साहब,
2: मैंगो जूस, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी।
3: सर ये लिए सर, आप मैंगो जूस पीजिए सर।
1: मैंगो जूस
3: आप तो शर्मिंदा करते हैं सर, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को एंटरटेन करना हमारी ड्यूटी है सर। आप ये सेब खाइए सर, सेब। आप ये नाशपाती खाइए, नाशपाती।
1: भाई आप मजबूर कर तो खाना ही पड़ेगा।
3: इट्स अ प्लेजर सर। देखा भैरवी लाल कितना बड़ा ग्राहक फंसा है आज।
2: ग्राहक ना कहिए सर, मोटी मछली।
3: भैरवी लाल आज इस ग्राहक से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है।
2: ये सब आपके टैग का नतीजा है सर।
3: सर तो फिर आप अपना ऑर्डर नोट करा दीजिए।
0: ये सर
1: बात ये है कि मैंने अभी तो आपका सारा स्टोर देखा था। आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ सुई से कार तक।
3: यस सर, यू आर राइट, सुई से कार तक।
1: हाँ तो आपका वो सुइयों का डिपार्टमेंट किधर है?
0: व्हाट,
3: सुइयों का डिपार्टमेंट? सर वो तो हमने यही लिख रखा था, सुइयां हमारे पास नहीं है सर। आप तो मजाक कर रहे हैं।
1: लेकिन मुझे तो सिर्फ एक पैकेट सुइयों का चाहिए।
3: पैकेट सुइयों का चाहिए? सुइयों का पैकेट?
1: आपने बेकार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा मैं चला।
0: अरे कहीं साहब सुनो,
2: चले गए,
0: चले गए, चले गए।
2: मोटी मछली।
5: मोटी मछली, वीएम आनंद की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे हवा महल कार्यक्रम में। इसके निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से। आवाज़ें खान साहब और शाहसत सचदेव की थी। गीत के बोल नुसरत फ़तेह अली खान के और संगीत शाहसत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सितारे ज़मीन पर से। आवाज़ें अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु

0: सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।

0: ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
1: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2 स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किर ने स्पष्ट किया

0: है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जाती हैं।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: हमारे फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बीती की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के जमाने में भारत में आए थे, और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती है। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफर करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक खास ताल्लुक है, वो मैं पेश करना चाहूंगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे, तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहाँ से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था। सन 72 से 2 साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था। मेरे ख्याल से मई का महीना था और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बॉम्बे आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है। जेब में 44 रुपए थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास। उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ। बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत जरूरी है हर आदमी के जीवन में। संघर्ष आज भी जारी है और एक मजेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे। वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे।

0: हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, में मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था। एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था जरूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू हिज मैजेस्टी फॉर ग्रांटिंग अस दिस इंटरव्यू।
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जान अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरखास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.
3: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
2: What is this? Please tell His Majesty that I have no use for that.
3: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
4: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
1: और अब जहां तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूं। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले, तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
5: अच्छा।
1: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहां मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी का एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
0: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
1: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था, वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
0: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मजा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मजा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज हो जाती है या रिलीज होके हिट हो जाती है, वो जो मजा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मजा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मजा है फिल्मों का। और जहां तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मजा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहां तक मजे का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहां तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: अब और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से

0: नहीं जाता।
1: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होगी।
2: और शुरू में मैं ये कहूं कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी, तो उससे मुझको एक अंदाजा मिला कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी।

0: हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर हावी हो जाए, लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी जिंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये जरूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक जिद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी जिद थी, तो मैंने अपनी जिंदगी से ये चीजें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही जिद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: शीलू से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, ये यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ मैं। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में, स्पोर्ट्स के मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कॉमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफर है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफर बेहद पसंद है। वो सफर आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं, तो ये मजा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेज किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है, तो बीटल्स के गाने फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले

एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ एक दो साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहां पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं, मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिक ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं, वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
1: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
2: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माय लव, संगीतकार दान सिंह।
1: हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जीना सकेंगे सनम।
0: फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

then

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।